हम बोल रहे हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला से और आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना। तो श्रोताओं बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा भजन।

विगुण जन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। श्रोताओं बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा भजन।

91.2 MHz पर ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला। तो श्रोताओं, आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना।

हम बोल रहे हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला से और आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना। तो श्रोताओं बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा भजन।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे थे भक्ति संगीत आराधना अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। खुश होता हूँ आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। तो आप

2 MHz पर ए तोहा सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला जी श्रोताओं कन तोहा सारे कार्यक्रम सुना देना माटी दी महक अपनी रेडियो दोस्त रुचिका कन्या।

91.2 MHz पर ये तो हाँ सारे दा अपना पसंदीदा रेडियो गुंजन धर्मशाला कने श्रोताओ तो हाँ सारे अपने पसंदीदा कार्यक्रम सुना दे जिसका नाम है माटी दी महक। सुन दे कार्यक्रम दा अगला गीत।

92.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ए तोहां सारिया दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला जी श्रोताओ कने तोहां सारे कार्यक्रम सुना दे थे माटी दी महका। आज दे कार्यक्रम च बस इतना ही।

0: सर मेरा फ़ोन चोरी हो गया, आपका फ़ोन दे दीजिए सर प्लीज़, एक कॉल करना है सर प्लीज़ सर।
1: अरे भाई मैं कुछ काम कर रहा हूँ,
0: मैं एक कॉल करूँगा सर पापा को बस सर प्लीज़ सर, फ़ोन चोरी हो गया सर मेरा, मेरे को पापा को अर्जेंट कॉल करना है सर।
1: अच्छा ठीक है तुम कह रहे हो तो, लेकिन सिर्फ एक कॉल। हाँ
0: हाँ सर, थैंक यू सर। हेलो, हाँ पापा ये फ़ोन चोरी हो गया मेरा, तो मैं एक दिन के फ़ोन से फ़ोन किया हूँ। हाँ हाँ 1238 रुपये बस है मेरे पास अभी। हाँ ठीक है ना, ठीक है, ये लीजिए सर आपका फ़ोन, थैंक यू फ़ोन करने देने के लिए, थैंक्स अ लॉट।
1: कोई बात नहीं, ठीक है। फिर इतने पैसे कैसे कट?
0: हाँ 1238 रुपये बस है मेरे पास अभी।
1: कितने पैसे? माय,
2: ये भी एक तरह का साइबर क्राइम है, तो इस सिचुएशन से बचने के लिए आप ये कर सकते हैं कि आप अपना फ़ोन किसी भी अनजान व्यक्ति को देने से बचें, और अगर आप दे रहे हैं तो ये ध्यान रखें कि आप सामने रहकर उसे यूज़ करवाएं। तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए।
3: ले जा रहे ना तुम्हें पिक्चर, चलो बैठो बैठो।
4: बढ़िया,
3: फर्स्ट डे फर्स्ट शो, ऑनलाइन बुकिंग भी नहीं किया है, पूरे टाइम लाइन में धूप में खड़े थे, और पता कितना टाइम?
5: कितना टाइम?
3: अरे पूरे 2 घंटे।
5: अरे तुम्हारे टाइम के बारे में नहीं पूछ रहे बुरबक, इनके खांसी के बारे में पूछ रहा है।
6: खांसी ये तो 2 हफ्तों से हो रही है।
5: 2 हफ्ते? पिक्चर ले जाते हैं फर्स्ट डे फर्स्ट शो और खांसी को हो गए 2 हफ्ते, ये तो बहुत केयरलेस है। चलिए हमारे साथ
3: डॉक्टर।
6: डॉक्टर?
3: अरे आप तो बड़े सीरियस हो गए।
5: और नहीं तो क्या, 2 हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी होगा तो टीबी हो सकता है।
3: टीबी?
5: हाँ, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए, क्योंकि टीबी जो है
6: वो किसी को भी हो सकता है।
5: हाँ, और अगर हो गया तो बिना भूले पूरा कोर्स करिए और उसके बाद बेफिक्र हो जाइए, और नहीं किया ना तो इसका इलाज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे हीरो हीरा लाल।
3: चलो,
5: 2 हफ्तों से ज्यादा खांसी, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए। टीबी हारेगा, देश जीतेगा।

0: तो याद रखिएगा, दुनिया गोल है, चीजें घूम कर आती है। आज किसी को मदद की जरूरत है, उसकी आंखें ढूंढ रही है कोई तो मेरी मदद कर दे, और आप मदद कर सकते हैं, फिर भी आप सामने से ये सोचते हुए जा रहे हैं हमें क्या, किसी दिन आपको भी मदद की जरूरत पड़ेगी। तब आपकी नजरें ढूंढ रही होगी कोई मेरी मदद कर दे, और सामने से लोग यही सोचते हुए जा रहे होंगे हमें क्या।
1: सारा जहां है जिसकी शरण में, नमन है उस माँ के चरणों में। साल का वो सबसे पावन समय आ रहा है जब माँ शक्ति हमारे जीवन में ढेरों खुशियां भरने के लिए आ रही हैं। आ रहे हैं आस्था, शक्ति और आनंद के 9 दिन। आप सभी को रेडियो गुंजन परिवार की ओर से नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। इस बार फिर से मनाइए भक्ति और मस्ती का ये त्योहार सिर्फ हमारे साथ। सुनते रहिए 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला। Stay tuned.

0: सड़ा हुआ आलू, सड़ा हुआ आलू निकला।
1: तुम
0: बहुत खूबसूरत लग रही हो, नया सूट पहने है क्या?

फ्रीक्वेंसी 91.2 पर श्रोताओ आप जुड़ चुके हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और आप सभी सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने।

0: मैं हाथ डाल ऐ गुल चेहरा परी जमाल मुद्दत से दिल उदास दादा दास है तेरे होठों की प्यास है ऐ दिल पर मेरे लब पर कब छलकेगा तेरे लब का दादा।
1: 91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप बने हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त सुमन, लेकर हाजिर हुई हूं कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने।

गीत सुहाने नए और पुराने लेकर हाजिर हुई है आपकी अपनी दोस्त सुमन। तो आइए बढ़ते हैं हम आज के कार्यक्रम की ओर।

इस वक्त आप जुड़े हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और लुत्फ उठा रहे हैं सुहाने से गीतों का, यानी कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने का।

गीत सुहाने नए पुराने का संगम लेकर हाजिर हुई है आपकी जानी पहचानी सी दोस्त सुमन। तो आइए चलते हैं सुरों की दुनिया में और प्ले करते हैं आपके लिए ये गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप बने हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त सुमन, लेकर हाजिर हुई हूं कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने।

गीत सुहाने नए और पुराने लेकर हाजिर हुई है आपकी अपनी दोस्त सुमन। तो आइए बढ़ते हैं हम आज के कार्यक्रम की ओर।

इस वक्त आप जुड़े हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और लुत्फ उठा रहे हैं सुहाने से गीतों का, यानी कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने का।

गीत सुहाने नए पुराने का संगम लेकर हाजिर हुई है आपकी जानी पहचानी सी दोस्त सुमन। तो आइए चलते हैं सुरों की दुनिया में और प्ले करते हैं आपके लिए ये गीत।

गीत सुहाने नए और पुराने लेकर हाजिर हुई है आपकी अपनी दोस्त सुमन। तो आइए बढ़ते हैं हम आज के कार्यक्रम की ओर।

इस वक्त आप जुड़े हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और लुत्फ उठा रहे हैं सुहाने से गीतों का, यानी कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने का।

गीत सुहाने नए पुराने का संगम लेकर हाजिर हुई है आपकी जानी पहचानी सी दोस्त सुमन। तो आइए चलते हैं सुरों की दुनिया में और प्ले करते हैं आपके लिए ये गीत।

इस वक्त आप जुड़े हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और लुत्फ उठा रहे हैं सुहाने से गीतों का, यानी कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने का।

इस वक्त आप जुड़े हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और लुत्फ उठा रहे हैं सुहाने से गीतों का, यानी कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने का।

गीत सुहाने नए पुराने का संगम लेकर हाजिर हुई है आपकी जानी पहचानी सी दोस्त सुमन। तो आइए चलते हैं सुरों की दुनिया में और प्ले करते हैं आपके लिए ये गीत।

गीत सुहाने नए पुराने का संगम लेकर हाजिर हुई है आपकी जानी पहचानी सी दोस्त सुमन। तो आइए चलते हैं सुरों की दुनिया में और प्ले करते हैं आपके लिए ये गीत।

नमस्कार, 91.2 MHz पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। अब आप सभी सुनेंगे आज का खास समाचार बुलेटिन रुचिका के साथ। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों की हेडलाइंस पे। स्वस्थ बच्चे ही स्वस्थ समाज और मजबूत राष्ट्र की आधारशिला। बच्चों के पोषण को मजबूत करने के लिए कांगड़ा में शुरू हुआ मिशन भरपूर 2.0। शिक्षा और स्वास्थ्य राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताएं। दूरदराज क्षेत्रों तक गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध। पुरस्कार राशि में ऐतिहासिक वृद्धि कर खिलाड़ियों का बढ़ाया सम्मान। इंडिगो से हवाई यात्रा करना होगा महंगा। सरकारी CBSE स्कूलों में मेरिट नहीं, शिक्षकों की पसंद नियुक्ति का आधार। पटवारी के 574 पदों की भर्ती की प्रक्रिया इसी माह होगी पूरी। अब 10 अक्टूबर को होगी कैबिनेट मीटिंग। अब समाचार विस्तार से।

जिला दंडाधिकारी कांगड़ा हेमराज वैरवा ने अधिसूचना जारी करते हुए खबली दो सड़का से बणेदा हट्टी तक के सड़क मार्ग पर सीसी पेमेंट के कार्य के कारण पैसा से बणेदा हट्टी तक सड़क को सभी प्रकार के वाहनों के लिए 6 नवंबर तक बंद करने के आदेश दिए हैं। इस अवधि के दौरान यातायात के लिए पैसा से भट्टा सड़क मार्ग को वैकल्पिक सड़क मार्ग के रूप में इस्तेमाल किया जा सकेगा, जबकि एम्बुलेंस, अग्निशमन तथा अन्य आपातकालीन वाहनों का निकलना यदि संभव हो तो प्रतिबंध से छूट रहेगी। राजकीय महाविद्यालय शाहपुर में आयोजित एचपीयू इंटर कॉलेज फुटबॉल चैंपियनशिप के समापन समारोह में शाहपुर के विधायक एवं उप मुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उल्लेखनीय है कि केवल सिंह पठानिया सोमवार देर रात करीब 3 बजे जापान से एशियन गेम्स से वापस प्रदेश लौटे और सुबह खिलाड़ियों के बीच पहुंचकर उन्हें शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर केवल सिंह पठानिया ने कहा कि प्रदेश सरकार युवाओं को खेलों के प्रति प्रोत्साहित करने तथा हिमाचल प्रदेश में खेल संस्कृति को मजबूत करने के लिए विशेष प्रयास कर रही है। सरकार का उद्देश्य युवाओं को खेलों की ओर आकर्षित करना और उन्हें राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए बेहतर सुविधाएं एवं प्रोत्साहन उपलब्ध करवाना है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स बिलासपुर के प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। उन्होंने डिग्री प्राप्त करने वाले स्नातक विद्यार्थियों को बधाई देते हुए उनके उज्जवल एवं सफल भविष्य की कामना की। भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का हिमाचल प्रदेश में स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश न केवल देवभूमि है बल्कि वीरभूमि भी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के मंदिरों, लोक परंपराओं और सदियों पुरानी सांस्कृतिक विरासत ने हिमाचल प्रदेश को एक विशिष्ट पहचान प्रदान की है। उनका कहना है कि बिलासपुर के लोगों ने भी राष्ट्र निर्माण और विकास की कीमत के रूप में विस्थापन का दर्द सहा है। देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के विकास की परिकल्पना के अनुरूप निर्मित भाखड़ा बांध केवल विकास और आर्थिक समृद्धि का प्रतीक ही नहीं है बल्कि ये बिलासपुर के लोगों के त्याग और योगदान को भी दर्शाता है। बच्चों में कुपोषण की रोकथाम तथा उनके समुचित शारीरिक एवं मानसिक विकास को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से महिला एवं बाल विकास विभाग तथा जिला प्रशासन कांगड़ा के सहयोग से रक्कड़ धर्मशाला से मिशन भरपूर 2.0 का शुभारंभ किया गया। उपायुक्त ने कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि भाग लिया और मिशन भरपूर का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उपायुक्त कांगड़ा हेमराज फैरवा ने कहा कि हमारा विश्वास है कि स्वस्थ बच्चे ही स्वस्थ परिवार, स्वस्थ समाज और मजबूत राष्ट्र की आधारशिला हैं। आज के नौनिहाल ही देश के आने वाली पीढ़ी हैं और यदि उन्हें बचपन से ही उचित पोषण, स्वास्थ्य और बेहतर वातावरण मिले तो वे आगे चलकर समाज और देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे सकेंगे। बच्चों का पोषण केवल सरकार या किसी एक विभाग की जिम्मेदारी नहीं बल्कि प्रत्येक माता पिता और परिवार की सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि बदलती जीवन शैली और एकल परिवारों की बढ़ती संख्या के कारण कई बार बच्चों को वो समय और व्यक्तिगत ध्यान नहीं मिल पाता जो उनके समुचित विकास के लिए आवश्यक है। ऐसे में वैज्ञानिक अनुसंधान और पारंपरिक पोषण पद्धतियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि मिशन भरपूर इसी दिशा में एक अभिनव पहल है जिसके तहत बच्चों को स्वादिष्ट एवं पोषण युक्त सप्लीमेंट्री उत्पाद उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। 27 साल तक गरीब बच्चों को मिलेगी पॉकेट मनी। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक अब जो है 10 अक्टूबर को शिमला में होगी। इस दिन सेकेंड स्टैंडर्ड की छुट्टी भी है। छुट्टी के दिन सचिवालय में 11 बजे ये बैठक रखी गई है। इससे पहले 11 सितंबर और 5 अक्टूबर को रखी गई बैठकें नहीं हो पाई थी, इसलिए इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले कैबिनेट ले सकती है। इस बार रोजगार से संबंधित मामलों पर राज्य सरकार का फोकस रहने वाला है। कॉमन कैडर के तहत जूनियर इंजीनियर की 500 से 600 पदों पर भर्ती का मामला जा सकता है। इससे पहले जेई की भर्ती संबंधित विभाग ही करते थे और विभाग ही सीनियोरिटी मेंटेन करते थे, लेकिन अब ये भर्ती जेओएआईटी की तरह भर्ती निदेशालय के तहत होगी। हिमाचल प्रदेश में पटवारियों के 574 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया इसी माह पूरी कर ली जाएगी।
इन पदों के लिए करीब 1,90,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। प्रदेश में करीब 19 परीक्षा केंद्रों पर पटवारी भर्ती की परीक्षा आयोजित की जाएगी। हालांकि भर्ती प्रक्रिया लंबी है, ऐसे में नवंबर माह तक इसे पूरा होने की उम्मीद है तथा इस वर्ष के अंत तक ये पटवारी प्रशिक्षण पर भेज दिए जाएंगे। भर्ती के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में जमीन से जुड़े मामलों, इंतकाल, जमाबंदी, निशानदेही और अन्य राजस्व कार्यों के निपटारे में तेजी आने की उम्मीद है। नए प्रावधानों के तहत प्रदेश सरकार जरूरत के अनुसार सरकारी सेवा में कार्यरत शिक्षकों से CBSE से संबद्ध स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। प्रदेश सरकार अब आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखेगी। 27 साल तक इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना के अंतर्गत आने वाले युवाओं को 1,000 की न्यूट्रिशन एजुकेशन ग्रांट भी दी जाएगी। इसका लाभ प्रदेश के 23,000 युवाओं को मिलेगा। दरअसल प्रदेश सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण को लेकर बड़ा फैसला लिया है। इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना का दायरा बढ़ाकर अब 27 साल तक कर दिया गया है। योजना के तहत पात्र बच्चों और युवाओं को पढ़ाई के साथ पोषण व स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों के लिए हर महीने 1,000 रुपए की विशेष सहायता भी दी जाएगी। इससे प्रदेश के करीब 23,000 युवाओं को लाभ मिलने का रास्ता साफ हुआ है। अब तक योजना के तहत पात्र बच्चों को 18 वर्ष की आयु तक ही आर्थिक सहायता दी जाती थी। सरकार ने इसमें बदलाव करते हुए सहायता की अवधि बढ़ाकर 27 वर्ष करने का फैसला लिया है। इसी के साथ आज का ये खास समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।

0: किया हूँ। हाँ हाँ 1238 रुपये बस है मेरे पास अभी। हाँ ठीक है ना, ठीक है, ये लीजिए सर आपका फ़ोन। थैंक यू फ़ोन करने देने के लिए, थैंक्स अ लॉट।
1: कोई बात नहीं, ठीक है।
2: फिर इतने पैसे कैसे कट?
0: हाँ 1238 रुपये बस है मेरे पास अभी।
2: कितने पैसे? माय,
3: ये भी एक तरह का साइबर क्राइम है। तो इस सिचुएशन से बचने के लिए आप ये कर सकते हैं कि आप अपना फ़ोन किसी भी अनजान व्यक्ति को देने से बचें, और अगर आप दे रहे हैं तो ये ध्यान रखें कि आप सामने रहकर उसे यूज़ करवाएं। तो सावधान रहिए।

0: सड़ा हुआ आलू, सड़ा हुआ आलू निकला।
1: बहुत खूबसूरत लग रही हो, नया सूट पहने क्या?

फ्रीक्वेंसी 91.2 पर श्रोता इस समय आप जुड़ चुके हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला। इस प्यारी सी सुबह में सभी श्रोताओं का स्वागत है और भाई जो जगे हुए श्रोता हैं उनका तो स्वागत है, लेकिन कुछ अभी भी सोए हुए हैं क्योंकि मौसम बड़ा सुहाना सा है, ठंडा सा है, तो उन्हें जगाने के लिए हम पहुँच चुके हैं आपके घर आंगन में अपनी आवाज़ के माध्यम से। जी हाँ श्रोताओं, बड़ा प्यारा सा दिन लगता है जब सुबह सुबह ठंड हो, हल्की ठंड हो, और आज तो वैसे ही बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हर कोई जल्दी उठ जाता है, सबका अपना अपना तरीका होता है। कुछ जल्दी उठ जाते हैं, कुछ देर से उठते हैं और कुछ ज़्यादा ही देर से उठते हैं। जो देर रात तक काम करते हैं उनके लिए तो सुबह ही 10-11 बजे के करीब होती है। तो जैसे जैसे सबका शेड्यूल होता है अपने हिसाब से, जो कम्फर्टेबल महसूस करते हैं उसी हिसाब से उठते हैं। लेकिन हमारे बुज़ुर्गों की बात की जाए तो हमारे बुज़ुर्ग हमेशा से यही कहते थे कि सुबह सवेरे उठना हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, हमारी आँखों के लिए अच्छा होता है, हमारे फेफड़ों के लिए अच्छा होता है, और दूसरी बात ये है कि सुबह सवेरे उठकर टहलने से, वॉक करने से, एक्सरसाइज करने से बहुत सारे फ़ायदे हमारे शरीर को होते हैं। श्रोताओं, कुछ करने से अगर हमारा शरीर स्वस्थ रहता है तो उसके लिए तो हमें थोड़ी सी मेहनत करनी होगी। मेहनत ज़्यादा नहीं होती है, बस थोड़ा सा नींद को त्यागना होता है, और जब नींद को त्यागते हैं तो एक खुशहाल जीवन हम पाते हैं। तो इन्हीं बात और जानकारियों के साथ श्रोताओं आपको फिर से लिए चलते हैं कार्यक्रम के पहले गीत की ओर। आप सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला, हम फिर से वापिस आएंगे और ढेर सारी जानकारियाँ आप

श्रोताओं, इस प्यारे से गीत के बाद कार्यक्रम में एक बार फिर से हम वापिस आ चुके हैं लेकर ढेर सारी जानकारियाँ। श्रोताओं, कहते हैं ज़िंदगी जब देती है तो एहसान नहीं करती, लेकिन जब लेती है तो लिहाज नहीं करती। दुनिया में दो पौधे ऐसे हैं जो कभी मुस्कुराते नहीं हैं, अगर वो मुरझा जाएं तो उनका कोई इलाज नहीं होता है। पहला है निस्वार्थ प्रेम और दूसरा है अटूट विश्वास। विश्वास हमें एक दूसरे पर बिल्कुल करना चाहिए, विश्वास पर ही दुनिया टिकी हुई है। श्रोताओं, इन्हीं बातों और इन्हीं पंक्तियों के साथ फिर से हम कार्यक्रम में आगे आ चुके हैं लेकर ढेर सारी जानकारियाँ। जानकारियों में हम आज बात कर रहे हैं सुबह सवेरे जल्दी उठने के फ़ायदों के बारे में। जैसे हमने गीत से पहले बात की थी कि अभी हमारे श्रोता कुछ आराम की अवस्था में होंगे क्योंकि आज मौसम बड़ा ही सुहाना है। सुबह जल्दी जब उठे थे उस समय थोड़ा सा लालगी भरा मौसम था, यानी थोड़ा सा लाल लाल सा महसूस हो रहा था और हल्की हल्की मीठी मीठी सर्दी भी बहुत ही प्यारी सी लग रही थी। तो ऐसे में सभी का मन करता है कि सोए रहें, बिस्तर में दुब के रहें। किसी का मन नहीं करता है, लेकिन अपने अपने काम काज के हिसाब से सबको जगना पड़ता है। फिर हमें तो ढेर सारे अपने श्रोताओं से मिलना था, उनसे ढेर सारी बातें करनी थी, इसलिए हम तो पहुंच चुके हैं अपने सीट पर, अपने स्टूडियो में, क्योंकि जो बातों और गीत संगीत है वो अपने श्रोताओं के लिए लेकर आए हैं, उन्हें भी पहुँचाना है आप तक। लेकिन कुछ श्रोता ऐसे हैं जो अभी अपनी तैयारियों में जुटे होंगे, कुछ पहुँच चुके होंगे, क्योंकि ज़रूरी भी नहीं है कि अपने घर के आसपास ही कार्यालय हो। कई श्रोताओं का कार्यालय भी अपने घर से बहुत दूर होता है, दूरी तय करनी पड़ती है, तो अपने हिसाब से हर कोई चलता है। तो सुबह उठने की बातों से बातें कहाँ के कहाँ पहुँच जाती हैं, श्रोताओं ध्यान ही नहीं रहता है। फिर से हम अपने विषय की ओर आ रहे हैं कि सुबह सवेरे जल्दी उठने के बहुत सारे फायदे हमारे जीवन में होते हैं। सबसे पहले फ़ायदा ये होता है कि मन शांत और तरोताज़ा रहता है। सुबह का वातावरण शांत होता है, जिससे तनाव कम करने और सकारात्मक सोच बढ़ाने में मदद मिलती है। दिन की अच्छी शुरुआत होती है सुबह सवेरे जल्दी उठने से, क्योंकि सुबह सवेरे जल्दी उठ के हम करते हैं योग, प्राणायाम, व्यायाम और ध्यान के लिए पर्याप्त हमें समय भी मिल जाता है। पढ़ाई करने वाले बच्चों की बात करें तो सुबह सुबह बच्चे उठते हैं। कोई समय था हम भी जल्दी उठकर पढ़ाई किया करते थे। बुज़ुर्ग कहते थे कि सुबह सवेरे जल्दी उठकर पढ़ना या याद करने से क्या होता है कि वो जल्दी ही हमें याद हो जाता था, और बिल्कुल सही बात है। इसी तरह से हम भी महसूस करते थे, जिस दिन सुबह जल्दी उठकर याद करते थे वो चीज़ जल्दी से याद हो जाती थी, क्योंकि उस समय माहौल बहुत शांत होता है और हमारा ध्यान जो है पूरे किताबों में लग जाता था। सुबह के समय आसपास कम शोर और व्यवधान होने से एकाग्रता बढ़ जाती है। और अगली बात करें तो दिन की योजना बनाने का समय मिलता है, पूरे दिन के काम व्यवस्थित किए जा सकते हैं। स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है सुबह की हल्की धूप, और टहलना शारीरिक सक्रियता के लिए भी उपयोगी माना जाता है। नाश्ता आराम से करने का टाइम मिल जाता है। सबसे बढ़िया बात तो श्रोताओं ये है, क्योंकि अगर हम लेट उठते हैं, नाश्ते का हमारे पास समय नहीं होता है, चलते चलते एक रोल बनाया, रोटी का हाथ में पकड़े और चल पड़ते हैं अपने काम पर। और अगर जल्दी उठते हैं तो आराम से बैठकर नाश्ता करते हैं, क्योंकि सुबह का नाश्ता हम सभी के लिए बेहद ज़रूरी होता है, और बनाने वाले के पास भी समय रहता है, वो भी पौष्टिक नाश्ता बनाता है और परिवार के सारे मेंबर जो है उसे इंजॉय भी करते हैं। समय की पाबंदी की बात करें श्रोताओं, तो नियमित समय पर उठने की आदत अनुशासन बढ़ाने में भी मदद मिलती है। तो बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे फायदे हैं सुबह उठने के लिए, तो आप भी अपनी रूटीन को बना लीजिए। बस ये बहाना नहीं चलेगा कि सर्दियां आ गई हैं, अब तो सोए रहने को मन करता है। अगर आप चाहते हैं कि आपने अपने लाइफ में कुछ करना है, अपने सपने देखे हुए हैं, उन सपनों को पूरा करना है, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा नींद को त्यागना होगा और ज़िंदगी के सफ़र में आगे बढ़ना होगा। फिलहाल कार्यक्रम के सफ़र में हम आगे बढ़ते हैं और आप तक पहुँचाते हैं कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत। तो आप सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

श्रोताओं, इस प्यारे से गीत के बाद कार्यक्रम में एक बार फिर से हम वापस आ चुके हैं लेकर ढेर सारी जानकारी। इन्हीं जानकारियों के साथ कुछ जानकारियां और आपके लिए लेकर आए हैं, उन्हें भी आप तक पहुंचाते हैं। भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान बिलासपुर के प्रथम दीक्षांत समारोह में संस्थान के पहले स्नातक बैच की उपलब्धियाँ प्रदान की। एम्स बिलासपुर की ये विकास यात्रा प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में अपने योगदान की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इस अवसर पर राज्यपाल रविंद्र गुप्ता, मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू, केंद्रीय स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा, राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन, एम्स बिलासपुर के अध्यक्ष प्रोफेसर नरेंद्र कुमार अरोड़ा तथा कार्यकारी निदेशक लेफ्टिनेंट जनरल दिलजीत सिंह भी उपस्थित रहे और प्रथम स्नातक बैच तथा स्वर्ण पदक विजेताओं को बधाई देते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विद्यार्थियों, उनके माता पिता, अभिभावकों और शिक्षकों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा है कि ये दीक्षांत समारोह एम्स बिलासपुर के विकास तथा चिकित्सा शिक्षा स्वास्थ्य सेवा और अनुसंधान के क्षेत्र में संस्थान की बढ़ती भूमिका की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। तो श्रोताओं, ये तो थी हमारी जानकारियाँ। अपनी जानकारियों के साथ साथ कार्यक्रम में फिर से आपको लिए चलते हैं गीतों की दुनिया में। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत। तो आप सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

माफ़ कीजिएगा श्रोताओ, तकनीकी खराबी के चलते कुछ समय के लिए हम आपको कार्यक्रम नहीं सुना पाए हैं, उसके लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं। और फिर से कार्यक्रम में हम आगे बढ़ चुके हैं और हमारी बात हो रही है राष्ट्रीय पोषण माह के बारे में। हम सभी श्रोताओं जानते हैं कि लगभग राष्ट्रीय पोषण माह जो है चल रहा है और भारत सरकार द्वारा हर साल सितंबर माह में इसे मनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य देश भर में कुपोषण को दूर करना और सही पोषण के प्रति जागरूकता भी फैलाना है। साथ ही साथ जो है श्रोताओं, राष्ट्रीय पोषण माह की हम बात करें तो इसके ये 9 सितंबर से शुरू होकर 8 अक्टूबर तक चलेगा और हमारी आंगनवाड़ी, हमारी जिम्मेदारियाँ बहुत सारी होती हैं, उन्हें भी हम निभाते हैं। और इसका मुख्य फोकस की बात करें श्रोता तो आंगनवाड़ी नेटवर्क को मजबूत करना और विविधतापूर्ण आहार, गरम पका हुआ आहार हर तरह से हमें अपने दिनचर्या में शामिल करना है और हर वो

पोषण चीज़ हमें अपने खाने में लेनी है जिसकी ज़रूरत हमें रहती है। पोषण माह के उद्देश्य की श्रोताओं अगर हम बात करें तो कुपोषण की रोकथाम करना होता है, बच्चों में बोनापन और कम वजन की समस्या को भी कम करना होता है। इसके साथ साथ श्रोताओं एनीमिया से बचाव बेहद ज़रूरी है। महिलाएं, किशोरियां और बच्चों में खून की कमी के स्तर में सुधार करना होता है। इसके साथ साथ अगर बात करें तो शिशु आहार प्रथाओं की, तो जन्म से 6 महीने तक केवल माँ का दूध, उसके बाद पौष्टिक तथा विविध पूरक आहार के बारे में शिक्षित करना होता है। बहुत सारी छोटी छोटी बातें होती हैं श्रोताओं जिनका हमें ज्ञान होना बेहद ज़रूरी है। अगर इनका हमें ज्ञान ना हो तो कहीं ना कहीं हम जानकारी से भी पीछे रह जाते हैं। और स्वास्थ्य जाँच शिविर लगाए जाते हैं, एनीमिया जाँच और पोषण रैलियाँ निकाली जाती हैं। इसके साथ साथ आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से जो है हमें अवेयर किया जाता है। तो श्रोताओं ये तो थी हमारी जानकारियाँ। बहुत सारी कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं, उन्हें भी आप तक और भी पहुँचाएँगे, लेकिन फ़िलहाल अपनी जानकारियों के साथ हम पहुँच चुके हैं कार्यक्रम के अगले गीत तक। तो आइए कार्यक्रम में थोड़ा सा लेते हैं विराम और आप तक पहुँचाते हैं कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत। तो आप सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

0: श्रोताओं, इस प्यारे से गीत के बाद कार्यक्रम में एक बार फिर से आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। तो कार्यक्रम में गीत से पहले हम राष्ट्रीय पोषण माह के बारे में बात कर रहे थे श्रोताओं। तो इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को संतुलित आहार, कुपोषण की रोकथाम, बच्चों के स्वास्थ्य, मातृ स्वास्थ्य और स्वस्थ जीवन शैली के प्रति जागरूक करना है। इस अभियान की शुरुआत की बात करें तो 2018 में पोषण अभियान के अंतर्गत की गई थी और इसका मुख्य संदेश था कि स्वस्थ शरीर स्वस्थ समाज के लिए सही पोषण बहुत जरूरी है। राष्ट्रीय पोषण की माह की बात करें तो कुपोषण को कम करना और बच्चों को स्वस्थ बनाना है। गर्भवती और स्तनपान करवाने वाली माताओं को पोषण आहार के महत्व के बारे में भी जागरूक करना है। तो इन्हीं बातों और जानकारियों के साथ श्रोताओं कार्यक्रम में थोड़ा सा रुकते हैं और आपको लिए चलते हैं प्रादेशिक समाचारों की ओर।
1: सम्मेलन 2026 आज सम्मेलन में भारत और EFTA के सदस्य देशों के वरिष्ठ अधिकारी होंगे शामिल और राहुल गांधी की हिरासत के विरोध में प्रदेश कांग्रेस आज करेगी लोक भवन के बाहर प्रदर्शन। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इन दिनों हिमाचल प्रदेश के अपने 3 दिवसीय आधिकारिक प्रवास पर हैं। प्रवास के दूसरे दिन आज राष्ट्रपति का अटल टनल रोहतांग का दौरा करने का कार्यक्रम है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू देश की दूसरी राष्ट्रपति हैं जो अटल टनल रोहतांग का दौरा कर रही हैं। इससे पहले पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी अटल टनल का दौरा किया था। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे विशेष संवाददाता।
2: हिमाचल प्रदेश के 3 दिवसीय प्रवास के दूसरे दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आज अटल टनल रोहतांग का दौरा करने का कार्यक्रम है। वे सुरंग के उत्तर और दक्षिण दोनों पोर्टल पर जाएंगी और इस ऐतिहासिक टनल के बारे में सीमा सड़क संगठन के अधिकारियों से जानकारी हासिल करेंगी। दोपहर बाद राष्ट्रपति मुर्मू मनाली के प्रसिद्ध हिडिम्बा मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगी। राष्ट्रपति के दौरे को लेकर मनाली, अटल टनल रोहतांग और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, मनाली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जनसेवा के 25 वर्ष पूर्ण कर रहे हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन आज विकसित भारत संकल्प सभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष के संबोधन के साथ ही पार्टी के कई वरिष्ठ नेता अलग अलग हिस्सों से वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस बीच भाजपा के सेवा संकल्प अभियान के तहत आज प्रदेश भर में सेवा ज्योति यात्रा के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने बताया कि इस दौरान पार्टी के विभिन्न संगठनात्मक जिलों में वरिष्ठ नेता इन कार्यक्रमों में मौजूद रहेंगे। बिंदल ने कहा कि सेवा भारतीय जनता पार्टी के लिए केवल एक कार्यक्रम नहीं बल्कि संगठन के संस्कार और कार्य पद्धति का अभिन्न अंग है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति आज भारत मंडपम में दूसरे भारत EFTA समृद्धि शिखर सम्मेलन 2026 को संबोधित करेंगे। ये सम्मेलन भारत यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के साथ व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते TEPA की पहली वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित किया जा रहा है। सम्मेलन में भारत और EFTA के सदस्य देशों के वरिष्ठ अधिकारी, उद्योग जगत के कारोबारी और प्रमुख हितधारक शामिल होंगे। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। शेष समाचार इस अंतराल के बाद।
3: अरे इतना तेज बुखार, ऊपर से खांसी और बदन दर्द, दवा ले लो।
4: हाँ वही पुरानी एंटीबायोटिक ले लेता हूँ।
3: नहीं, बिना डॉक्टर की सलाह के बिल्कुल नहीं, ये इन्फ्लुएंजा या स्वाइन फ्लू भी हो सकता है। चलो सरकारी स्वास्थ्य केंद्र चलते हैं।
5: तेज बुखार, खांसी, गले में खराश, बदन दर्द या बहती नाक को नजरअंदाज न करें। हाथ साबुन से बार बार धोएं और खांसते छींकते समय मुंह नाक ढकें। ऐसे लक्षण दिखाई दें तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाकर जांच करवाएं। जागरूक रहें, सुरक्षित रहें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
1: भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी रणधीर शर्मा ने पंजाब की आम आदमी पार्टी और हिमाचल की कांग्रेस सरकार पर हमला बोलते हुए भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था को आगामी चुनावों में बड़ा मुद्दा बनाने का ऐलान किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि पंजाब सरकार भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों से घिरी है और मुख्यमंत्री भगवंत मान के करीबियों पर लगे आरोपों ने सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने हिमाचल सरकार पर भी भ्रष्टाचार और बढ़ती आपराधिक घटनाओं को लेकर निशाना साधा। रणधीर शर्मा ने कहा कि भाजपा दोनों राज्यों में सरकारों के कार्यकाल का हिसाब जनता के सामने रखकर चुनावी मैदान में उतरेगी। राज्य सरकार स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को उनके स्थानीय उत्पादों के लिए बेहतर बाजार उपलब्ध कराने में मदद कर रही है। प्रशिक्षण के माध्यम से महिलाओं को ब्रांडिंग, पैकेजिंग, ग्राहक पसंद और बाजार की मांग समझने की जानकारी दी जा रही है, ताकि उनके उत्पाद अधिक प्रतिस्पर्धी बने और व्यवसाय टिकाऊ हो सके। अधिक जानकारी के लिए हमारे कुल्लू जिला संवाददाता।
6: प्रदेश सरकार के उद्योग विभाग के सौजन्य से विभिन्न स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं द्वारा तैयार किए गए स्थानीय उत्पादों को बाजार में पहचान दिलाने के लिए समय समय पर बाजार सफलता एवं स्थिरता तथा उद्यमिता प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इन कार्यशालाओं का उद्देश्य प्रतिभागियों के उत्पादों को बाजार में सफलतापूर्वक स्थापित करने, कारोबार को लंबे समय तक टिकाऊ बनाए रखने तथा उद्यमिता के क्षेत्र में उपलब्ध आधुनिक अवसरों और तकनीकों की जानकारी प्रदान करना है। इस दौरान प्रतिभागियों को ब्रांडिंग, पैकेजिंग, ग्राहक जुड़ाव, बाजार की मांग को समझने और उद्यमिता के आधुनिक तकनीकों के बारे में से जानकारी दी जाती है, ताकि स्थानीय स्तर पर तैयार किए जाने वाले उत्पादों की गुणवत्ता, पैकेजिंग और निरंतरता पर विशेष ध्यान देकर उन्हें प्रतिस्पर्धी बाजार में बेहतर पहचान दिलाई जा सके। आकाशवाणी के लिए कुल्लू से आशीष शर्मा।
1: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को दिल्ली में हिरासत में लिए जाने के विरोध में प्रदेश कांग्रेस आज लोकभवन के बाहर प्रदर्शन करेंगी। इसमें मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सहित प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार, प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री, विधायक, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी और पार्टी कार्यकर्ता शामिल होंगे। शिमला के केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान में आलू प्रसंस्करण और गुणवत्ता प्रबंधन को लेकर 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम कल से शुरू हुआ है। 8 अक्टूबर तक चलने वाले इस कार्यक्रम में भारत और बांग्लादेश से पेप्सिको के अधिकारी भाग ले रहे हैं। प्रशिक्षण का उद्देश्य प्रसंस्करण योग्य आलू के उत्पादन, गुणवत्ता प्रबंधन, टिकाऊ खेती और आलू मूल्य श्रृंखला को मजबूत करना है। संस्थान के कार्यवाहक निदेशक डॉक्टर जगदेव शर्मा ने कहा कि प्रसंस्करण उद्योग किसानों और अनुसंधान संस्थानों के बीच बेहतर समन्वय से उत्पादकता और किसानों की लाभप्रदता बढ़ाई जा सकती है। अब एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर। आज समाचार पत्रों ने राष्ट्रपति के हिमाचल दौरे से जुड़ी खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। अमर उजाला की सुर्खी है, एम्स बिलासपुर के पहले दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति मुर्मू ने सम्मानित किए होनहार, कहा महंगे इलाज से राहत के लिए सस्ती चिकित्सा के विकल्प तलाशे एम्स। पंजाब केसरी का शीर्षक है, हिमाचल के ग्रामीण व दुर्गम क्षेत्रों तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुँचाना चिकित्सक की जिम्मेदारी। दैनिक जागरण की एक खबर है, सरकार ने पलटा कार्यवाहक कुलपति बवेजा का आदेश, सिद्धार्थ ही रजिस्ट्रार। हिमकेयर में अब मिलेगा 10 लाख का स्वास्थ्य कवर, शीर्षक से दिव्य हिमाचल लिखता है, 5 लाख बेसिक, 5 लाख टॉपअप, कवर देने की तैयारी में हिमाचल सरकार। हाईकोर्ट के हवाले से दैनिक भास्कर लिखता है, सीनियर लैब तकनीशियनों को पंजाब के समान वेतनमान नहीं मिलेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज करेंगी अटल टनल रोहतांग का दौरा, सुरक्षा के किए कड़े प्रबंध। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आज शासकीय सेवा में 25 वर्ष पूर्ण, मोदी विकसित भारत संकल्प सभा को करेंगे संबोधित। भारत EFTA समृद्धि शिखर सम्मेलन 2026 आज, सम्मेलन में भारत और EFTA के सदस्य देशों के वरिष्ठ अधिकारी होंगे शामिल। और राहुल गांधी की हिरासत में विरोध में प्रदेश कांग्रेस आज करेगी लोकभवन के बाहर प्रदर्शन। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं प्रातः 11 बजे। नमस्कार।

शोध इसी गूंज के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं, क्योंकि बहुत सारी बातें, बहुत सारी जानकारियां अभी आपके साथ साझा करनी है। पोषण माह के शोध हम समाचारों से पहले बात कर रहे थे, तो लोगों को संतुलित और पौष्टिक भोजन अपनाने के लिए प्रेरित करता है, अनीमिया यानी खून की कमी के प्रति जागरूक करता है, साथ ही साथ स्वच्छता, साफ पानी और स्वास्थ्यकर आदतों को बढ़ावा देता है। इसके साथ साथ स्थानीय और मौसमी खाद्य पदार्थों के उपयोग को भी प्रोत्साहित करता है। अब संतुलित आहार की बात करें कि संतुलित आहार क्यों ज़रूरी है, तो हमारे भोजन में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, विटामिन्स, खनिज और पर्याप्त मात्रा पानी की होना बेहद ज़रूरी है। दालें, हरी सब्जियां, फल, दूध, दूध से बने पदार्थ, अनाज, मोटे अनाज, मेवे और बीज पौष्टिक आहार के अच्छे स्रोत होते हैं। और बच्चों को केवल पेट भरने वाला भोजन नहीं, बल्कि ऐसा भोजन देना चाहिए जो उनके शारीरिक विकास, मस्तिष्क के विकास और रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करे। पोषण की शुरुआत शिशु घर से होती है और माता पिता को बच्चों की थाली में अलग अलग प्रकार के पौष्टिक खाद्य पदार्थ शामिल करने चाहिए। भोजन से पहले हाथ धोना, साफ पानी पीना, ताज़ा भोजन करना और भोजन की बर्बादी ना करना ही अच्छे पोषण का हिस्सा भी माना जाता है। राष्ट्रीय पोषण माह हमें ये संदेश भी देता है कि स्वस्थ जीवन के लिए केवल खाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि सही मात्रा में सही और पौष्टिक भोजन करना बेहद ज़रूरी है। यदि हर परिवार पोषण के प्रति जागरूक हो जाए, तो कुपोषण को कम करना, एक स्वस्थ और मजबूत भारत का निर्माण किया जा सकता है। तो श्रोता, अपनी जानकारी

श्रोताओं, इस प्यारे से गीत के बाद कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का एक बार फिर से स्वागत है। कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला अपनी दोस्त सुमन के साथ। तो कार्यक्रम में हम आगे बढ़ते हैं और थोड़ी सी बात श्राद्धों की करते हैं। श्रोताओं, हम सभी जानते हैं कि आजकल श्राद्ध के दिन चल रहे हैं और हमारे पितृ जो धरती पर शुक्षण रूप में आए होते हैं और हम उनका सम्मान भी करते हैं, और मान्यता ऐसी है कि हम उनकी जो है थोड़ा सा उनके लिए अन्न का दान करते हैं, उनके लिए भोजन बनाते हैं और अपनी श्रद्धा भाव से वो जो है श्राद्ध उनका करते हैं। इससे घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है और इसके साथ साथ जो है इन दोनों पितरों की आत्मिक शांति के लिए तर्पण, जल देना, पिंडदान और ब्राह्मण भोज भी करवाया जाता है। और पंचवली भोज की बात श्रोताओं करें तो श्राद्ध का भोजन तैयार होने के बाद उनका एक हिस्सा गाय, कौए और देव और चींटियों को देना अनिवार्य माना जाता है। खासकर कौए और गाय को भोजन देना बेहद शुभ माना जाता है। तो साथ ही साथ अगर किसी पूर्वज की मृत्यु की तिथि याद नहीं है तो उनका श्राद्ध आखिरी दिन यानी 10 अक्टूबर को हम सर्व पितर अमावस्या के दिन कर सकते हैं और इस दिन सभी पितरों से निर्मित श्राद्ध किया जा सकता है। अब श्राद्ध की थोड़ी सी सावधानियों की बात करें श्रोताओं, तो श्राद्ध पक्ष के दौरान घर पर पूरी तरह से सात्विक माहौल रहना चाहिए। लहसुन, प्याज, तामसिक भोजन और नशीली चीज़ों से परहेज थोड़ा सा रखा जाए तो अच्छा रहता है। कहते हैं विधि विधान से कोई काम किया जाए तो वो पूरी तरह से पूर्ण होता है। ये कुछ ऐसे दिन होते हैं जिनमें हम सभी अपने अपने घरों पर जो हमारे पूर्वजों को पसंद था उस तरह का भोजन बनाते हैं, और कुछ सबकी अपनी अपनी श्रद्धा होती है। कुछ लोग लोगों को ज़्यादा खिलाना चाहते हैं और कुछ जो है गरीब लोगों को खिलाते हैं, कुछ ज़्यादा लोगों को अपने घर पर बुलाते हैं, कुछ अपने ही घर पर कर देते हैं। और अगर दान की बात करें तो कुछ कच्चा अनाज भी दूसरों को दान के रूप में देते हैं। तो सबकी अपनी अपनी श्रद्धा होती है, अपनी श्रद्धा और टाइम के हिसाब से हम सभी जो है श्राद्ध करते हैं। तो श्रोताओं, इन दिनों में श्राद्ध चल रहे हैं तो आप भी सभी अपने अपने पूर्वजों का जो है श्राद्ध ज़रूर करें, क्योंकि ऐसा करने से घर में सुख शांति और बरकत आती है, हमारे पितरों की जो है दया दृष्टि हम पर बनी रहती है। और साथ ही साथ कहा जाता है कि पितृ एक बार रुष्ट हो जाए तो भगवान को मनाना आसान होता है लेकिन पितरों को मनाना बहुत मुश्किल होता है। पितर जो है हमेशा हम पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखते हैं। जब हम उनका श्राद्ध करते हैं तो जो चीज़ें ज़िंदगी में ज़रूरी होती हैं वो हमें ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि जब हम वो काम करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे बच्चे भी घरों पर वो काम होता देखते हैं और बच्चे पेरेंट्स से ही, अभिभावकों से ही बहुत कुछ सीखते हैं। यही एक हमारे रीति रिवाज और परंपराएँ होती है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हैं। जब हम अपने बच्चों के सामने इस तरह से विधि विधान से किसी काम को करते हैं तो वो भी धीरे धीरे उन कामकाज को करना सीख जाते हैं। तो ये तो थी श्राद्ध की जानकारी। इसी जानकारी के साथ फिर से कार्यक्रम में आप सभी का करवाते हैं मनोरंजन। कार्यक्रम के इस प्यारे से गीत के साथ तो सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर श्रोताओं, इस समय आप सुन रहे हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला अपनी दोस्त सुमन के साथ। तो श्रोताओं, कार्यक्रम में आज हम पितृपक्ष की बात कर रहे हैं। भारतीय संस्कृति में परिवार, संस्कार और पूर्वजों का विशेष महत्व रहता है। हमारे जीवन में माता पिता और बुजुर्गों के योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। इसी भावना को सम्मान देने के लिए हिंदू धर्म में पितृपक्ष, जिसे श्राद्ध पक्ष भी कहा जाता है, हम लोग मना रहे हैं। ये समय हमारे दिवंगत पूर्वजों को श्रद्धा पूर्वक याद करने, उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने और उनके लिए तर्पण तथा श्राद्ध करने के लिए मनाया जाता है। और साथ ही साथ जो है, परिवार के लोग अपने पूर्वजों की मृत्यु तिथि के अनुसार श्राद्ध करते हैं। इस जिन्हें पूर्वजों की मृत्यु तिथि ज्ञात नहीं होती है, वैसे भी हमने पहले भी बात की, वो जो है लास्ट श्राद्ध करते हैं और कहा जाता है कि ये श्राद्ध हमारे सभी पितरों को लग जाता है। अब श्राद्ध शब्द की बात करें तो श्राद्ध शब्द श्रद्धा से बना है, जिसका अर्थ है ये केवल धार्मिक परंपरा नहीं है, बल्कि पूर्वजों के प्रति सच्ची श्रद्धा और सम्मान की भावना है। श्राद्ध के दौरान लोग पितरों के नाम से जल अर्पित करते हैं, जिसे तर्पण कहा जाता है। कई परिवार जो है पिंड दान करते हैं, ब्राह्मण जरूरतमंद गरीबों को भोजन और दान देते हैं। और हमारी भारतीय परंपरा गाय, कौए और अन्य जीवों को भोजन कराने की प्रथा भी देखने को मिलती है। श्रोताओं, पितृपक्ष हमें पूर्वजों के जीवन और उनके योगदान को याद करने का अवसर देता है। उन्होंने परिवार को आगे बढ़ाने, संस्कार देने और समाज में अपनी भूमिका निभाने के लिए अनेक कठिनाइयों का सामना किया है। इसलिए उनके प्रति सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करना हमारी सांस्कृतिक परंपरा का महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो श्रोताओं, कार्यक्रम में हम और भी जानकारियाँ आपके लिए लेकर आए हैं, उन्हें भी साझा करेंगे। फिलहाल कार्यक्रम में रुकते हैं और आप तक पहुँचाते हैं कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत। तो सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

श्रोताओ, इसी गीत के साथ कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो कार्यक्रम में हम आगे बढ़ते हैं। हमारी पितृपक्ष के बारे में बात हो रही थी। श्रोताओ, हमारे पूर्वजों को सम्मान मिलना चाहिए क्योंकि वो इसके हकदार होते हैं। जीवित रहते हुए उनकी सेवा करने की प्रेरणा जो है हमें अपने बच्चों को आगे भी देनी है। केवल पूर्वजों के निधन के बाद उन्हें याद करना ही पर्याप्त नहीं होता है, बल्कि अपनी माता पिता और वृद्धजनों की ज़रूरतें, भावनाओं और सम्मान का ध्यान रखना भी हमारा कर्तव्य रहता है। आज के आधुनिक युग में लोग अपनी व्यस्तता के कारण कई पारंपरिक रीति रिवाजों से दूर होते जा रहे हैं। इस समय में पितृपक्ष हमें अपनी जड़ों, संस्कारों और पारिवारिक मूल्य से जोड़ने का काम करता है। हालाँकि अलग अलग परिवार और क्षेत्रों में श्राद्धों की विधियां अलग अलग होती हैं और पुरुषों का समरण, सम्मान और उनके प्रति कृतज्ञता हर एक व्यक्ति में होनी चाहिए। श्रोताओ, कहा जाता है पितृपक्ष केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं है, बल्कि भावनाओं और संस्कारों से जुड़ा अवसर है। ये हमें सिखाता है कि हमें अपने आने वाली पीढ़ियों को भी अपने पूर्वजों के योगदान और परिवार की परंपराओं को के बारे में बताना चाहिए। और हमारे अतीत की पहचान है और उन्हें सम्मान भी देना चाहिए। इन बातों और जानकारियों के साथ श्रोताओं, आपको फिर से लिए चलते हैं कि संगीत की ओर।

श्रोता, इस समय आप सुन रहे हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला और कार्यक्रम आप सभी के रेडियो सेट पर इस समय चल रहा है गुड मॉर्निंग धर्मशाला। प्यारी सी सुबह में एक बार फिर से हमारे श्रोताओं का स्वागत है, क्योंकि हर कोई अपने अपने हिसाब से जुड़ता है। कई बार इतने ज़रूरी काम होते हैं कि कई बार टाइम से हम रेडियो ऑन करना भी भूल जाते हैं, और जैसे जैसे समय मिलता है अपनी सुविधा के अनुसार हमें ध्यान आता है कि अरे रेडियो सुनना है, बहुत सारा जानकारी और नए नए दोस्त हर बार हमारे लिए ढेर सारे गाने भी लेकर आते हैं और उन्हें प्ले करते हैं। जी हाँ श्रोताओ, एक आपका प्यार ही तो है कि हम चले आते हैं हर दिन आपसे मिलने और ढेर सारी बातें करने। तो श्रोताओ, चलिए फिर से थोड़ा सा कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और बात थोड़ी सी स्वास्थ्य को लेकर करते हैं। क्या श्रोताओ, आप जानते हैं कि पैरों के साथ साथ हमारी आँखें भी वॉक करती हैं? शायद आपने कभी ऐसा महसूस ही नहीं किया होगा। आप सोचते हैं कि हम चलते हैं पैरों से, तो जाहिर सी बात है कि पैरों से ही वॉक होती है। नहीं श्रोताओ, हमारी आंखें भी वॉक करती हैं। जब हम दौड़ते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा ध्यान इधर उधर जाता है। उसी को कहा जाता है कि हमारे पैरों के साथ हमारी आंखें भी वॉक करती हैं। अब चलिए थोड़ा सा वॉक को लेकर नए ट्रेंड की बात करें, तो वॉक के साथ नए ट्रेंड सामने आते हैं और चलते समय किसी खास रंग को देखने का एक नया ट्रेंड जो है हम अपनाते हैं। आजकल की भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में फिट रहने के लिए हम लोग जिम में जाकर पसीना बहाते हैं और फिर या फिर जॉगिंग करते हैं, वॉकिंग करते हैं, ब्रिस्क वॉकिंग करते हैं, जाने कितने सारे तरीके अपनाते हैं। लेकिन हाल ही के दिनों में सोशल मीडिया पर एक और अनोखा फिटनेस ट्रेंड छाया हुआ है, जिसे कलर वॉकिंग कहा जाता है। ये सिर्फ शरीर को थकाने वाला व्यायाम नहीं है, बल्कि मन को शांति देने वाला एक मानसिक अभ्यास है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कौन सी वॉक है, किस तरह से की जाती है। ये कलर वॉकिंग की बात करें श्रोताओं, तो कलर वॉकिंग एक कॉन्सेप्ट जितना सरल है उतना ही प्रभावी है। इसमें पैदल चलते समय हमारे लिए एक विशेष रंग चुनना होता है। मान लीजिए हमने लाल रंग चुना है, तो पूरी वॉक के दौरान हमारा ध्यान केवल लाल रंग की चीज़ों को खोजने पर होगा। जैसे कोई लाल फूल, किसी की लाल टी शर्ट, लाल रंग का सूट, लाल रंग की कार या कोई भी वाहन, लाल रंग का कोई घर या फिर लाल रंग का कोई भी चीज़ हो सकती है। ये अभ्यास हमारी सामान्य वॉक को एक खोज या गेम में बदल देता है। ये कोई नई खोज नहीं है, बल्कि माइंडफुलनेस यानी सजगता का एक सही तरीका है। इसे हमारी आंखें भी सतर्क रहती है, दिमाग भी सतर्क रहता है, खैर पैर तो चलते ही रहते हैं। तो श्रोताओं, इसे कहा जाता है कि पैरों के साथ साथ हमारी आंखें भी करती हैं वॉक। खैर वॉक तो हमारी जारी रहेगी, लेकिन वॉक के चलते चलते सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत। तो आप यूं ही सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

श्रोतो, एक बार फिर से हम वापिस आ गए हैं अपने स्टूडियो में और अपने विषय की ओर। तो हमारी बात जो है वॉक के बारे में हो रही थी। पैरों के साथ साथ आंखें भी वॉक करती हैं। खैर, वॉक वाले तो वॉक करते हैं, लेकिन बच्चों की बात की जाए, बच्चे इस चीज़ को बड़ा इंजॉय करते हैं और इसे खेलते भी हैं। जैसे किसी कलर को चूज़ कर लेना और फिर उसको टच करना, और जो जिसको नहीं वो कलर मिल पाता था उसे गेम से आउट कर दिया जाता था। खैर, इस समय तो हम पैरों की वॉक के बारे में बात कर रहे हैं कि पैरों की वॉक के साथ साथ आंखें भी वॉक करती हैं। तो फिर से हम अपने बातों की ओर आते हैं। हम अक्सर टहलते समय या फ़ोन में व्यस्त रहते हैं, या अपने विचारों में खोए रहते हैं, या हेडफोन लगाए और गाने सुनते रहते हैं। लेकिन सुनने के साथ साथ अपनी आँखों को भी थोड़ा सा हमें जो है वॉक पर लगा देना चाहिए। जब हम किसी खास रंग की तलाश करते हैं तो हमारा मस्तिष्क बाहरी दुनिया के प्रति अधिक सतर्क हो जाता है। ये मंकी माइंड विचारों को शांत करने का एक बेहतरीन तरीका है, और इस तरह से अगर हम करें तो हम थोड़ा सा एक्टिव भी महसूस करते हैं और अच्छा लगता है इस तरह से अपने आप को सतर्क रहना। फिलहाल सतर्क तो हम बहुत देर से हैं, क्योंकि आपके साथ बातें जब होती हैं तो हमारा ध्यान गानों गीतों की तरफ भी रहता है कि हमारे श्रोताओं को अगला कौन सा गीत सुनाया जाए। तो बिल्कुल देरी ना करते हुए कार्यक्रम का अगला गीत श्रोताओं आप तक पहुँचा रहे हैं। आप इंजॉय करें इस प्यारे से गीत को।

जी हाँ श्रोता, बिल्कुल मोहब्बत दिल का सुकून होता है, ये तो वो ही महसूस कर सकते हैं जिनको मोहब्बत हुई है। ज़रूरी नहीं है कि एक लड़का लड़की लेडी या पुरुष में ऐसा हो, भाई बहन में भी प्यार होता है, माँ बाप में भी प्यार होता है, दोस्तों में भी प्यार होता है, हर किसी रिश्ते में प्यार होता है। और प्यार बहुत ही मजबूत होता है, मन को सुकून देता है, खुशी देता है, और इन्हीं प्यारे से रिश्तों के साथ जीवन का सफ़र भी श्रोता हम तय करते हैं। तो इसी सफ़र के साथ बहुत सारी जो हैं बातें और जानकारियां हम लेकर आए हैं, उन्हें भी आपके साथ साझा करते हैं। कुछ स्थानीय जानकारियों की और रुक करें तो बच्चों में कुपोषण और रोकथाम तथा उनसे समुचित शारीरिक तथा मानसिक विकास को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से महिला तथा बाल विकास विभाग तथा जिला प्रशासन कांगड़ा के सहयोग से रक्कड़ में मिशन भरपूर 2.0 का शुभारंभ किया गया है। उपायुक्त ने कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि भाग लिया है और मिशन भरपूर का शुभारंभ किया है। इस अवसर पर उपायुक्त कांगड़ा हेमराज भैरवा ने कहा है कि हमारा विश्वास है कि स्वस्थ बच्चे ही स्वस्थ परिवार, स्वस्थ समाज और मजबूत राष्ट्र की आधारशिला होती है। आज के नौनिहाल ही देश की आने वाली पीढ़ी है, और यदि उन्हें बचपन से ही उचित पोषण, स्वास्थ्य और बेहतर वातावरण मिले तो आगे चलकर समाज और देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। तो श्रोताओं, अपनी जानकारियों के साथ कार्यक्रम में फिर से सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला प्यारा सा गीत। तो आप सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

श्रोता, इस समय आप जुड़े हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला। गुड मॉर्निंग धर्मशाला कार्यक्रम में श्रोताओं, मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त सुमन लेकर हाजिर हुई हूं इस प्यारे से कार्यक्रम को। तो श्रोताओं, कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर हम आप पहुंचे हैं। ढेर सारी बातें और जानकारियां हमने आपके साथ साझा की है और उम्मीद है आपको वो पसंद भी आई होंगी। इन्हीं जानकारियों के साथ कार्यक्रम का अंतिम गीत आप तक पहुँचाते हैं। सुनते रहिए रेडियो गुंजन।

0: सर मेरा फोन चोरी हो गया, आपका फोन दे दीजिए सर प्लीज, एक कॉल करना है सर प्लीज सर।
1: अरे भाई मैं कुछ काम कर रहा हूँ,
0: एक कॉल करूँ सर पापा को बस सर प्लीज सर, फोन चोरी हो गया सर मेरा, मेरे को पापा को अर्जेंट कॉल करना है सर।
1: अच्छा ठीक है तुम कह रहे हो तो, लेकिन सिर्फ एक कॉल। हाँ
0: हाँ सर, थैंक यू सर। हेलो, हाँ पापा ये फोन चोरी हो गया मेरा, तो मैं एक दिन के फोन से फोन किया हूँ। हाँ हाँ 1238 रुपये बस है मेरे पास अभी। हाँ ठीक है ना, ठीक है ये लीजिए सर आपका फोन, थैंक यू फोन करने देने के लिए, थैंक्स अ लॉट।
1: कोई बात नहीं, ठीक है। फिर इतने पैसे कैसे कट?
0: हाँ 1238 रुपये बस है मेरे पास अभी।
1: कितने पैसे?
2: ये भी एक तरह का साइबर क्राइम है, तो इस सिचुएशन से बचने के लिए आप ये कर सकते हैं कि आप अपना फोन किसी भी अनजान व्यक्ति को देने से बचें, और अगर आप दे रहे हैं तो ये ध्यान रखें कि आप सामने रहकर उसे यूज करवाएं। तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए।
3: ले जा रहे ना तुम्हें पिक्चर, चलो बैठो बैठो।
4: बढ़िया,
3: फर्स्ट डे फर्स्ट शो, ऑनलाइन बुकिंग भी नहीं किया है, पूरे टाइम लाइन में धूप में खड़े थे, और पता कितना टाइम?
5: कितना टाइम?
3: अरे पूरे 2 घंटे।
5: अरे तुम्हारे टाइम के बारे में नहीं पूछ रहे हैं बुरबक, इनके खांसी के बारे में पूछ रहा है।
6: खांसी ये तो 2 हफ्तों से हो रही है।
5: 2 हफ्ते? पिक्चर ले जाते हैं फर्स्ट डे फर्स्ट शो और खांसी को हो गए 2 हफ्ते, ये तो बहुत केयरलेस है। चलिए हमारे साथ
3: डॉक्टर।
6: डॉक्टर?
3: अरे आप तो बड़े सीरियस हो गए।
5: और नहीं तो क्या, 2 हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी होगा तो टीबी हो सकता है।
3: टीबी?
5: हाँ, तुरंत डॉक्टर से मिलिए।

0: तो याद रखिएगा, दुनिया गोल है, चीजें घूम कर आती है। आज किसी को मदद की जरूरत है, उसकी आंखें ढूंढ रही है कोई तो मेरी मदद कर दे, और आप मदद कर सकते हैं, फिर भी आप सामने से ये सोचते हुए जा रहे हैं हमें क्या। किसी दिन आपको भी मदद की जरूरत पड़ेगी, तब आपकी नजरें ढूंढ रही होगी कोई मेरी मदद कर दे, और सामने से लोग यही सोचते हुए जा रहे होंगे हमें क्या।
1: सारा जहां है जिसकी शरण में, नमन है उस माँ के चरणों में। साल का वो सबसे पावन समय आ रहा है जब माँ शक्ति हमारे जीवन में ढेरों खुशियां भरने के लिए आ रही हैं। आ रहे हैं आस्था, शक्ति और आनंद के 9 दिन। आप सभी को रेडियो गुंजन परिवार की ओर से नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। इस बार फिर से मनाइए भक्ति और मस्ती का ये त्योहार सिर्फ हमारे साथ। सुनते रहिए 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला। स्टे ट्यून्ड।

0: सड़ा हुआ आलू, सड़ा हुआ आलू निकला।
1: बहुत खूबसूरत लग रही हो, नया सूट पहने क्या?

91.2 मेगाहर्ट्ज पर यह है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और श्रोताओं, मैं हूँ आपकी रेडियो दो शशि और हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम लेकर गीत सुहाने नए पुराने। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस प्यारे से गीत के साथ। आप सभी यूं ही सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

तो श्रोतो, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत, गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का। तो अपने कार्यक्रम में फिर से हम आगे बढ़ते हैं और आपको ले चलते हैं फिर से एक प्यारे से गीत के सफर में।

91.2 FM पर यह है आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो बिल्कुल अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं एक और गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो इसी के साथ अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत। फिर से कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको फिर से ले चलते हैं एक और गीत की तरफ। तो आप सभी यूं ही सुनते रहिए अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला।

ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत। फिर से आपको ले चलते हैं एक और गीत की तरफ।

91.2 MHz पर यह आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। गीत सुहाने नए पुराने, तो फिर से अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

तो श्रोतो, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत, गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का। तो अपने कार्यक्रम में फिर से हम आगे बढ़ते हैं और आपको ले चलते हैं फिर से एक प्यारे से गीत के सफर में।

0: सर मेरा फ़ोन चोरी हो गया, आपका फ़ोन दे दीजिए सर प्लीज़, एक कॉल करना है सर प्लीज़ सर।
1: अरे भाई मैं कुछ काम कर रहा हूँ,
0: मैं एक कॉल करूँगा सर पापा को बस सर प्लीज़ सर, फ़ोन चोरी हो गया सर मेरा, मेरे को पापा को अर्जेंट कॉल करना है सर।
1: अच्छा ठीक है तुम कह रहे हो तो, लेकिन सिर्फ एक कॉल। हाँ
0: हाँ सर, थैंक यू सर। हेलो, हाँ पापा ये फ़ोन चोरी हो गया मेरा, तो मैं एक जन के फ़ोन से फ़ोन किया हूँ। हाँ हाँ 1238 रुपये बस है मेरे पास अभी। हाँ ठीक है ना, ठीक है, ये लीजिए सर आपका फ़ोन, थैंक यू फ़ोन करने देने के लिए, थैंक्स अ लॉट।
1: कोई बात नहीं, ठीक है। फिर इतने पैसे कैसे कट?
0: हाँ 1238 रुपये बस है मेरे पास अभी।
1: कितने पैसे? माय,
2: ये भी एक तरह का साइबर क्राइम है, तो इस सिचुएशन से बचने के लिए आप ये कर सकते हैं कि आप अपना फ़ोन किसी भी अनजान व्यक्ति को देने से बचें, और अगर आप दे रहे हैं तो ये ध्यान रखें कि आप सामने रहकर उसे यूज़ करवाएं। तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए।
3: ले जा रहे हैं ना तुम्हें पिक्चर, चलो बैठो बैठो।
4: बढ़िया,
3: फर्स्ट डे फर्स्ट शो, ऑनलाइन बुकिंग भी नहीं किया है, पूरे टाइम लाइन में धूप में खड़े थे, और पता कितना टाइम?
5: कितना टाइम?
3: अरे पूरे 2 घंटे।
5: अरे तुम्हारे टाइम के बारे में नहीं पूछ रहे हैं बुर्बक, इनके खांसी के बारे में पूछ रहा है।
6: खांसी ये तो 2 हफ्तों से हो रही है।
5: 2 हफ्ते? पिक्चर ले जाते हैं फर्स्ट डे फर्स्ट शो और खांसी को हो गए 2 हफ्ते, ये तो बहुत केयरलेस है। चलिए हमारे साथ
3: डॉक्टर।
6: डॉक्टर?
3: अरे आप तो बड़े सीरियस हो गए।
5: और नहीं तो क्या, 2 हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी होगा तो टीबी हो सकता है।
3: टीबी?
5: हाँ, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए, क्योंकि टीबी जो है
6: वो किसी को भी हो सकता है।
5: और अगर हो गया तो बिना फूले पूरा कोर्स करिए और उसके बाद बेफिक्र हो जाइए, और नहीं किया ना तो इसका इलाज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे हीरो हीरा लाल।
3: चलो
5: 2 हफ्तों से ज्यादा खांसी, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए। टीबी हारेगा, देश जीतेगा।

0: याद रखिएगा, दुनिया गोल है, चीजें घूमकर आती हैं। आज किसी को मदद की जरूरत है, उसकी आंखें ढूंढ रही है कोई तो मेरी मदद कर दे, और आप मदद कर सकते हैं, फिर भी आप सामने से ये सोचते हुए जा रहे हैं हमें क्या। किसी दिन आपको भी मदद की जरूरत पड़ेगी, तब आपकी नजरें ढूंढ रही होगी कोई मेरी मदद कर दे, और सामने से लोग यही सोचते हुए जा रहे होंगे हमें क्या।
1: सारा जहां है जिसकी शरण में, नमन है उस माँ के चरणों में। साल का वो सबसे पावन समय आ रहा है जब माँ शक्ति हमारे जीवन में ढेरों खुशियाँ भरने के लिए आ रहे हैं। आस्था, शक्ति और आनंद के 9 दिन। आप सभी को रेडियो गुंजन परिवार की ओर से नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। इस बार फिर से मनाइए भक्ति और मस्ती का ये त्योहार सिर्फ हमारे साथ। सुनते रहिए 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला। स्टे ट्यून्ड।

0: सड़ा हुआ आलू, सड़ा हुआ आलू निकला।
1: बहुत खूबसूरत लग रही हो, नया सूट पहने क्या?

0: आइए, स्वागत करते हैं रूमा जी का इस हमारी बहुत ही खास बातचीत में, बहुत ही खास कार्यक्रम में।
1: थैंक यू रुचिका
0: जी, तो कैसे हैं रूमा जी आप?
2: बहुत बढ़िया हूँ और अच्छा लग रहा है फिर से जुड़ना अपने दोस्तों के साथ और आपसे मिलके तो और भी अच्छा लग रहा है।
0: जी
2: एक अलग किस्म की फ्रेशनेस जो है वो एटमॉस्फेयर में आ गई है तो अच्छा लग रहा है।
0: बहुत अच्छी बात है, जब हम खुश होते हैं, मन खुश होता है, तो जिंदगी और भी प्यारी लगने लग जाती है।
2: बिल्कुल
0: जी, तो रोमा जी, हमने पिछली कड़ी में बात की थी, जैसे कि हमारे दोस्त जानते ही हैं कि हर हफ्ते हमारे दोस्तों के लिए रहती है कुछ खास जानकारियाँ,
2: बिल्कुल
0: और हमने पिछली कड़ी में बात की थी छुट्टियों से जुड़ी, है ना।
2: बिल्कुल
0: कुछ ऐसे कार्यकर्ता होते हैं जिन्हें कि मतलब कि कई बार जानबूझकर छुट्टी नहीं दी जाती है,
2: बिल्कुल
0: तो थोड़ा सा उस पर हम नज़र डालेंगे कि किस तरह से हमने उस बातचीत को लोगों तक पहुंचाया था, दोस्तों को अवेयर किया था। थोड़ा सा हम टच लेंगे उस बात का, उसके बाद हम आएंगे इस बातचीत से जुड़े कानूनों पर आधारित अपने अधिकारों पे। जी दोस्तों,
2: बिल्कुल रुचिका, पिछली बार जब हमने बात की थी तो मुझे याद है हमने एक तो स्कूलों में जो छुट्टियां होती हैं और बच्चे उनको किस तरह से इंजॉय करते हैं उसको कवर किया था, साथ ही साथ इन छुट्टियों का हमारे दैनिक जीवन में या हमारी डे टू डे लाइफ में क्या उसकी इम्पोर्टेंस है उसके बारे में भी हमने जिक्र किया था।
0: जी
2: छुट्टियाँ हमें मिलती हैं तो आपको भी पता है कि हमारा जो मानसिक तनाव है वो काफ़ी हद तक जो है वो कम हो जाता है और उसके साथ साथ हमारा स्वास्थ्य भी ठीक रहता है। और जब छुट्टी मिलती है तो उस छुट्टी का हम अपने अपने तरीके से इस्तेमाल करते हैं, हमारी जो सोशल रीच है वो बढ़ती है, हमारा अपने रिलेटिव्स के साथ मिलना हो जाता है, दोस्तों के साथ हम मिलते जुलते हैं, आउटिंग हो जाती है। और जब ये सब चीज़ें हमें मिलती हैं तो हमारा जो माइंड है वो फ्रेश हो जाता है और सभी दोस्त जानते हैं जब हम फ्रेश होते हैं तो काम करने के प्रति जो हमारी रुचि है वो और बढ़ती है और अधिक ऊर्जा के साथ हम अपने काम को अंजाम देते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा है दोस्तों रूमा जी ने, कि जब ये छुट्टियों की बात आती है तो चेहरे पे मुस्कान अलग सी ही आ जाती है, कि कुछ समय जो है माइंड को रिलैक्स करने का, थोड़ा सा अपने आप को भी रिलैक्स मोड पे लेके जाने का समय हमारी ज़िंदगी में एंटर करता है। तो वीकली एक दिन ऐसा ज़रूर होना चाहिए हर किसी की लाइफ
2: बिल्कुल,
0: में।
2: और हम सभी संडे एंजॉय करते हैं
0: जी
2: और जो सरकारी कर्मचारी हैं या विभिन्न निजी कंपनियां हैं वहां तो संडे को छुट्टी मिलती है, लेकिन कुछ ऐसे भी संस्थान हैं जहां पे हर एक व्यक्ति को संडे को छुट्टी नहीं मिल सकती है, जैसे कि हमारे अस्पताल हैं,
0: जी
2: अस्पतालों में मरीजों का आना जाना लगा रहता है तो वहाँ के हर एम्प्लॉय को एक दिन ऐसा दिया जाता है कि वो छुट्टी कर सकें, अस्पताल का काम भी चला रहे, मरीजों की तीमारदारी जो है वो भी अच्छे से हो सके। तो इसलिए हर जगह छुट्टी का अलग अलग दिन भी मुकर्रर किए जाते हैं और मेरे हिसाब से ये सबके लिए होना भी चाहिए।
0: जी बिल्कुल। तो दोस्तों, ये बहुत ही खास बातचीत आप सभी के साथ साझा की थी, और ये थोड़ा सा टच हमने इसलिए लिया ताकि आप उस बात से आज के इस बात को जो है वो रिलेट कर सकें, उसके साथ जोड़ सकें कि किन अधिकारों की हम बात कर रहे हैं और किस तरह से जो है हमारी ज़िंदगी में जो वीकली साप्ताहिक छुट्टी जो है वो ज़रूरी है हमारे लिए, हमारे अपनों के लिए, रिश्तों को बनाए रखने के लिए भी कई बार ये
2: बिल्कुल
0: बेहद ज़रूरी रहता है।
2: बिल्कुल, आपने अक्सर सुना होगा कई बार क्या होता है खासकर हम महिलाओं के जीवन में जो घरेलू महिलाएं भी हैं,
0: जी
2: हमारे रिश्तेदारी में कहीं पर कोई फंक्शन आ जाता है और घर के जो पुरुष सदस्य हैं या महिला भी अगर वो काम करने जा रही हैं तो अगर ऑफिस से उनको छुट्टी नहीं मिलती है तो कितनी टेंशन हो जाती है, मन कितना भारी हो जाता है कि हम
0: बिल्कुल
2: अपने रिश्तेदार के यहाँ किसी फंक्शन पर भी नहीं जा पाए। तो इस तरह से भी हमारे कानूनों में प्रावधान है कि अगर आपको कोई ज़रूरी छुट्टी है या आप कभी बीमार पड़ जाते हैं तो तब भी आपके लिए छुट्टियों की व्यवस्था सरकार द्वारा अलग अलग कानूनों के माध्यम से की गई।
0: जी दोस्तों, तो अब हम बिना समय को बर्बाद किए कानूनों पे आने वाले हैं, लेकिन थोड़ा सा ब्रेक तो बनता
2: बिल्कुल बिल्कुल
0: है।
2: बिल्कुल
0: तो
2: देखो
0: आज क्यों ना मनोरंजन की शुरुआत रूमा जी की फरमाइश के साथ की जाए, क्योंकि ये खुद भी बहुत ही प्यारे प्यारे से गीत गुनगुनाते हैं, तो इन्हीं की फरमाइश का गीत आप सभी तक पहुंचाएंगे।
2: कोई भी गीत सुना दिए दीजिए रुचिका जी, आपकी चॉइस बहुत अच्छी है, जब भी मैंने गीत सुना है उसने मन को बहुत ही सुकून मुझे मिला है आपके चॉइस के गीतों से भी। तो आज ऐसा करते हैं हर बार आप मेरी पसंद का गीत सुनाती हैं हमारे दोस्तों को, तो क्यों ना आज आप ही की पसंद का गीत सुन लिया जाए।
0: जी बिल्कुल, ये भी आप ही की फरमाइश है तो इसे भी पूरा करना चाहिए।
2: बिल्कुल
0: तो आइए दोस्तों, बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और एंजॉय करते हैं इस खूबसूरत से गीत को, उसके बाद फिर से वापस आते हैं।

0: दोस्तों, ये बहुत ही प्यारा सा गीत रुचिका ने हम सबको सुनाया है और मजा आ गया है। तो चलिए रुचिका जी, अब बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और बात करते हैं छुट्टियों के ऊपर।
1: बिल्कुल। तो देखिए दोस्तों, बातचीत भी बहुत ही मनोरंजन से भरी है और मनोरंजन भी आप सभी तक पहुंचा रहे हैं, और छुट्टियों के बाद भी मनोरंजन से भरी ही
0: बिल्कुल
1: होती है।
0: बिल्कुल।
1: तो आइए बढ़ते हैं अपनी बातचीत में आगे, और अब रुख करते हैं रोमा जी की और, जो इनके पास जानकारियों का पिटारा है उसे आप सभी तक पहुंचाते हैं। तो रोमा जी, जैसे कि हमने बात की कि जो छुट्टियों से जुड़े कुछ कानूनी अधिकार हैं,
0: जी
1: है ना, तो ऐसे कौन कौन से कानूनी अधिकार हैं जो हमारे दोस्तों के लिए जानना जरूरी है? कौन कौन से अधिकारों के बारे में जो है वो आप आज के इस कार्यक्रम में हमारे दोस्तों को बताने वाले हैं?
0: वैसे तो रुचिका जी, बहुत सारे प्रावधान हैं कानून के तहत जो हमारी छुट्टियों को नियंत्रित करते हैं,
1: जी
0: कर्मचारियों के लिए या व्यवसायियों के लिए, या छोटे जो हमारे दुकानदार हैं, रेहड़ी फड़ी वाले हैं, सबके लिए एक दिन छुट्टी का जो है निश्चित किया गया है। तो इसमें बहुत सारे कानून हैं। पहला कानून जो है वो कारखाना अधिनियम 1948 के तहत है। उसके बाद दुकान एवं जो प्रतिष्ठान अधिनियम है, शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, इसके तहत जो है वो दुकानदारों के लिए या छोटे व्यवसायियों के लिए का छुट्टियों के जो है वो निर्धारण किया गया है। फिर इसके बाद महिलाओं के लिए विशेष छुट्टियाँ छुट्टियों का जो है प्रबंधन किया गया है, जिसमें से मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 जो है, उसमें महिला की प्रसूति के बाद या उसके दौरान अगर उसको कोई दिक्कत आती है उसकी आराम की व्यवस्था को देखते हुए छुट्टियों का जो है प्रावधान इस अधिनियम के तहत जो है वो किया गया है। फिर इसके साथ साथ केंद्रीय सिविल सेवा अवकाश नियम 1972 के तहत जो है वो कर्मचारियों की छुट्टियों को निर्धारण किया गया है। औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 जो है उसके तहत छुट्टियों का जो है अलग अलग छुट्टियों का जो प्रावधान किया गया है। तो ऐसे बहुत सारे जो प्रावधान है कानून के तहत जो अलग अलग तरीके से अलग अलग कैटेगरी के कर्मचारियों को या व्यवसायियों को, दुकानदारों को, छोटे कर्मचारियों को जो है वो छुट्टियां निर्धारित करते हैं।
1: जी बिल्कुल दोस्तों। तो रूमा जी ने बताया कि ऐसे कौन कौन से अधिनियम हैं जिसके अंडर जो है वो छुट्टी से संबंधित है, खास करके छुट्टी से संबंध रख, जिसके अंतर्गत जो है एक कार्यकर्ता अपने लिए आवाज़ उठा सकते
0: बिल्कुल।
1: हैं।
0: और रुचि के कई बार क्या होता है ना, जब हम काम कर रहे होते हैं तो बहुत सारी हमें ज़रूरतें पड़ती हैं। हम अपनी जो छुट्टियां हैं, जैसे ऑन लीव हैं हमारे पास, कैजुअल लीव्स हैं, और भी छुट्टियों की जो कैटेगरी है वो भी जो है वो डिस्क्राइब की गई है इसमें।
1: जी
0: जैसे कैजुअल लीव है जो हमारे लिए साल में 12 छुट्टियाँ कर्मचारियों के लिए होती हैं, वो अपनी सुविधा के अनुसार किसी अर्जेंसी के अकॉर्डिंग जब भी उनको ज़रूरत पड़ती है वो ले सकते हैं। इसमें मेडिकल लीव है, अगर कोई बीमार पड़ता है तो वो मेडिकल लीव ले सकता है। और इसके अलावा कंपनसेटरी लीव होती है। जैसे आप कई बार क्या होता है कि हमें विषम परिस्थितियों में क्या होता है, छुट्टी वाले दिन भी हमें कई बार काम करना पड़ता है, तो उसको भी जो गवर्नमेंट है वो कंपनसेट करती है सरकारी कर्मचारियों को, तो वहाँ पे कंपनसेटरी लीव का भी प्रावधान है। इसके अलावा कई बार होता है हमारी सारी छुट्टियाँ मान लो ख़त्म हो गई हैं, तब भी हमें छुट्टियों की ज़रूरत पड़ जाती है। कई बार
1: बिल्कुल
0: बीमारी की वजह से माता पिता बीमार हैं या बच्चों की पढ़ाई का इशू है, तो वहाँ पे जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी लीव का जो है वो प्रावधान है। तो यहाँ पर भी छुट्टी दी जाती है, लेकिन ये जो छुट्टी होती है यहाँ पे जो कर्मचारी है उसको सैलरी या वेतन जो है वो उसको नहीं दिया जाता है, लेकिन उसकी जो नौकरी है, उसका जो भी कार्यकाल है, उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो
1: जी
0: छुट्टियों के तो प्रावधान बहुत हैं, लेकिन कई बार आपने पहले भी कहा था कि कुछ ऐसे कर्मचारी हैं जिनको छुट्टियों के लिए परेशान किया जाता है, उनको छुट्टियां नहीं मिलती हैं, कई बार बहुत ज़रूरत होने के बावजूद भी छुट्टियां नहीं मिलती हैं। तो ऐसे में हमें पता होना चाहिए हमारी लिए सरकार ने छुट्टियों के लिए किस प्रकार के प्रावधान किए हैं, किस किस प्रकार की छुट्टियाँ जो हैं, किस किस मद के तहत हम छुट्टियाँ ले सकते हैं।
1: जी तो रूमा जी, सबसे पहले जो आपने अधिनियमों की बात की है, तो उनमें से हम सबसे पहले आते हैं कारखाना अधिनियम पे। तो कारखाना अधिनियम का क्या उद्देश्य है और इसके अंतर्गत जो है, इसकी श्रेणी के अंतर्गत कौन से कार्यकर्ता जो है वो आते?
0: रुचिका, आपने अभी बात पूछी है कि कारखाना अधिनियम के अंतर्गत क्या क्या प्रावधान है। तो मैंने पहले ही कहा कि छुट्टियों के बहुत सारे प्रकार हैं, जिसमें से कैजुअल लीव है, सिक लीव है, जब हम बीमार पड़ते हैं उसके अलावा अर्न लीव जो होती हैं वो भी होती हैं। अर्न लीव वो होती हैं जब हम साल में कुछ छुट्टियां होती हैं जो कर्मचारी के लिए सरकार द्वारा निर्धारित की गई होती हैं। अगर आपकी बाकी की छुट्टियां खत्म हो चुकी हैं तो आप अर्न लीव से छुट्टी ले सकते हैं और इसके लिए आपको जो वेतन है वो मिलता रहता है। पैटर्निटी लीव का भी प्रावधान आ गया है। मैटरनिटी लीव की हमने बात की। पैटर्निटी लीव में पुरुषों को जब जैसे माँ को बच्चा होने पे छुट्टी मिलती है वैसे ही पिता का भी अधिकार है उनको छुट्टी मिले, तो यहाँ पे पुरुषों के लिए 15 दिन की छुट्टी का प्रावधान है ताकि वो अपनी पत्नी और बच्चे की जो है वो देखभाल कर सके। और भारतीय जो कंपनियों में वेतन संबंधी जो अधिकांश शिकायतें होती हैं ना वो वेतन से होती हैं, क्योंकि ज़्यादातर अगर कोई इंप्लॉय छुट्टी कर लेता है तो उसकी जो है
1: सैलरी
0: सैलरी जो
1: जो
0: है
1: है
0: वो
1: वो कट हो
0: काट ली
1: जाती
0: जाती
1: है
0: है।
1: जी।
0: तो इसी कड़ी में जो है ये प्रावधान किए गए हैं कि अगर व्यक्ति के पास उसकी छुट्टियां पेंडिंग है तो वो उसकी सैलरी से जो है वो वेतन ना काटा जाए। इसमें से जो हमारे अर्न लीव हैं, अर्जित अवकाश जिसको हम बोलते हैं, तो ये केंद्रीय रूप से जो है वो अनिवार्य किए गए हैं, जबकि अन्य राज्यों में ये कई जगहों पे ये कानून जो है ये जो छुट्टियां हैं उनका प्रावधान नहीं होता है। और रुचिका जी रही बात कार्य अवधि की, तो हर एक कार्यालय का अपना जो है नीतियां होती हैं उनके अपने रूल्स होते हैं
1: जी
0: कि कर्मचारी का कार्यकाल कब से कब तक रहेगा, कितने समय तक वो काम करेगा। और छुट्टियों के प्रबंधन के बारे में जो है वो कारखाना अधिनियम के तहत जो भी इम्प्लॉयर है जो भी वहाँ का मालिक है वो छुट्टियों का पैटर्न जो है वो निर्धारित कर सकते हैं। अगर मान लो कारखाने में या किसी भी मिल में या कहीं पे भी जो काम का जो है वो शिफ्टों में किया जाता है तो उस हिसाब से भी कर्मचारियों की जो है छुट्टियाँ वो हैं निर्धारित की जाती हैं और समय सीमा जो है वो अलग अलग रहती है, लेकिन 9 घंटे से अधिक किसी भी इम्प्लॉय से काम नहीं लिया जाता है। और अगर कोई व्यक्ति जो है वो अधिक काम करता है तो उसका ओवर टाइम जो है वो उनको पे किया जाता है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं छुट्टियों की, तो भारतीय श्रम कानून के अनुरूप जो है अवकाश नीति बनाना और उसे सटीक तरीके से ऑडिट के लिए वेतनमान में बदलना और ऐसे काम हैं जिनमें विशेषज्ञों की मदद लेना जो है वो बहुत फायदेमंद होता है। मुख्य रूप से जो हमारे वैधानिक अवकाश हैं, अर्जित अवकाश हैं, कैजुअल लीव हैं, बीमारी के लिए या मातृत्व की जो छुट्टी है, पितृत्व के लिए जो छुट्टियां निर्धारित की गई हैं निजी क्षेत्र में कर्मचारियों के लिए, इनको भी अनिवार्य किया गया है। और ये छुट्टियां जो हैं कंपनी की आंतरिक नीति के माध्यम से जो हैं वो प्रदान की जाती हैं। और इसमें जो है जो अर्जित अवकाश होते हैं हमारे जो अर्न लीव हैं इसके लिए जो है वो कार्य दिवस पे के ऊपर निर्भर करता है, आपने कितने दिन तक कार्य किया। श्रमिक कैलेंडर वर्ष के अकॉर्डिंग जो है वो 240 दिन तक जो है एक श्रमिक को या एक कर्मचारी को जो है वो काम करना चाहिए और इसके लिए प्रत्येक 20 दिन के बाद एक अर्जित अवकाश मिलता है। मानो इस महीने मैंने 20 दिन तक काम कर लिया तो मेरी एक अर्न लीव जो है वो निर्धारित हो जाती है। और पहले जो था ये था रुचिका की 240 दिन जो था वो एक कर्मचारी जब काम कर लेता था तो उसे एक अर्जित अवकाश मिलता था, लेकिन अब जो है इसकी जो समय सीमा जो है वो अब कम कर दी गई है। अब 180 दिन अगर कोई व्यक्ति काम कर लेता है तो उसको जो है वो एक अर्जित अवकाश मिलता है। इसी प्रकार मैटरनिटी लीव पहले कुछ संस्थानों में निजी कंपनियों में जो था वो महिलाओं को 60 दिन से अधिक या 45 दिन से अधिक जो है वो मैटरनिटी लीव नहीं मिलती थी, लेकिन अब जो है समूचे भारतवर्ष में मैटरनिटी एक्ट जो अमेंडेड एक्ट अभी लागू हुआ है उसके तहत 180 दिन की जो छुट्टी है हर एक कर्मचारी को है। हमने पिछली बार भी बात करी थी जो हमारी घरेलू सेविकाएं होती हैं उनके लिए भी छुट्टी का प्रावधान है। अगर कोई
1: होना चाहिए
0: घरेलू
1: बिल्कुल
0: सेविका जो है वो मैटरनिटी लीव पे जाती है तो वो भी जो है वो उसको भी 180 दिन का जो है अवकाश मिलता है। और उसमें जो व्यक्ति उस महिला कर्मचारी से चाहे वो घर का काम करने वाली ही कर्मचारी क्यों ना हो उसको पूरा वेतन जो है वो उस अवधि के दौरान का दिया
1: दिया
0: जाता है।
1: जाता है।
0: लेकिन हमारे जो लोकल लोग हैं ज़्यादातर लोगों को ये कानून पता नहीं है, तो कई बार जो है हम लोग ऐसे छोटे कर्मचारियों को डराते भी हैं, हम नौकरी से निकाल देंगे किसी और को रख लेंगे, और और ज़्यादातर मैंने देखा है, हमने पहले भी बात किया था, जो हमारी घरेलू सहायिकाएं सहायिका सहायिकाएं होती हैं उनको हम लोग जो हैं वो छुट्टी देते ही नहीं हैं या देना ही नहीं चाहते हैं।
1: बिल्कुल जी। तो दोस्तों, रूमा जी ने बहुत अच्छे से बताया है कि कारखाना अधिनियम में किस तरह से जो है ये अधिकार रहता है, या किस तरह से इसका प्रोसेस रहता है। तो इसके बाद आते हैं दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम की ओर। तो इसके अंतर्गत किस तरह से जो है कर्मचारियों के लिए प्रावधान रहते हैं, छुट्टी से रिलेटेड या अपनी इस सर्कल को बनाने से रिलेटेड।
0: रुचिका जी, वैसे तो आपने देखा होगा कि हमारे जो बाजार हैं या जो व्यावसायिक प्रतिष्ठान है ज़्यादातर बंद नहीं होते हैं,
1: जी,
0: लेकिन अलग अलग बाजार का जो है वो अलग अलग रवैया
1: रूल्स
0: होता
1: रहते
0: है।
1: हैं।
0: उन अपना उनका व्यापार मंडल होते हैं, वो अपने हिसाब से छुट्टी का निर्धारण करते हैं। और कई जगह पे जो है बाजार जो हैं वो संडे को बंद होते हैं, कई जगह किसी ने बुधवार अपनी सुविधा के अनुसार जो है वो छुट्टी का निर्धारण किया है, ताकि दुकानदारों को, छोटे कर्मचारियों को, रेहड़ी फड़ी वालों को भी छुट्टी मिल सके। लेकिन ज़्यादातर हमने देखा है कि इनकी छुट्टी संडे की बजाय किसी और दिन होती है। और यहाँ पे जो हैं दुकानदार हैं, अगर उनकी हम बात करें तो ये अपनी मर्जी से एक दिन छुट्टी करते हैं। जो भी हमारे त्यौहार हैं, सामाजिक त्यौहार हैं, घर में शादी फंक्शन कुछ भी है, तो ये अपने हिसाब से छुट्टी करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। इनको बाध्य नहीं कर सकते हैं कि छुट्टी वाले दिन भी ये बाजार खोलें।
1: जी
0: कई बार आपने देखा होगा कोई फंक्शन आते हैं, जैसे अभी कुछ समय बाद दीपावली, करवा चौथ, दशहरा, कई प्रकार के फंक्शंस आते हैं, तो ऐसे में ये अपनी इच्छा से जो हैं वो अपने प्रतिष्ठान को पूरा हफ्ता खुला रखते हैं और कर्मचारियों को जो हैं वो अपने काम के लिए बुलाते हैं। लेकिन जो कर्मचारी हैं जो वहाँ काम कर रहे हैं, त्यौहार तो उनके लिए
1: उनके
0: भी
1: लिए
0: आता है, तो
1: भी
0: एक विशेष जो दुकान का जो मालिक है या प्रतिष्ठान का जो मालिक है वो उसको ये ध्यान रखना पड़ता है कि उस कर्मचारी का त्यौहार या उसके लिए जो फंक्शन आ रहे हैं उसको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए, तो वो इस हिसाब से काम का संचालन करते हैं और व्यापार मंडल के साथ मिल के सुनिश्चित करते हैं कि प्रत्येक एम्प्लॉई, जो भी कर्मचारी या जो भी वहाँ पे मजदूर काम कर रहा है, वो अपना त्यौहार खुशी से
1: खुशी से
0: अपने
1: मना।
0: परिवार के साथ मना सके।
1: जी
0: और इसमें एक और भी प्रोविज़न रहता है कि जैसे हमने बात करी कि छुट्टी जब मिलती है तो उसको छुट्टी का भी वेतन मिलता है, यहाँ पे जब हम ओवर टाइम करता है कोई भी एम्प्लॉई, दुकानदार का, मजदूर या जो भी है, तो इनको विशेष भत्ते जो हैं इस दौरान दिए जाते हैं मालिक की ओर से या विशेष जो भी व्यावसायिक प्रतिष्ठान है उनकी ओर से।
1: जी दोस्तों, तो खास करके हम जो ये दुकान एवं प्रतिष्ठान की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें ज़्यादातर जो है वो अपने ही हाथों में चीज़ें रहती हैं, है ना।
0: बिल्कुल
1: अपना एक सेल्फ बिजनेस बोल सकते हैं,
0: बिल्कुल
1: और वो जो है लोगों को रोज़गार देते हैं, जो लोग मतलब कि
0: बिल्कुल
1: ज़रूरतमंद होते हैं। लेकिन कई बार ये बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कुछ लोग जो है दोस्तों अधिकारों से हट के जो है लोगों का शोषण करते हैं, जो काम के बदले में उनकी मजबूरी का फायदा उठाते
0: बिल्कुल
1: हैं, और उन्हें ना तो कोई छुट्टी दी जाती है ना उन्हें आराम करने के लिए समय दिया जाता है। तो ये इसी बात के लिए हम आप सभी के साथ साझा कर रहे हैं कि अगर किसी का शोषण किया भी जाता है, किसी के साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है, क्योंकि हर कोई इंसान है, चाहे वो किसी के अंडर काम कर रहे हैं या कोई किसी के मतलब उनके अंडर काम कर रहे हैं, हर किसी के लिए रूल्स जो है वो एक समान होते हैं। तो थोड़ा सा हमें इंसानियत होने के नाते जो है सभी की सिचुएशन को, सभी की ज़िंदगी को जो है वो बैलेंस करके चलना बेहद ज़रूरी है।
0: बिल्कुल। और देखिए, ये जो छोटे मजदूर तबका है या छोटे कर्मचारी जो दुकानों में काम कर रहे हैं, ये भी बीमार पड़ते हैं,
1: बिल्कुल
0: इनके घर में भी कोई सदस्य बीमार पड़ सकता है, तो ऐसे में ये अगर छुट्टी लेते हैं, ज़्यादातर मुझे नहीं लगता कि किसी भी कर्मचारी ने रिटर्न में अपने मालिक से छुट्टी ली होगी। और ज़्यादातर प्रतिष्ठानों के जो मालिक होते हैं या एम्प्लॉयर हैं वो अपने कर्मचारियों को ओरली बोलने पर भी छुट्टी दे देते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि इन लोगों की जो वेतन है या जो भी उनको पगार दी जाती है, मजदूरी दी जाती है, वो नहीं काटते हैं। लेकिन हाँ, कुछ एक मामलों में ऐसा हो जाता है कि कर्मचारी बहुत ही समय तक बिना बताए जब ऐसे
1: ज्यादा
0: छुट्टी
1: बिल्कुल
0: करते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है कि वो उस कर्मचारी को निकाल देते हैं। लेकिन अगर ये हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि अगर मेरे को कोई प्रॉब्लम है

0: मैं अपने नियोक्ता को पहले से ही इन्फॉर्म करूं कि मैं बीमार हूं या फिर मेरे घर में कोई प्रॉब्लम चल रही है, मुझे इतने समय की छुट्टी चाहिए, तो वो लिखित में वो वहां दे सकते हैं और नियोक्ता ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि उसको उस काम से ना निकाला जाए, उसको बेरोजगार ना किया जाए। लेकिन ज़्यादातर छोटे प्रतिष्ठानों में ऐसा होता है कि इम्प्लॉई अगर 2 हफ्ते या 3 हफ्ते काम पे नहीं आता है तो उसकी जगह नया बंदा रख लिया जाता है, और जब वो आता है तो वो बिल्कुल एक तो बेरोजगार हो जाता है, दूसरा अपनी बीमारी या किसी भी परिवार के सदस्य की बीमारी या किसी और परेशानी के कारण उसकी समस्याएं और भी बढ़ जाती हैं। तो यहाँ पे व्यापार मंडल को ये सुनिश्चित करना होता है कि किसी भी कर्मचारी को अगर उसके पास कोई सॉलिड रीज़न है, उसने अपने एम्प्लॉई को बताया है, तो उसको काम से ना निकाला जाए।
1: बिल्कुल दोस्तों, तो ये बहुत ही खास बातें आप सभी सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरे हौसलों की उड़ान से, अपने रेडियो दोस्त रुचिका और रूमा जी के साथ। तो आइए इस बातचीत को थोड़ा सा ब्रेक देते हैं और आप सभी को लेकर चलते हैं एक प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक की, और उसके बाद फिर से आप सभी के साथ जुड़ते हैं 91.2 MHz पर रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

0: दोस्तों, इस प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी जुड़ चुके हैं हमारी इस खास बातचीत के साथ। और हम बात कर रहे हैं जो एक साप्ताहिक को छुट्टी का अधिकार जो हर एक कार्यकर्ता के लिए बेहद ज़रूरी है, तो उससे जुड़े कुछ अधिकारों की जानकारी जो है वो हम आप सभी तक पहुँचा रहे हैं। क्योंकि अक्सर हम सिर्फ काम की तरफ ध्यान देते हैं और हमारे साथ कुछ अन्याय होता भी है तो हम थोड़ी सी नोक झोंक करके उसमें शांत हो जाते हैं, और वहाँ पे हमें अगर निकाल भी दिया जाता है तो हम थोड़ी देर गुस्सा भी कर लेते हैं, थोड़ा सा नाराज़गी भी जता लेते हैं, लड़ भी लेते हैं, और फिर हम सोचते हैं कि शायद यही सही है ना, तो अपने
1: मन मार के हम बैठ जाते हैं, वही चीज़ कोई भी एक्शन नहीं लेते।
0: बिल्कुल, तो एक्शन लेना हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है ताकि जिसके अंडर हम काम कर रहे हैं अगर वो हमारे साथ गलत कर रहे हैं तो कल को वो किसी और के साथ गलत ना, किसी और का शोषण ना करे, किसी और की मजबूरी का फायदा ना हो, किसी और के साथ अन्याय ना हो, इसलिए आवाज़ उठाना बेहद जरूरी है।
1: और कई बार रुचिका हमने देखा है कि मैंने महीना भर किसी के साथ काम किया, किसी ठेकेदार के साथ काम किया, किसी दुकान पे काम किया, और किसी वजह से नियोक्ता के साथ झगड़ा हो गया या कोई भी रीज़न रहा हो, हमें काम से निकाल दिया। तो कई बार कर्मचारी हमारे पास, जैसे कंज्यूमर फॉर्म है तो कई प्रकार के केसेस आते हैं जहाँ पे कर्मचारियों को उनके किए गए काम का जो है वो मुआवजा या वेतन या जो भी पगार है उनकी वो नहीं दी जाती है
0: जी।
1: तो इस तरह के कई प्रकार की अनियमितताएं जो हैं वो हमारे काम के दौरान पाई जाती हैं, देखा जाता है। तो ऐसे में जो कर्मचारी है उसको अपने हित के लिए, कम से कम जो काम किया है उसके लिए भी आवाज़ उठानी चाहिए तो उसने मेहनत किया उसका फल उसको मिले।
0: बिल्कुल, तो रूमा जी, हम अभी आपने बात की थी कुछ समय पहले कि जो हमारी एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव जो होती है, जब हमारे हमारे लिए एक शेड्यूल होता है कि पूरे साल में हम इतनी छुट्टियां कर सकते हैं, इतनी जो कैजुअल लीव्स हैं या सिक लीव्स हैं, मतलब एक अलग पैटर्न होता है, ये आप सभी जानते हैं बहुत अच्छे से। तो उसके अकॉर्डिंग जब हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव की तरफ जाते हैं, जब सारी छुट्टियाँ ख़त्म हो जाती हैं, तो उसका थोड़ा सा हमने बात की थी, लेकिन थोड़ा सा और उसको हम जानते हैं, गौर फरमाते हैं उस पर किस तरह से ये चीज़ें हमारे लिए फ़ायदेमंद रहती है।
1: देखो रुचिका, केंद्रीय सिविल सेवा अवकाश नियम 1972 के तहत जो है EOL यानी एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव की जो है वो व्यवस्था की गई है। कई बार क्या होता है रुचिका, हमें कई प्रकार की समस्याएं आ जाती हैं। मेडिकल लीव, हम मानो मैं बीमार हो गई हूँ, मेरे पास कुछ लिमिटेड मेडिकल लीव हैं, मैंने वो भी ले ली, मेरे पास अर्जित अवकाश थे वो भी मैंने ले लिए, उसके बाद जो हमारी कैजुअल लीव हैं वो भी मैंने ख़त्म कर दी हैं, लेकिन फिर भी मानो मैं बीमार हूँ या मेरा बच्चा पढ़ाई कर रहा है और मुझे उसकी हेल्प करनी है, या फिर मेरा बिल्कुल बच्चा छोटा है मेरे घर में, या कोई बुज़ुर्ग है जिसकी केयर के लिए मेरे पास कोई भी नहीं है और मुझे उसकी केयर करनी है, मुझे उसकी ट्रीटमेंट के लिए या किसी भी चीज़ के लिए छुट्टी की ज़रूरत पड़ती है।

0: एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव अपने कार्यालय में जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। ये जो छुट्टी होती है इसके लिए वेतन नहीं मिलता है, लेकिन आपके पास छुट्टी का जो अधिकार रहता है, क्योंकि समस्याएं सभी की हैं,
1: सभी की होती।
0: और देखिए, जब मैं काम पे आ रही हूँ, मुझे पता है मेरे घर में कोई समस्या चल रही है, मेरे घर में कोई बुजुर्ग है, बीमार है, या मेरा छोटा बच्चा है जिसको केयर की ज़रूरत है और घर में कोई देखभाल वाला नहीं है, या फिर मेरे बच्चा मानो अभी बड़ा हो गया है, उसके एग्ज़ाम है, उसकी हेल्प के लिए मुझे उसके साथ होना ज़रूरी है, लेकिन मेरे पास कोई भी छुट्टी नहीं बची है, तो मैं अपने नियोक्ता को या कार्यालय को जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव के लिए जो है मैं अप्लाई कर सकती हूँ। इस जो छुट्टी में जो मुख्य बातें ये होती हैं कि इसमें एक तो आपको वेतन नहीं मिलता है, और इसमें अवधि की सीमा जो है इस बात पर निर्भर होता है कि आपकी नौकरी स्थायी है या अस्थायी है। ये जो लीव है ये आपको मेडिकल सर्टिफिकेट के बेस पे मिलती है, या फिर बिना मेडिकल सर्टिफिकेट के भी मिल सकती है, मगर अगर आपने बच्चे के लिए ही छुट्टी लेनी है तो तब आपको मेडिकल देने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने कार्यालय में या जो भी आपका विभाग है वहाँ पर आप छुट्टी के लिए एप्लीकेशन लिख सकते हैं, और ये छुट्टी आपको कम से कम 5 साल तक मिल जाती है। 5 साल तक आप ये छुट्टी ले सकते हैं। जैसे अभी आप पढ़ रही हैं, आपको पढ़ाई करनी है नौकरी के साथ साथ, तो आप स्टडी लीव भी इसके तहत आप ले सकते हैं, और यहाँ पे आपको वेतन नहीं मिलेगा, ये शर्त रहेगी। लेकिन अगर मानो आपने 2 साल की या 5 साल की छुट्टी ले ली, तो 5 साल के बाद आप आराम से आके ये जो कंटिन्यू कर सकते हैं, और जब से आप अपनी ज्वाइनिंग देंगे तभी से आपको वेतन मिलेगा। इसके अलावा कुछ विशेष बीमारियां हैं, जैसे कुष्ठ रोग है, कैंसर है, या फिर मानसिक बीमारी में किसी भी प्रकार का जो इलाज चल रहा है, या आपके परिवार के किसी सदस्यों की इस तरह की समस्या है, आप उसकी केयर करने वाले हैं, तो आपको तब भी ये जो है वो छुट्टी मिल सकती है।
1: जी, तो बिल्कुल दोस्तों, इस तरह से जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव जो है हम ले सकते हैं, लेकिन हाँ, इसमें शर्त ये है कि हमें वेतन नहीं मिलेगा, क्योंकि अक्सर कई बार ऐसा हम वो बोलते हैं ना, जब हमें जानकारी नहीं होती तो हम वहाँ भी अपने राइट्स के लिए लड़ने खड़े हो जाते हैं कि नहीं, हमारी तो ये मजबूरी थी, अब बीमार होना कोई हमारे हाथों में तो नहीं था, तो हमें वेतन तो मिलना चाहिए। लेकिन रूल्स के अकॉर्डिंग हमें भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझना बेहद ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है कि सामने वाला पर्सन ही गलत है, कई बार हमसे भी गलतियाँ हो जाती हैं।
0: बिल्कुल, और रुचिका, कई बार क्या होता है कि हम बीमार पड़ जाते हैं, अचानक से सर्जरी हो गई या कुछ हो गया, और मेरे पास मेडिकल और CL या बाकी छुट्टियाँ नहीं बची हैं, तो ऐसे में मैं बिना इंटीमेशन के अगर छुट्टी कर लेती हूँ, और ठीक होने के बाद जब मैं वहाँ पे जाती हूँ कार्यालय पे, तो यहाँ पे जो हमारा नियोक्ता है या जो हमारा जो भी बॉस है, वो हमारी उस छुट्टी को जो हमने बिना इंटीमेशन के दी है, एक रीज़न दे के, मेडिकल सर्टिफिकेट या फिर जो भी कारण रहा हो, वो कारण, लॉजिकल कारण बताकर हमारा जो नियोक्ता है या जो भी सरकार है, हमारी उस छुट्टी को जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आप, कई बार ऐसा होता है, सुनने में आता है, न्यूज़पेपर्स में भी इश्तिहार सरकार छाप देती है कि फलां कर्मचारी इतने दिन से कार्यालय से बिना बताए जो है वो नदारद है, वो नहीं आ रहा है, तो अगर उसने सही इतने समय में आके हमें रिपोर्ट नहीं किया तो उसको कार्यालय से निकाल दिया जाएगा। लेकिन कई बार क्या होता है कि ऐसी विषम परिस्थितियाँ हो सकती हैं कि वो नोटिस भी उस कर्मचारी तक नहीं पहुँचा, क्योंकि हर एक व्यक्ति जो है रोज़ न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता है, या उस तक लेटर हो सकता है कार्यालय ने उसको घर पे लेटर भेजा हो, लेकिन किन्हीं विषम परिस्थितियों में उसको ना मिला हो, तो जब भी वो ठीक होता है या विद इन टाइम वो अगर वहाँ आ जाता है, तो उसकी जो छुट्टी है जो उसने बिना नोटिस दिए कर ली है, उसको जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव में चेंज किया जा सकता है, और उसको नौकरी से नहीं निकाला जाएगा। लेकिन शर्त यहाँ पे भी वही रहेगी कि उसको वेतन नहीं मिलेगा, और एक सर्टिफिकेट जो है वहाँ पे अपने जो भी कार्यालय है वहाँ पे उसको सर्टिफिकेट जो है वो जमा करवाना पड़ेगा।
1: जी दोस्तों, तो आप सभी ने जाना कि किस तरह से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव जो है हमारे लिए फ़ायदेमंद रहती है, या किस तरह से हम इस प्रोसेस को जो है फॉलो कर सकते हैं, लेकिन कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंडर रहकर। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझकर। तो बिल्कुल इसी बातचीत पे हम फिर से वापस आएंगे, लेकिन एक छोटे से प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद।

0: दोस्तों, इस प्यारे से गीत के बाद हम फिर से जुड़ चुके हैं आपके साथ लेकर कार्यक्रम मेरे हौसलों की उड़ान। और इसी तरह उड़ान भरते रहिए हौसलों के साथ और जानते रहिए आपके हित में सरकार द्वारा बनाए गए विभिन्न कानूनों के बारे में।
1: जी दोस्तों, तो बहुत ही खास बातचीत आज के कार्यक्रम में आप सभी एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि अपने अधिकार जानना बहुत जरूरी है। लेकिन कहने के लिए छोटी सी बात है कि हमारे अधिकार क्या क्या हैं, लेकिन जब से रूमा जी हमारे साथ जुड़े हैं तब से हम ये देख रहे हैं कि पता नहीं कितने ही अधिकार हैं जो हमारे लिए बनाए गए हैं, जो हमारे लिए हैं, लेकिन हम अनजान हैं उन अधिकारों से, अपने ही बारे में हम जानते नहीं हैं।
0: बिल्कुल सही कहा रुचिका आपने, क्योंकि हम काम के बारे में तो जानते हैं लेकिन हमारे पास अधिकार भी हैं, और सरकार ने उन अधिकारों को हमारे लिए सुनिश्चित किया है, हमारी सेफ्टी के लिए बनाया है, इनके बारे में हमें बिल्कुल भी जानकारी नहीं होती।
1: बिल्कुल। तो रूमा जी, हम जैसे अभी आप बात कर रहे हैं, मतलब छुट्टियों की
0: छुट्टियों
1: बात
0: की
1: कर रहे हैं,
0: जी
1: तो अक्सर कई बार क्या होता है कि जैसे मुझे ज़रूरत है 2 महीनों की छुट्टियों की, कुछ एमरजेंसी है, तो मैंने उस स्पेस में छुट्टियों के लिए लीव जो है लिखित में, मतलब रिटर्न में मैंने ले ली और मुझे अप्रूव भी हो गई है, ठीक
0: बिल्कुल
1: है। तो उसके बीच में अक्सर कई बार ऐसा होता है कुछ इमरजेंसी आ जाती है या मेरे काम से रिलेटेड कोई काम हो, तो वहाँ जो है वो ज़रूरत, मतलब कि मेरी ज़रूरत है ऑफिस में या कहीं भी, हमारे जो भी वर्कर्स हैं,
0: जी
1: तो हमारा एक वो रहता है कि हम तो छुट्टी पे हैं और हमारा जाना शायद ज़रूरी नहीं है, भले ही हमारी ज़रूरत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन हमारे अंदर से ये बात निकल रही है। तो वहाँ
0: हम
1: किस
0: तो छुट्टी
1: तरह
0: पे हैं, हमें
1: से
0: जाने की जरूरत नहीं है।
1: जी, तो वहाँ किस तरह से प्रोसेस रहता है?
0: देखिए रुचिका जी, ये आपने बिल्कुल सही कहा कि मैंने तो छुट्टी ले रखी है, मैं क्यों जाऊं,
1: जी
0: लेकिन मेरे हिस्से का काम कौन करेगा। तो विषम परिस्थितियों में अगर बहुत ही अर्जेंसी है और सरकार को आपकी ज़रूरत है, आपको आपके आके वो काम करना है, तो सरकार किसी भी समय आपका एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव, कैजुअल लीव या फिर जो आपकी अर्न लीव है उसको कैंसिल कर
1: कैंसिल कर
0: सकती
1: सकते
0: है
1: हैं।
0: और आपको वापस काम पे बुला सकती है, और इसके लिए आप उसको मना नहीं कर सकते हैं। हाँ, मेडिकल लीव में थोड़ी सी एक्सेप्शन है, अगर आपका सर्जरी हुई है, आप किसी बहुत ही गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, मानो कैंसर या टीवी या कुष्ठ रोग या कोई ऐसी बीमारी जिसके तहत आपका चलना फिरना मुश्किल हो गया है, उस परिस्थिति में सरकार आपकी छुट्टी कैंसिल नहीं कर सकती है। लेकिन मानो आपने छुट्टी ली है बच्चे की पढ़ाई के लिए, घर में बुजुर्गों की देखभाल के लिए, बच्चे के पालन पोषण के लिए, तो ऐसी एक स्थिति में अगर सरकार के पास कुछ ऐसा काम आ गया है जो सिर्फ आप ही कर सकते हैं, मानो कई बार हमने विभागों में देखा है ऑडिट वाले आ जाते हैं
1: जी, डॉक्यूमेंटेशन अब
0: और
1: जो
0: सारा कुछ
1: इंसान
0: है,
1: कर रहा होता है उसे ज़्यादा अच्छे से नॉलेज होता है।
0: बिल्कुल, तो उस दौरान जो है वो आपकी ज़रूरत रहती है, तो सरकार आपकी छुट्टी आपको इंटीमेट करके बुला सकती है, कैंसिल कर सकती है,
1: जी
0: और उसके लिए आप मना नहीं कर सकते हैं कि मैंने तो छुट्टी ली थी, प्री अप्रूव थी और अब मुझे काम पे नहीं जाना है। तो
1: जी
0: ऐसा नहीं है, हर परिस्थिति का जो है वो समाधान जो है गवर्नमेंट को रखना पड़ता है, और ये सरकारी कर्मचारियों के मामले में ज़्यादातर होता है कि कई बार उनकी छुट्टी जो है वो कैंसिल हो जाती है। कई बार ऐसे भी देखने में आता है कि मैंने मेरी बहुत सारी अर्न लीव पड़ी हैं और मैंने परिवार के साथ घूमने का प्रोग्राम बनाया है और मैं यहाँ से फॉरेन कंट्री निकल गई हूँ, लेकिन यहाँ पे सरकार को मेरी ज़रूरत पड़ गई है, तो मुझे बीच
1: जी
0: में वो ट्रिप छोड़ के
1: छोड़ के
0: वापस
1: आना
0: आना
1: पड़ेगा।
0: पड़ेगा।
1: जी
0: तो ऐसा है कि सबके साथ न्याय होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि मुझे छुट्टियाँ मिल रही हैं तो मैं इस्तेमाल करूँ अपने काम अपने छोड़ के आ जाऊँ। छुट्टी से पहले एक नियम ये भी रहता है कि आप छुट्टी पे जा रहे हैं तो जो भी आपका पेंडिंग वर्क है, वो आपका जो भी अधिकारी है, सीनियर
1: हैंडओवर
0: ऑफिसर है,
1: करके।
0: वो आपको बता देते हैं कि अपना ये काम जो है वो आप करके जाएं।
1: जी
0: और एक और विशेष नियम रहता है, मानो आप मेडिकल लीव पे चले गए हैं या आपने बच्चे को पढ़ाने के लिए लीव ले ली है, इस दौरान क्या होता है कि कुछ लोग क्या होते हैं, मेरा बच्चा बाहर पढ़ रहा है, मैं वहाँ चली गई हूँ और वहाँ पे मैं कोई पार्ट टाइम काम कर रही हूँ, तो छुट्टी का एक सरकारी कार्यालय कार्यकाल के
1: नियम भी
0: दौरान ये नियम है, आपने जिस उद्देश्य से छुट्टी ले ली है उसी उद्देश्य पे उसका खर्च होना चाहिए। अगर आप कहीं और काम करते हैं तो आपको भुगतान करना पड़ सकता है, तो ये भी
1: जी
0: ध्यान रखें कि अगर आपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव ली है या कोई भी छुट्टी लेके आप दूसरी जगह भी बेनिफिट ले रहे हैं, कोई और काम कर रहे हैं,
1: बिल्कुल
0: तो उसका भी भुगतान हमें करना पड़ सकता है। तो छुट्टी का ये एक विशेष नियम है कि आप छुट्टी जिस पर्पज़ के लिए ली है उसी पर्पज़ के लिए उसका इस्तेमाल करें।
1: बिल्कुल दोस्तों, हम अक्सर कहते हैं ना लालच बहुत बुरी बला है, तो कई बार हम यही सोचते कि हमने फुल ऑन टाइम जहाँ हम काम कर रहे हैं तो उसके लिए समय दिया, अब कुछ पेंडिंग हमारी जो छुट्टियाँ बच गई हैं तो क्यों ना उसका यूज़ कहीं पार्ट टाइम जॉब के लिए किया जाए, या किसी तरह से उसका जो है वो हम फ़ायदा ले सकें। और ऑफिस में हमने कुछ और बता दिया और बाहर हम कुछ और
0: जी
1: पर्पज से निकल गए, तो उसका भुगतान जो है फिर हमें करना पड़ सकता है। तो वहाँ हम अपने राइट्स को बीच में नहीं ला सकते, क्योंकि राइट्स भी वहाँ कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि
0: बिल्कुल
1: राइट्स के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आती हैं।
0: बिल्कुल, एक तरह से हम अपने नियोक्ता को धोखा दे रहे हैं
1: जी
0: छुट्टियों का बहाना करके, तो वो नहीं
1: बिल्कुल
0: होना चाहिए।
1: जी, तो बहुत ही खास ये बातचीत आप सभी ने एंजॉय की है दोस्तों। और जाते जाते एक और खास बात पे मैं नजर डालना चाहूंगी रोमा जी, कि चलो हमने अभी जो बात की कि जो गवर्नमेंट फील्ड में सरकार के अंडर है ना, लेकिन अगर हम आए, क्योंकि हम एक लोकल एरिया में ग्राउंड लेवल पे हम बात करें,
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: तो जैसे कि किसी शॉप में हम काम कर रहे हैं, किसी के घर में हम काम कर रहे हैं, तो होता है ना कि जैसे हमारे साथ अगर अन्याय हुआ भी है, हमारे साथ कुछ गलत हो भी रहा है, शोषण भी हो रहा है, या हमारी हमने बताया है छुट्टी लेने के लिए, उसके बाद भी हमें धोखे में रखकर कई बार जो है वो कुछ किसी और को उस अंतराल में रख लिया जाता है और हमें
0: जी जी
1: निकाल दिया जाता है, तो हम वहाँ आवाज़ नहीं उठा पाते, क्योंकि
0: बिल्कुल
1: हमें ऐसा लगता है कि इनका अपना घर है या अपनी दुकान है, तो हम इनके लिए कितना ही लड़ पाएंगे, शायद हमारी सुनी नहीं जाएगी। तो यहाँ आप क्या कहना
0: यहाँ
1: चाहेंगे?
0: भी सुनी जाती है। अगर मानो आप किसी के घर में काम कर रहे हैं या
1: जी
0: मजदूरी का काम कर रहे हैं, और आपको छुट्टी की वजह से आपके नियोक्ता ने काम से निकाल दिया है, आपका वेतन भी नहीं दिया है, तो मैंने
1: जी
0: पहले ही कहा कि वेतन के लिए तो हम पगार के लिए जो है लेबर लॉ के तहत लेबर कोर्ट में अपनी दरख्वास्त जो है वो दे सकते हैं। इसके साथ साथ श्रम कार्यालय में जाकर हम अपनी जो है कंप्लेंट नियोक्ता के खिलाफ दे सकते हैं, एक सादे कागज़ पे लिख कर जो भी आपके साथ हुआ है, तारीख के साथ और साक्ष्य के साथ अगर आप प्रेजेंट करें उसको, तो फिर आपको जो है वो पूरा न्याय मिलता है। इसके साथ साथ जो कई बार क्या होता है कि हमारे कुछ सर्विस रूल्स होते हैं, और अगर सर्विस रूल्स के तहत हमें सही से जो है वो सेवाएं नहीं मिलती हैं किसी से, तो जो नियोक्ता होता है वो भी जो है वो कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकता है। मानो मैंने आपकी सेवाएं ली हैं, लेकिन आपने जो मैंने आपको काम दिया आपने वो सही ढंग
1: नहीं
0: से
1: किया।
0: नहीं किया, तो कंज्यूमर कोर्ट के तहत हम दरवाज़ा खटखटा सकते हैं, अपनी समस्या जो है वो वहाँ पे रख सकते हैं।
1: जी
0: और स्थानीय निकायों में अगर छोटे कर्मचारियों की अगर हम बात करें, तो व्यापार मंडल के पास आप अपना जो है लिखित में जो है कंप्लेंट जो कर सकते हैं।
1: बिल्कुल, तो दोस्तों अक्सर हमारे साथ ऐसा होता है कि हम छोटी बात समझकर ऐसे छोड़ देते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि
0: बिल्कुल
1: हमने 15 दिन काम किया और 15 दिन काम नहीं किया,
0: बिल्कुल
1: तो हम वहाँ फिर एक बार अगर मना कर दिया कि नहीं आपने पूरा मंथ काम नहीं किया तो आपको वेतन नहीं दिया जाएगा, तो वो 15 दिन भी उनके फिर ब्लैंक में चले जाते हैं।
0: ऐसा नहीं है, अगर आपने एक दिन भी काम किया है तो आप एक को एक दिन का भी वेतन, पगार या जो भी मजदूरी निर्धारित की है नियोक्ता ने, वो आपको दी जाएगी।
1: जी
0: और अगर नियोक्ता ऐसा करता है तो आप इसके लिए अपनी कंप्लेंट जो है वो सक्षम कार्यालय में, जो भी मतलब आपका एलिजिबल जो है वहाँ पे आप दे सकते हैं। आप अगर पंचायत में काम किया है, नरेगा के तहत काम किया है, तब भी आप प्रधान को या पंचायत सेक्रेटरी को ये कंप्लेंट दे सकते हैं
1: जी
0: कि मुझे इस कार्य के लिए वेतन का भुगतान या मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया है।
1: बिल्कुल दोस्तों, अक्सर हम देखते हैं कि कंपनीज की बात करें या बड़े बड़े मतलब जगह की बात करें, तो वहाँ तो खैर रिटर्न में लिया जाता है पहले ही, जब आप ज्वाइन करते हैं तभी आपसे रिटर्न में लिया जाता है कि इतना पीरियड रहेगा, अगर आप यहाँ से लीव भी करना चाहेंगे तो उसके लिए आपको इतना टाइम पीरियड कंप्लीट करना ही पड़ेगा, है ना। लेकिन छोटी छोटी अगर हम बात करें, गांव लेवल पे बात करें, तो जो मजदूर वर्ग होते हैं वहाँ ऐसी चीज़ें नहीं देखी जाती
0: नहीं देखी
1: अक्सर।
0: जाती, लेकिन अभी आपने कहा तो निजी कंपनियों की अगर मैं बात करूं, और वहाँ पे अगर मेरी सेवाएं हायर की हैं और वहाँ पे पहले एक कॉन्ट्रैक्ट जो है वो
1: जी
0: साइन कर लिया जाता है, वहाँ पे एक जो वर्कर है उसके लिए भी कुछ रूल्स होते हैं। जो वर्कर हैं वो बिना प्रीवियस नोटिस
1: बिल्कुल
0: के नौकरी नहीं छोड़ सकता
1: जी
0: है। आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली, आपने दूसरी कंपनी ज्वाइन कर ली और इस कंपनी को बिना बताए आपने छोड़ दिया तो ये भी क्राइम की श्रेणी में आता है।
1: बिल्कुल
0: और यहाँ पर जो क्या होता है कि अगर आप बिना नोटिस के, प्रियर नोटिस के, अपनी पुरानी नौकरी छोड़ के नई नौकरी ज्वाइन करते हैं तो कई बार कंपनी के रूल्स के मुताबिक आपको 3 महीने का जो वेतन और साथ में उसके ऊपर इंटरेस्ट के साथ जो है वो आपको अब उस कंपनी को देना पड़ता है जिसने आपको पहले काम पे रखा था। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण नियम है कि किसी को भी नुकसान नहीं होना चाहिए। अगर किसी कंपनी ने आपकी सेवाएं हायर की हैं तो आपके ऊपर विश्वास किया है और आप बीच रास्ते में बिना बताए वो काम छोड़ देते हैं, उनका ट्रस्ट जो है वो ब्रेक करते हैं, तो इसके लिए कंपनी आपके ऊपर केस भी कर सकती है और 3 महीने का वेतन ब्याज के सहित आपसे वसूल कर सकती है।
1: जी दोस्तों, तो आप सभी ने बहुत अच्छे से छोटी बात जो है वो जान ली है और ये बहुत ही खास बातचीत आज की आप सभी ने एंजॉय की है अपनी रेडी दोस्त रुचिका और
0: रूमा के साथ।
1: जी तो अब समय हो गया है आप सभी से अलविदा लेने का। तो उम्मीद करते हैं कि आप इन बातों पे गौर फरमाएंगे और अगर फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन है और अगर आप मदद चाहते हैं, आपके साथ कोई ऐसा केस हो गया है, आपके साथ गलत हो गया है और आपको समझ नहीं आ रहा कि आप क्या करें क्या ना करें, तो आप हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर रहेगा
0: 9418431223। जी दोस्तों, कभी भी किसी भी माध्यम से, SMS के माध्यम से, WhatsApp के द्वारा या फिर डायरेक्ट कॉलिंग के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं। जो भी आपकी समस्या है हम उसका समाधान करने की हर संभव कोशिश करेंगे।
1: जी दोस्तों, और आप सवाल भी बता सकते हैं हमें कि इस पे क्या होना चाहिए, भेज सकते हैं सवाल, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं या टेक्स्ट मैसेज भी कर सकते हैं या फिर हमारे यूट्यूब चैनल पे आप वीडियो के नीचे कमेंट भी कर सकते हैं कि इसको इस तरह से बेहतर बनाया जा सकता है या इसमें ये सवाल जो है वो एड ऑन किए जा सकते हैं। तो आप सभी जो है यूट्यूब चैनल पे जाके हमारी हर एक एपिसोड को देख सकते हैं, हर एक जानकारी को खुद तक पहुंचा सकते हैं। तो फिलहाल इन्हीं बातों के साथ अब समय है आप सभी से अनुमति लेने का, तो दीजिए इजाजत अपनी रेडियो दोस्त रुचिका और
0: रूमा को
1: कार्यक्रम संपन्न करने की। फिर होगी मुलाकात आप सभी के साथ एक नई बातचीत नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी इसी तरह से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए अपना मनपसंद रेडियो गुंजन, धर्मशाला गूंज अपने पन की।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दूरदर्शी नीतियों और कड़ी मेहनत के बल पर भारत वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने का अपना सपना जरूर पूरा करेगा। नई दिल्ली में आज विकसित भारत संकल्प सभा को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि कभी नीतिगत निष्क्रियता की चर्चा से जुड़ा भारत अब अपनी बढ़ती ताकत और चुनौतियों से निपटने की क्षमता के लिए चर्चा में है। उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में स्थिति पूरी तरह बदल गई है।
1: देश ने मुझे बहुत कुछ दिया, इसलिए देश के लिए मेरा दायित्व भी सबसे अधिक है और मैं हृदय से ये मानता हूं कि देश के हर नागरिक का मुझ पर सबसे बड़ा हक है। ये 25 वर्ष का जनविश्वास बहुत बड़ी पूंजी है और ये पूंजी देश की है। मां भारती की हर संतान इस पूंजी की अधिकारी है।
0: इस अवसर पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने जनसेवा को अपने जीवन का एकमात्र उद्देश्य बनाया है और राजनीति को राष्ट्र सेवा का माध्यम माना है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट पर कहा है कि श्री मोदी ने समावेशी विकास की सोच को देशव्यापी अभियान में बदल दिया है। गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी को जनसेवा के 25 वर्ष पूरे करने पर बधाई दी है। गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुग्राम में विकसित भारत संकल्प सभा सेवा ज्योति यात्रा में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में अनुच्छेद 370 को निरस्त करना, नक्सलवाद की समाप्ति और देश के बुनियादी ढांचे को उच्चतम स्तर तक पहुंचाना जैसे महत्वपूर्ण कार्य पूरे किए गए हैं। श्री शाह ने सभी से इस यात्रा में शामिल होने का आग्रह किया। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि अफ्रीका के साथ भारत की साझेदारी का निर्माण न केवल वर्तमान के लिए बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी किया जा रहा है। घाना के विदेश सेवा संस्थान में श्री जयशंकर ने कहा कि कूटनीति और प्रतिस्पर्धा को टकराव में बदले बिना उसका प्रबंधन किया जाना चाहिए और आपसी हितों में मतभेदों के बावजूद भी सहयोग को बढ़ावा देना चाहिए। भारत ने फिजी में आयोजित जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र के 31वें सम्मेलन COP31 से पहले एक सत्र में जलवायु परिवर्तन पर और अधिक ठोस कार्रवाई तथा पेरिस समझौते के शीघ्र कार्यान्वयन का आह्वान किया है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि जलवायु संबंधी दृष्टिकोण में मौजूदा कमियों को दूर करना, वर्तमान जलवायु प्रतिबद्धताओं को पूरा करना और वैश्विक तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के लक्ष्य की दिशा में विकास को गति देना आवश्यक है। भारत ने जम्मू कश्मीर पर और पाकिस्तान में आतंकी ढांचों के खिलाफ भारत की कार्रवाई पर इस्लामिक सहयोग संगठन की टिप्पणियों को खारिज किया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा की 6वीं समिति में लोकसभा सांसद बिप्लव कुमार देब ने कहा कि टिप्पणी करने वाले पीड़ित और अपराधी के बीच अंतर नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत को पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद से अपने लोगों की रक्षा करने का अधिकार है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने पंजाब के मुख्यमंत्री के विशेष कार्य अधिकारी OSD राजबीर घुम्मन और उनके सहयोगियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। ये मामला अधिकारियों के तबादलों और तैनातियों में

बाजार के प्रमुख सूचकांक आज लगभग 0.4% की गिरावट के साथ कारोबार कर रहे थे। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 241 अंक गिरकर 72,827 पर, जबकि निफ्टी 117 अंक की गिरावट के साथ 22,659 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: सर मेरा फ़ोन चोरी हो गया, आपका फ़ोन दे दीजिए सर प्लीज़, एक कॉल करना है सर प्लीज़ सर।
1: अरे भाई मैं कुछ काम कर रहा हूँ,
0: एक कॉल करूँगा सर पापा को बस सर प्लीज़ सर, फ़ोन चोरी हो गया सर मेरा, मेरे को पापा को अर्जेंट कॉल करना है सर।
1: अच्छा ठीक है तुम कह रहे हो तो, लेकिन सिर्फ एक कॉल। हाँ
0: हाँ सर, थैंक यू सर। हेलो, हाँ पापा ये फ़ोन चोरी हो गया मेरा, तो मैं एक जन के फ़ोन से फ़ोन किया हूँ। हाँ हाँ 1238 रुपये बस है मेरे पास अभी। हाँ ठीक है ना, ठीक है, ये लीजिए सर आपका फ़ोन, थैंक यू फ़ोन करने देने के लिए, थैंक्स अ लॉट।
1: कोई बात नहीं, ठीक है। इतने पैसे कैसे कट?
0: हाँ 1238 रुपये बस है मेरे पास अभी।
1: इतने पैसे,
2: ये भी एक तरह का साइबर क्राइम है, तो इस सिचुएशन से बचने के लिए आप ये कर सकते हैं कि आप अपना फ़ोन किसी भी अनजान व्यक्ति को देने से बचें, और अगर आप दे रहे हैं तो ये ध्यान रखें कि आप सामने रहकर उसे यूज़ करवाएं। तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए।
3: ले जा रहे ना तुम्हें पिक्चर, चलो बैठो बैठो।
4: बढ़िया,
3: फर्स्ट डे फर्स्ट शो, ऑनलाइन बुकिंग भी नहीं किया है, पूरे टाइम लाइन में धूप में खड़े थे, और पता कितना टाइम?
5: कितना टाइम?
3: अरे पूरे 2 घंटे।
5: अरे तुम्हारे टाइम के बारे में नहीं पूछ रहा है बुरबक, इनके खांसी के बारे में पूछ रहा है।
6: खांसी ये तो 2 हफ्तों से हो रही है।
5: 2 हफ्ते पिक्चर ले जाते हैं फर्स्ट डे फर्स्ट शो और खांसी को हो गए 2 हफ्ते, ये तो बहुत केयरलेस है। चलिए हमारे साथ
3: डॉक्टर। अरे आप तो बड़े सीरियस हो गए।
5: और नहीं तो क्या, 2 हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी होगा तो टीबी हो सकता है।
3: टीबी?
5: हाँ, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए, क्योंकि टीबी जो है
6: वो किसी को भी हो सकता है।
5: और अगर हो गया तो बिना भूले पूरा कोर्स करिए और उसके बाद बेफिक्र हो जाइए, और नहीं किया ना तो इसका इलाज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे हीरो हीरा लाल।
3: चलो
5: 2 हफ्तों से ज्यादा खांसी, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए। टीबी हारेगा, देश जीतेगा।

0: तो याद रखिएगा, दुनिया गोल है, चीजें घूम कर आती है। आज किसी को मदद की जरूरत है, उसकी आंखें ढूंढ रही है कोई तो मेरी मदद कर दे, और आप मदद कर सकते हैं, फिर भी आप सामने से ये सोचते हुए जा रहे हैं हमें क्या। किसी दिन आपको भी मदद की जरूरत पड़ेगी, तब आपकी नजरें ढूंढ रही होगी कोई मेरी मदद कर दे, और सामने से लोग यही सोचते हुए जा रहे होंगे हमें क्या।
1: सारा जहां है जिसकी शरण में, नमन है उस माँ के चरणों में। साल का वो सबसे पावन समय आ रहा है जब माँ शक्ति हमारे जीवन में ढेरों खुशियां भरने के लिए आ रही हैं। आ रहे हैं आस्था, शक्ति और आनंद के 9 दिन। आप सभी को रेडियो गुंजन परिवार की ओर से नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। इस बार फिर से मनाइए भक्ति और मस्ती का ये त्योहार सिर्फ हमारे साथ। सुनते रहिए 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला। Stay tuned.

0: सड़ा हुआ आलू, सड़ा हुआ आलू निकला।
1: बहुत खूबसूरत लग रही हो, नया सूट पहने क्या?

दोस्तों मैं हूं आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका, हाजिर हो गई हूं आप सभी के लिए कार्यक्रम लेकर पंजाबी गीतों का ये प्यारा सा सफर। बिल्कुल दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस प्यारे से सफर में। तो आइए बढ़ते हैं इस सफर में आगे और आप सभी को लेकर चलते हैं एक खूबसूरत से पंजाबी म्यूजिकल ट्रैक के सफर में।

दोस्तों आप सभी कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं पंजाबी गीतों का। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और कार्यक्रम में सुनाते हैं आप सभी को ये प्यारा सा पंजाबी गीत।

291.2 मेगाहर्ट्ज पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन कार्यशाला और आप सभी पंजाबी गीतों का कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए श्रोताओं बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और एंजॉय करते हैं ये प्यारा सा म्यूजिकल ट्रैक।

दोस्तों, इस खूबसूरत से गीत के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम पंजाबी गीतों में। तो आइए फिर से लेकर चलते हैं आपको एक और प्यारे से गीत की तरफ। एंजॉय कीजिए ये खूबसूरत सा पंजाबी गीत।

दोस्तों बहुत ही खूबसूरत सा गीत आप सभी ने एंजॉय किया बिल्कुल, और आप सभी एंजॉय कर रहे हैं पंजाबी गीतों का कार्यक्रम अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से। तो आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और फिर से लेकर चलते हैं आपको एक और पंजाबी गीत की तरफ। इसी तरह से एंजॉय करते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला, गूंज अपने पन की।

दोस्तों 91.1 MHz पर ये है आप सभी का अपना रेडियो रिंजन धर्मशाला और आप सभी इस समय जुड़े हुए हैं पंजाबी गीतों के कार्यक्रम में। बिल्कुल कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं अगला ये प्यारा सा खूबसूरत सा पंजाबी गीत।

दोस्तों आप सभी एंजॉय कर रहे थे पंजाबी गीतों का ये प्यारा सा सफर अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। इसी तरह से एंजॉय करते रहिए रेडियो इंजन धर्मशाला।

0: सर मेरा फ़ोन चोरी हो गया सर, आपका फ़ोन दे दीजिए सर प्लीज़, एक कॉल करना है सर प्लीज़ सर।
1: अरे भाई मैं कुछ काम कर रहा हूँ,
0: एक कॉल करूँ सर पापा को बस सर प्लीज़ सर, फ़ोन चोरी हो गया सर मेरा, मेरे को पापा को अर्जेंट कॉल करना है सर।
1: अच्छा ठीक है तुम कह रहे हो तो, लेकिन सिर्फ एक कॉल। हाँ
0: हाँ सर, थैंक यू सर। हेलो, हाँ पापा ये फ़ोन चोरी हो गया मेरा, तो मैं एक जन के फ़ोन से फ़ोन किया हूँ। हाँ हाँ 1238 रुपये बस है मेरे पास अभी। हाँ ठीक है ना, ठीक है, ये लीजिए सर आपका फ़ोन, थैंक यू फ़ोन करने देने के लिए, थैंक्स अ लॉट।
1: कोई बात नहीं, ठीक है। फिर इतने पैसे कैसे कट?
0: हाँ 1238 रुपये बस है मेरे पास अभी।
1: इतने पैसे, माय,
2: ये भी एक तरह का साइबर क्राइम है। तो इस सिचुएशन से बचने के लिए आप ये कर सकते हैं कि आप अपना फ़ोन किसी भी अनजान व्यक्ति को देने से बचें, और अगर आप दे रहे हैं तो ये ध्यान रखें कि आप सामने रहकर उसे यूज़ करवाएं। तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए।
3: ले जाएगा ना तुम्हें पिक्चर, चलो बैठो बैठो।
4: बढ़िया,
3: फर्स्ट डे फर्स्ट शो, ऑनलाइन बुकिंग भी नहीं किया है, पूरे टाइम लाइन में धूप में खड़े थे। और पता कितना टाइम?
5: कितना टाइम?
3: अरे पूरे 2 घंटे।
5: अरे तुम्हारे टाइम के बारे में नहीं पूछ रहे हैं बुड़बक, इनके खांसी के बारे में पूछ रहा है।
6: खांसी ये तो 2 हफ्तों से हो रही है।
5: 2 हफ्ते पिक्चर ले जाते हैं फर्स्ट डे फर्स्ट शो और खांसी को हो गए 2 हफ्ते, ये तो बहुत केयरलेस है। चलिए हमारे साथ
3: डॉक्टर।
6: डॉक्टर?
3: अरे आप तो बड़े सीरियस हो गए।
5: और नहीं तो क्या, 2 हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी होगा तो टीबी हो सकता है।
3: टीबी?
5: हाँ, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए, क्योंकि टीबी जो है
6: वो किसी को भी हो सकता है।
5: और अगर हो गया तो बिना फूले पूरा कोर्स करिए और उसके बाद बेफिक्र हो जाइए, और नहीं किया ना तो इसका इलाज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे हीरो हीरा लाल।
3: चलो
5: 2 हफ्तों से ज्यादा खांसी, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए। टीबी हारेगा देश जीतेगा।

0: याद रखिएगा, दुनिया गोल है, चीजें घूम कर आती है। आज किसी को मदद की जरूरत है, उसकी आंखें ढूंढ रही है कोई तो मेरी मदद कर दे, और आप मदद कर सकते हैं। फिर भी आप सामने से ये सोचते हुए जा रहे हैं हमें क्या, किसी दिन आपको भी मदद की जरूरत पड़ेगी, तब आपकी नजरें ढूंढ रही होगी कोई मेरी मदद कर दे, और सामने से लोग यही सोचते हुए जा रहे होंगे हमें क्या।
1: सारा जहां है जिसकी शरण में, नमन है उस माँ के चरणों में। साल का वो सबसे पावन समय आ रहा है जब माँ शक्ति हमारे जीवन में ढेरों खुशियाँ भरने के लिए आ रही हैं। आ रहे हैं आस्था, शक्ति और आनंद के 9 दिन। आप सभी को रेडियो गुंजन परिवार की ओर से नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। इस बार फिर से मनाइए भक्ति और मस्ती का ये त्योहार सिर्फ हमारे साथ। सुनते रहिए 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला। Stay tuned.

0: मैं कैसे लग रही हूँ?
1: सड़ा हुआ आलू। सड़ा हुआ आलू निकला। तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, नया सूट पहने है क्या?

नमस्ते नमस्कार, 91.2 मेगाहर्ट्ज पर ये तो हाँ सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कनेसी कन्ने मैं तो हुंदी अपनी रेडियो दोष जशी हाजिर होई हो कार्यक्रम लेकरी माटी दी महक। ता जरूर इस माटी दी महक कार्यक्रम दे सफर च तुहां सारे जुड़ चुके होने न कन्ने, अगर नहीं जुड़े हो तो जल्दी जल्दी इस कार्यक्रम कन्ने जुड़िया, क्योंकि तुहां सारे जे पता है कि इस कार्यक्रम दा जेड़ा समय है से तुहां तक रहिंदा है 2-3 बजे तक। कने तुहां सारे भी इंतजार जेड़ा है से जरूर करते न, कने इंतजार दी जेड़ा घड़ी है से तुहां वास्ते बिल्कुल खत्म है। 7 अक्टूबर 2026 की गल करिए जेड़ा दिन हैं महीने न साल हैं तिना दा पता ही नहीं चलता है कि कालू समय दे अनुसार दिन निकलते न या महीने निकलते न या साल निकलते न, पता ही नहीं चलता है। समय दे अनुसार चलना हर जगह जरूरी है। आज के दिने दी गलबात करिए ता आज हाँ जेड़ा खास दिवस बना देन, क्योंकि हर दिने दी जेड़ा खासियत है से कुछ ना कुछ जरूर होंदी है। कने इसी खासियत कने आहां तुहां तक जेड़ा गलबात है से जरूर पहुँचांदे न कि अज कने दिने दी क्या खास गलबात है, क्या खास जेड़ा यादगार है या क्या जेड़ा खास दिन आज आहां बना देन। विश्व कपास दिवस जेड़ा है से आज आहां बना देन, तो जरूर इदे पर अहां गलबात करनी है कि जेड़ा 7 अक्टूबर जो अहां हर साल जेड़ा है से वैश्विक स्तर पर जेड़ा है से कपास कने जेड़ा आर्थिक समाजिक जेड़ा महत्व है से दिवस जेड़ा है से अहां बनांदे न, कने जेड़ा विश्व कपास दिवस बनाने दा क्या मतलब है तेरे ऊपर भी जरूर गलबात करनी है। कने तुहां सारे भी इस कार्यक्रम दे सफर अहां कन्ने जुड़ सकदे, कने अहां कन्ने गलबात जेड़ा से जरूर करी सकदे। कने इसी कन्ने मौसम दी और अगर अहां नज़र दौड़ांदे न तो मौसम भी कुथी ना कुथी अपना जेड़ा समय है से जरूर बदलदा है। कने तुहां जो भी सर्दी दा जेड़ा एहसास है से जरूर ओहदा होणा है। कने मुझे लगा था कि तुहां सारियां भी कोटियां जेड़ा ने से पहन लिया होनियां ने, वैसे तो सही गल है क्योंकि मौसम दे अनुसार अपना जेड़ा ख्याल ऐसे रखना जरूरी है, मौसम के अनुसार चलना जरूरी।

तो श्रोताओं तो सारे ही सुनिया एक गीत ते शुरुआत अहां इस गीत कन्ने कीती है कन्ने तो सारे भी शुरुआत कन्ने जरूर जुड़ी सकते कन्ने अहां कन्ने गलबात जिहड़े से जरूर करी सकते गलबात अजकनी जिहड़े से जरूर खास है कन्ने तो सारे भी जल्दी जल्दी गलबात कन्ने जुड़िया क्योंकि तो सारे जो ही पता है कि इस कार्यक्रम का जिहड़ा समय है से तो तक रहिंदा है 2 से 3 बजे तक कने समय दी और अगर अहां नज़र अपनी दौड़ाते न तो 2:10

0: श्रोताओं तो सारे ही सुनिया ये भजन फरमाइश ये भजन यहाँ तक पहुँचा है व्हाट्सएप के माध्यम ने तिना का ना वे इंदू जी तो जरूर इंदू जी तक अहाँ ये फरमाइश पहुँचाई कने तुम सारे भी इंजॉय की। इसी कने अगले जेड़ा श्रोता ने से जुड़ चुके हैं कर दें तिना कने गल बात। हेलो
1: हेलो
0: हेलो नमस्ते जी।
1: हाँ जी नमस्ते मैडम जी।
0: जी स्वागत है जी तुहां दा रेडियो गुंजन धर्मशाला च। ठीक ठाक
1: है धन्यवाद जी।
0: जी तुहां कुत्थों ते बोला दे कने तुहां दा नाम के है जी?
1: मैं जी खन्यार ते बोला मेरा नाम बतन जी।
0: जी खन्यार ते बोला दे बतन जी।
1: हाँ जी हाँ
0: जी। ता बतन जी खन्यारे दा मौसम कदे है?
1: ओ जी सबक टाना टन लग धूप लगी बड़ा वधिया जी।
0: जी अच्छा बड़ी प्यारी जेड़ा धूप ऐसे खिली हो ना जी इस टाइम।
1: हां जी हां जी
0: जी जी। ता कल कितनी की बरखा हुई?
1: हां जी संजय दी हुई ठीक ठाक ही हुई जी संजय।
0: जी अच्छा ठीक ठाक ही हुई है ना जी।
1: हां जी हां जी
0: जी जी जी। ता बतन जी इस टाइम क्या कामकार तुहां करा दिए?
1: इस तरह रोटी खा के आराम ही करा ही मैडम जी।
0: जी अच्छा आराम ही करा दे। वैसे भी ये दोपहर दा समय होंदा ता आराम करने वाला समय होंदा ना जी।
1: हाँ जी हाँ जी
0: जी जी। ता आराम जी आराम ता तुहां करा दे। इसी कन्ने कई बार होंदा ना कि थोड़ी देर चलो रेस्ट करी लैंदे न पर कई बार सुस्ती वाला ये टाइम होंदा ना जी।
1: सुस्ती वाला नहीं मैं रखी है गा जी गा
0: जी। अच्छा
1: पानी पाए करी फिर रोटी खा दी कने मैं आराम कर लंदे।
0: जी जी फिर तो हां रेडियो सेट भी ऑन कित्ते होना रेडियो भी सुना
1: दे। हां जी जी रेगुलर चले आंदा रेगुलर।
0: जी अच्छा रेगुलर ही चले आंदा तो
1: हां
0: जी चलो अच्छी गल है जी।
1: हां जी
0: जी। ता बतन जी आज तो हां कुंदिया गीत सुनना पसंद कर के।
1: हां जी जी सुनाई दे तेरे मेरे रोल लगन।
0: जी तेरा मेरा लगन उस
1: सजना।
0: जी जी जरूर जी। ये गीत ये फरमाइश तुहां तक पहुंचान दें जी जुड़ने वास्ते बड़ा बड़ा धन्यवाद जी तुहां दा।
1: जी बड़ा बड़ा धन्यवाद
0: जी। तो श्रोताओं गलबात उपर अहां वापिस आई आंदे ने क्योंकि श्रोता भी जरूर अहां कन्ने जुड़ा दे ने कन्ने गलबात जेड़े सभी तुहां तक पहुंचानी है। तो श्रोताओं गलबात अहां करा दे ने अज कने दिने दी जेड़ा खास गलबात है से विश्व कपास दिवस जेड़े से अज अहां बना दे ने। पहले तो तुहां जो कपास जिहड़ा हा चिकना दिन हा सैलीब्रेट करा देन तिहदियां बड़ियां सारियां शुभकामनाएं हन क्योंकि शुभकामनाएं हर चीज़ा दियां देना जरूरी होंदियां। इसी कन्ने जिहड़ा श्राद्ध भी चले न तां श्राद्धा दे जिहड़ा तीन दिन बचे न अज कल कने परसों फिर उसके बाद जिहड़ा नवरात्रे न से शुरू होई जाने न। नौ नवरात्रे जिहड़ा न से तुहां बड़े ही धूमधाम ने बनांदे न कने फुल ऑन इंजॉय भी करदे न कने तुहां जिहड़ा जितने भी श्रोता न से जरूर नवरात्रियां जो रखते भी हैं कने पूरी श्रद्धा भाव ने जिहड़ा सैलीब्रेट जरूर करते हैं। तो श्रोताओं 7 अक्टूबर की गल करिए जिहड़ा गल अहां करन सफेद सोने की यानी कि वाइट गोल्ड जिहड़ा समर्पित है जिहड़ा अहां सुकून पांदे न या जिहड़ा कपड़े अहां पहना दे अज से कुथी ना कुथी अहां जो ये महसूस करवांदे न कि दी जिहड़ा शुरुआत है से मिट्टी च एक जिहड़ा छोटा जिहा बीज होंदा है तिसते ही जिहड़ा कपास है या आम भाषा च अहां तुसीं जो बोलदे न रूई। तो जरूर रूई जिहड़ा है से कपास अहां रूई जो बोलदे न कने तिसते ही अहां कपड़े जिहड़ा न से बनांदे न। इसी कन्ने अहां जिहड़ा अजकना दिन खास तौर पर जिहड़े से बना देन कने तुहां सारे भी इस कार्यक्रम दे सफर च अहां कन्ने जुड़ी सकदे कने अहां कन्ने गलबात जिहड़े से जरूर करी सकदे। कपास जिहड़ा दिवस है दुनिया भर च बनाने दा ये मतलब है कि जिहड़ा आर्थिक महत्व है कने जिहड़ा जितने भी इस कन्ने जुड़े हो किसान हन तिन्हां दी जिहड़ा मेहनत है क्योंकि मेहनत हर जगह लगती है पर आज के दौर की गल करिए कुथी ना कुथी यहाँ अपना जिहड़ा जीवन है से बड़ा ही सरल जिहड़ा से बनाई लिया। सर्दियों के मौसम की यहाँ गल करिए जिहड़ा स्वेटर है कोटी है पहले ये होंदा था कि ज़्यादातर अहाँ अपने जिहड़ा खुद जिहड़ा हाथ दे बुने जिहड़ा स्वेटर होंदे थे या कोटियां जिहड़ा होंदियां थीं से पहनते थे। पर आजकल तां रेडीमेड सब कुछ मिली आदा या ऑनलाइन ऑर्डर करा, ऑनलाइन सारी चीज़ा जिहड़ा न स्याह तक घर ही पहुंची आ दियां हैं, जो ज़्यादा मेहनत करने दी ज़रूरत जिहड़ा है से नहीं पौदी। पर उस टाइम ये होंदा था कि यहाँ जलू कोटी बुनते थे सिलाइयां ने, तो कुछ ना कुछ यहाँ का जिहड़ा हाथ हैं सभी काम करते थे, कन्या यहाँ का जिहड़ा शरीर है से कुछ ना कुछ सेहत भी यहाँ दी ठीक रहती थी, कन्या यहाँ अपने जिहड़ा काम कार हैं तिना जो भी करते रहते थे। पर आजकने दौर की गल करिए तहाँ कुछ ना कुछ बड़ी जिहड़ा हाँ जो सुविधाएं न से मिली हैं, पर कुछ ना कुछ यहाँ दी जिहड़ा सेहत है सेहत पर भी नुकसान जिहड़ा है से जरूर पहुँचा। तशो तो अपनी गलबात जो हाँ इतनी रोक देना, कने तो जो अगली फरमाइश की ओर लेकर चल देना, अगली फरमाइश यहाँ पहुँचा देना राकेश जी तक से रहने वाले न नरवाना ते। तो सारे भी इस गीत जो इंजॉय करा, कने ने सुनते रहे अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला।

कानवी दशमलव 2 MHz पर ए है तो हाँ सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। तो हाँ सारे इस वक्त कार्यक्रम सुना देना अपनी रेडियो दो शशि कन्ने। फिर इतने हाँ वापिस आई हो न इस प्यारे दे गीत के बाद, तो जरूर तो हाँ ये गीत जड़े से ध्यान ने सुने होने कने कुथी न कुथी जड़ा विवाह गीत हैं से हाँ जो हमेशा एक दुए ने जोड़ी कर रखते हैं ना कने जालू भी शादी विवाह का फंक्शन जालू घरे चौंदा है तो रौनक वाला जिहड़ा माहौल है से जरूर अहां जो दिखने जो मिलता है। तो इसी कने जिहड़ा लोक गीत हैं से कुथी ना कुथी अहां जो एक दुए कने जोड़ी कर रखते हैं ना कने जिहड़ा माटी दी महक कार्यक्रम का सफर है सभी अहां जो अपनी मिट्टी कने जोड़ी करी रखता है, क्योंकि यही मिट्टी जेड़ा अहां जो हमेशा हर दिन अहां मेहनत करा देन कने मेहनत दा जेड़ा फल है से जरूर अहां तक पहुंचा दे। तो फल ताई पहुंचदा है जालू अहां मेहनत कर देन। किसान जेड़ा है से दिन रात मेहनत करी करी अपनी जेड़ा पैदावार है या अपनी जेड़ा फसल है जरूर मेहनत करी करी ही उस काम जो जेड़ा है से हासिल करता है। पर आज का जेड़ा दौर है हाँ हमेशा ये सोची करी चलते न कि मेहनत जेड़ा है से अहां जो ना करना पवे। कोई भी काम है चाहे खेतीबाड़ी है, खेतीबाड़ी दी अहां गल करना तो अगर हाँ थोड़ा जहा पिछे दिखते न या थोड़ा जहा पिछे चली जाते न तो खेतीबाड़ी का जेड़ा काम है से अहां ज़्यादातर खुद ही करते थे। पर हुणे दी अहां गल करिए जेड़ा खुद का काम था से हुण मशीना पर अहां निर्भर होई हो, मशीना जेड़ा न से चली पियाँ कने तिदी पर अहां निर्भर हन कने कुथी ना कुथी अहां दे जेड़ा खुद दे काम मन से बिल्कुल कम होई हो या अहां ये बोली सकते कि बिल्कुल ही घट होई हो। थोड़ा दे अहां पैदल चलते न तो अहां पैदल भी नहीं चली पाते न, हर कुसील कोई ना कोई व्हीकल जेड़ा है से घर है। ठीक है फायदे भी बड़े न पर नुकसान भी जरूर हैं, क्योंकि फायदा तो यह है कि अगर अहां जो ज़रूरी काम है या कुछ भी होई है तो जल्दी जल्दी अहां अपना जेड़ा व्हीकल है से उठाते हैं कने चली पाते हैं कने इसी कन्नै अगर अहां जालू कोई भी अगर अहां जो ज़रूरत नहीं है तभी अहां तिस व्हीकल जो उठा दे कने चली पो दे। अगर अहां बस जो देन अहां थोड़ा जहा भी पैदल चलना है तभी अहां पैदल जेड़ा है से नहीं चली पा दे। तो दिखा तो तीदी वजह ने भी अहां दी सेहत पर कुथी ना कुथी जेड़ा बुरा असर जेड़ा है से जरूर पौदा। तो श्रोताओं इसी कन्नै तुहां सारे भी कार्यक्रम दे सफर जहां कन्नै जुड़ी सकदे, सफर जो अग्गे बढ़ाना है क्योंकि श्रोता जेड़ा न से जरूर इंतजार करदे रहंदे न कन्नै अहां भी अहां दी भी जेड़ा कोशिश है से ही रहंदी है कि तिना तक तिना दी जेड़ा फरमाइश है से जरूर अहां पहुंचान। तो इसी कन्नै चलदे न अगली फरमाइश अहां पहुंचा देन रमेश जी तक सरहने वाले न तंगलोटिया ते। तो जरूर तुहां सारे भी इंजॉय करा कने सुनते रहे अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला।

तो तुम तो सारे आएगी तो इंजॉय किया तो जरूर तुम तो सारे जो पसंद भी आया होना है कने इस गीत दे बोल च बड़े ही प्यारे जेड़ा बोल से बोले थे अगर तुम ध्यान ने सुने होंगे क्योंकि गीत दे जेड़ा बोल से कुथी ना कुथी अह जो जरूर अपनी जिंदगी कने जोड़ी दे न या कुछ पुराने जेड़ा लम्हे न यादा न से जरूर फिरी ते ताज़ा हो जाए न ताज़ा जेड़ा गलबात अह की सह की कि चुल्हे ते बनाना पौनी दाल तशो तो अज कने दौर की गल करिए से चुल्हे से दाल कुथ तुहों जो मिलनी क्योंकि अजकना जेड़ा दौर है से थोड़ा दिया फास्ट आला है अहाँ जेड़ा कोई भी काम करना चाहते न चाहे से 20 मिनट आला काम है उस जो अहाँ 10 मिनट करना चाहते क्योंकि अहाँ की जेड़ा जिंदगी है ना से अहाँ ये सोची करी चलते न कि अहाँ समय नहीं है समय अहल है फिर भी अहाँ ये सोचा दे कि अहल समय नहीं है पर जेड़ा चूल्हे पर अहाँ खाना बनाते न उसकी जेड़ा अलग ही गल है जालू तुह चूल्हे पर बनया खाना खाते न या तुह जो याद है अली भी तुह बनाते न तो बड़ी अच्छी गल है क्योंकि सर्दियों का जेड़ा मौसम है ना तो हाँ जो बार बार जेड़ा याद क्या आंदा है चूल्हा आंदा है जेड़ा चूल्हे च अग बड़ी होंगी तीदी याद जेड़ा इसे जरूर आँदी है जलू अहम जो ठंड लगती है कने अह चूल्हे बैठी करी खाना भी बनाते न कने अग भी जरूर जेड़ा इसे सेकते न तो तुह जो भी जरूर से यादा पुरानी जेड़ा यादा न से तुह ताज़ा करी लिया होनिया न क्योंकि ताज़ा करना तो बनता है ना हर दिने की अपनी अपनी खासियत होंगी दिने के अनुसार अह किस प्रकार चलते न अपना अजकना दिन अह किस प्रकार इंजॉय कराते न से अह पर निर्भर करता है क्योंकि अजकना जेड़ा दिन है से अह वास्ते बेहतर खास है हर दिन खास होंदा पर अह अजकने दिने जो खास किस तरीके ने बनाते न से अह पर निर्भर करता है इसी कने अह भी एक कार्यक्रम जेड़ा है से जो खास बनाना है क्योंकि श्रोता जरूर इंतजार करा दे न इंतजार हूँ जेड़ा लग्या है से लग्या है खनियारा ते या फरमाइश अह तक पहुँची हो है तिना दा नाम है वतन जी तो जरूर वतन जी तक अह ये फरमाइश पहुँचा दे न कने जितने भी बाकी श्रोता इस कार्यक्रम जो सुना दे न तिना तक भी अहाँ इस फरमाइश जो जरूर पहुँचा दे न कने नंबर जेड़ा है से स्टूडियो दा तो हाँ सारे नोट करी लिया क्योंकि नंबर नोट करिए ताई तो हाँ इस नंबर पर कॉल करी सकते या टेक्स्ट मैसेज करी सकते या व्हाट्सएप मैसेज करी सकते नंबर है 701-8117091 नंबर तुह तक पहुँचाई तय कने बाकी जेड़ा काम में से तुहद है थोड़ी देर वास्ते घरे दे जेड़ा काम मन तिना जो भी छड़ी दिया वैसे अगर रेडियो बखन त अपना जेड़ा रेडियो सेट है उस जो भी ऑन करी लिया कने अपने जेड़ा काम मन तिना जो भी करी लिया तो जरूर ये गीत भी इंजॉय करा

90.2 मेगाहर्ट्स पर यह है तुहां सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। तुहां सारे इस वक्त कार्यक्रम इंजॉय करा देना अपनी रेडियो दो शशि कन्ने। इसी कन्ने तुहां सारे आएगी ते फरमाइश इंजॉय कीती कन्ने फिरी ते वापिस अहां आई हो अपनी गलबात उपर, क्योंकि गलबात करना भी जरूरी है कन्ने जेड़ा तुहां दियां फरमाइशां ने सभी जरूर तुहां तक पहुँचानियां ने। श्रोता जेड़ा ने से इंतजार करते रहते न कने समय के अनुसार अहां भी जरूर तिना तक तिना दियां जेड़ा फरमाइशा न से पहुँचाते हैं। कार्यक्रम च जुड़ने वास्ते जेड़ा नंबर है से फ्री ते तुहां तक पहुँचाईंदे न, क्योंकि नंबर तुहां तक पुजेगा ताई तो तुहां इस नंबर पर कॉल करी सकदे या टेक्स मैसेज करी सकदे या वट्सएप मैसेज करी सकदे। नंबर है 701-811-7091। नंबर तुहां तक पहुँचाई ते कने फ्री ते थोड़ा दिया कार्यक्रम दे सफर जो अगे बढ़ाते न कने तुहां जो अगली फरमाइश की ओर लेकर चलते न, क्योंकि फरमाइश भी हाँ जिहड़ा समय के अनुसार पूरी करनी है। समय की ओर नज़र दौड़ाते न तो 2 बजे करी जिहड़ा समय है से अपनी रफ्तार लेकर चले कने कार्यक्रम च समय जिहड़ा है से हाँ थोड़ा है, तो इसी कन्ने अगली जिहड़ा फरमाइश है से तुहां तक पहुँचा देना।

बोला दिन रेडियो गुंजन धर्मशाला ते कने तुहां सारे इस वक्त कार्यक्रम इंजॉय करा दिन अपनी रेडियो दोष शशि कने फिर ते वापिस आई हो न माटी दी महक कार्यक्रम दे सफर जो जिड़ा गल बात करा देन तिहा जो ले करी कुथी ना कुथी जिड़ा माटी दी महक कार्यक्रम दा जिड़ा सफर है से अहां जो हमेशा क्या एहसास दिलांदा है अहां जो ये एहसास जड़े से दिलांदा है अहां जो अपनी जड़ा कन्ने जोड़ी के रखदा है कन्ने जड़ा अहां दी जड़ा याद न तिना कन्ने भी जोड़ी करी रखदा है कन्ने कुथी ना कुथी जड़ा मिट्टी दी खुशबू है से अहां जो हमेशा क्या बोलती है कि मिट्टी कन्ने प्यार करा क्योंकि मिट्टी अहां वास्ते हर दिन अहां वास्ते अहां मेहनत करा देन मिट्टी ही अहां मिट्टी दी जड़ा देन है से बड़ी ज़्यादा है पर अहां कुथी ना कुथी अपनी प्रकृति कन्ने छेड़छाड़ जड़ा है से ज़रूर कर देन प्रकृति जो नुकसान जड़ा है से ज़रूर पहुँचा देन तेसी कन्ने जिना अहां प्रकृति कन्ने व्यवहार कर देन तिना ही प्रकृति भी अहां कन्ने ज़रूर कुछ ना कुछ ज़रूर कर दी है क्योंकि छोटा बच्चा होंदा है अगर अहां छोटे बच्चे कन्ने प्यार लाड दिसजो दिंदे न अच्छे संस्कार अहां दिसजो दिंदे न तो कुथी ना कुथी से अपने जीवन च खरा जड़ा है से उतरदा है या तिना संस्कारा पर खरा उतरदा है कन्ने अपने जीवन जो ज़रूर जड़ा है से सफल बनांदा है तो इसी कन्ने तो हां सारे भी माटी दी महक कन्ने जड़ा जुड़े न अपनी जड़ा कन्ने जुड़े न कन्ने सफर जड़ा है से तो जो हर पल अपनी यादा दी ओर लेकर जाता है जिना जो हाँ कुथी ना कुथी लुप्त करते चलो या जड़ा पुरानिया यादा न तिना जो हाँ जरूर ताज़ा करते न अपना जड़ा समय है उस जो याद करते न ठीक है याद करना भी ज़रूरी है पर उस दे ऊपर मेहनत करना भी ज़रूरी है तो इसी कन्ने अहाँ थोड़ी देर और मेहनत करते न कन्ने अगली जड़ा फरमाइश है से तुह तक पहुँचा देना।

ये तुहां सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला तुहां सारे कार्यक्रम एंजॉय करा दे थे अपनी रेडियो दोस्त शशि कन्ने। इसी कन्ने इस गीत जो भी एंजॉय करा दे न, इस गीत की फरमाइश वहां पहुंचाई है मनोज कुमार जी तक, कन्ने तुहां सारे भी एंजॉय की थी। इसी कन्ने कार्यक्रम दा जेड़ा सफर है सहां जो बोला दा कि उन अनुमति जेड़ा सेल ले लिया, तो जरूर अहां कार्यक्रम ते अनुमति लेनी है। कन्ने तुहां सारी अपना जेड़ा ख्याल है से जरूर रखा, कन्ने अपने दा भी ख्याल जरूर रखा। ख्याल रख के ताई तुहां अपने जेड़ा काम मन तिना जो करी सकदे। तो इन्हें सुनते रहे अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला, गूंज अपने बंदी।

0: सर मेरा फोन चोरी हो गया, आपका फोन दे दीजिए सर प्लीज, एक कॉल करना है सर प्लीज सर।
1: अरे भाई मैं कुछ काम कर रहा हूँ,
0: एक कॉल करूँ सर पापा को बस सर प्लीज सर, फोन चोरी हो गया सर मेरा, मेरे को पापा को अर्जेंट कॉल करना है सर।
1: अच्छा ठीक है तुम कह रहे हो तो, लेकिन सिर्फ एक कॉल। हाँ
0: हाँ सर, थैंक यू सर। हेलो, हाँ पापा ये फोन चोरी हो गया मेरा, तो मैं एक दिन के फोन से फोन किया हूँ। हाँ हाँ 1238 रुपये बस है मेरे पास अभी। हाँ ठीक है ना, ठीक है ये लीजिए सर आपका फोन, थैंक यू फोन करने देने के लिए, थैंक्स अ लॉट।
1: कोई बात नहीं, ठीक है। इतने पैसे कैसे कट?
0: हाँ 1238 रुपये बस है मेरे पास अभी।
1: कितने पैसे? माय,
2: ये भी एक तरह का साइबर क्राइम है, तो इस सिचुएशन से बचने के लिए आप ये कर सकते हैं कि आप अपना फोन किसी भी अनजान व्यक्ति को देने से बचें, और अगर आप दे रहे हैं तो ये ध्यान रखें कि आप सामने रहकर उसे यूज करवाएं। तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए।
3: ले जा रहे ना तुम्हें पिक्चर, चलो बैठो बैठो।
4: बढ़िया,
3: फर्स्ट डे फर्स्ट शो, ऑनलाइन बुकिंग भी नहीं किया है, पूरे टाइम लाइन में धूप में खड़े थे, और पता कितना टाइम?
5: कितना टाइम?
3: अरे पूरे 2 घंटे।
5: अरे तुम्हारे टाइम के बारे में नहीं पूछ रहे हैं बुरबक, इनके खांसी के बारे में पूछ रहा है।
6: खांसी ये तो 2 हफ्तों से हो रही है।
5: 2 हफ्ते पिक्चर ले जाते हैं फर्स्ट डे फर्स्ट शो, और खांसी को हो गए 2 हफ्ते, ये तो बहुत केयरलेस है। चलिए हमारे साथ
3: डॉक्टर। अरे आप तो बड़े सीरियस हो गए।
5: और नहीं तो क्या, 2 हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी होगा तो टीबी हो सकता है।
3: टीबी?
5: हाँ, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए, क्योंकि टीबी जो है
6: वो किसी को भी हो सकता है।
5: हाँ, और अगर हो गया तो बिना भूले पूरा कोर्स करिए और उसके बाद बेफिक्र हो जाइए, और नहीं किया ना तो इसका इलाज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे हीरो हीरा लाल।
3: चलो
5: 2 हफ्तों से ज्यादा खांसी, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए। टीबी हारेगा, देश जीतेगा।

0: याद रखिएगा, दुनिया गोल है, चीजें घूम कर आती है। आज किसी को मदद की जरूरत है, उसकी आंखें ढूंढ रही है कोई तो मेरी मदद कर दे, और आप मदद कर सकते हैं, फिर भी आप सामने से ये सोचते हुए जा रहे हैं हमें क्या। किसी दिन आपको भी मदद की जरूरत पड़ेगी, तब आपकी नजरें ढूंढ रही होगी कोई मेरी मदद कर दे, और सामने से लोग यही सोचते हुए जा रहे होंगे हमें क्या।
1: सारा जहां है जिसकी शरण में, नमन है उस माँ के चरणों में। साल का वो सबसे पावन समय आ रहा है जब माँ शक्ति हमारे जीवन में ढेरों खुशियां भरने के लिए आ रही हैं। आ रहे हैं आस्था, शक्ति और आनंद के 9 दिन। आप सभी को रेडियो गुंजन परिवार की ओर से नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। इस बार फिर से मनाइए भक्ति और मस्ती का ये त्योहार सिर्फ हमारे साथ। सुनते रहिए 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला। Stay tuned.

सड़ा हुआ आलू, सड़ा हुआ आलू निकला। तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, नया सूट पहने हैं क्या?

91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने लेकर। तो श्रोताओं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम का सबसे पहला प्यारा सा गीत। आप यूं ही बने रहिए 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम सुन रहे हैं आप गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने इस समय श्रोता सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी, और लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत।

आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ 91.2 MHz पर कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला।

आप बने हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने आप सुन रहे हैं 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी। आइए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम सुन रहे हैं आप गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने इस समय श्रोता सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी, और लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत।

0: सर मेरा फ़ोन चोरी हो गया सर, आपका फ़ोन दे दीजिए सर प्लीज़, एक कॉल करना है सर प्लीज़ सर।
1: अरे भाई मैं कुछ काम कर रहा हूँ,
0: एक कॉल करूँगा सर पापा को बस सर प्लीज़ सर, फ़ोन चोरी हो गया सर मेरा, मेरे को पापा को अर्जेंट कॉल करना है सर।
1: अच्छा ठीक है तुम कह रहे हो तो, लेकिन सिर्फ एक कॉल। हाँ
0: हाँ सर, थैंक यू सर। हेलो, हाँ पापा ये फ़ोन चोरी हो गया मेरा, तो मैं एक दिन के फ़ोन से फ़ोन किया हूँ। हाँ हाँ 1238 रुपये बस है मेरे पास अभी। हाँ ठीक है ना, ठीक है ये लीजिए सर आपका फ़ोन, थैंक यू फ़ोन करने देने के लिए, थैंक्स अ लॉट।
1: कोई बात नहीं, ठीक है। इतने पैसे कैसे कट?
0: हाँ 1238 रुपये बस है मेरे पास अभी।
1: कितने पैसे? माय,
2: ये भी एक तरह का साइबर क्राइम है, तो इस सिचुएशन से बचने के लिए आप ये कर सकते हैं कि आप अपना फोन किसी भी अनजान व्यक्ति को देने से बचें, और अगर आप दे रहे हैं तो ये ध्यान रखें कि आप सामने रहकर उसे यूज करवाएं। तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए।
3: ले जा रहे ना तुम्हें पिक्चर, चलो बैठो बैठो।
4: बढ़िया,
3: फर्स्ट डे फर्स्ट शो, ऑनलाइन बुकिंग भी नहीं किया है, पूरे टाइम लाइन में धूप में खड़े थे, और पता कितना टाइम?
5: कितना टाइम?
3: अरे पूरे 2 घंटे।
5: अरे तुम्हारे टाइम के बारे में नहीं पूछ रहे हैं बुड़बक, इनके खांसी के बारे में पूछ रहा है।
6: खांसी ये तो 2 हफ्तों से हो रही है।
5: 2 हफ्ते? पिक्चर ले जाते हैं फर्स्ट डे फर्स्ट शो और खांसी को हो गए 2 हफ्ते, ये तो बहुत केयरलेस है। चलिए हमारे साथ
3: डॉक्टर।
6: डॉक्टर?
3: अरे आप तो बड़े सीरियस हो गए।
5: और नहीं तो क्या, 2 हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी होगा तो टीबी हो सकता है।
3: टीबी?
5: हाँ, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए, क्योंकि टीबी जो है
6: वो किसी को भी हो सकता है।
5: हाँ, और अगर हो गया तो बिना भूले पूरा कोर्स करिए और उसके बाद बेफिक्र हो जाइए, और नहीं किया ना तो इसका इलाज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे हीरो हीरा लाल।
3: चलो,
5: 2 हफ्तों से ज्यादा खांसी, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए। टीबी हारेगा, देश जीतेगा।

0: याद रखिएगा, दुनिया गोल है, चीजें घूमकर आती है। आज किसी को मदद की जरूरत है, उसकी आंखें ढूंढ रही है कोई तो मेरी मदद कर दे, और आप मदद कर सकते हैं, फिर भी आप सामने से ये सोचते हुए जा रहे हैं हमें क्या, किसी दिन आपको भी मदद की जरूरत पड़ेगी, तब आपकी नजरें ढूंढ रही होगी कोई मेरी मदद कर दे, और सामने से लोग यही सोचते हुए जा रहे होंगे हमें क्या।
1: सारा जहां है जिसकी शरण में, नमन है उस माँ के चरणों में। साल का वो सबसे पावन समय आ रहा है जब माँ शक्ति हमारे जीवन में ढेरों खुशियाँ भरने के लिए आ रही हैं। आ रहे हैं आस्था, शक्ति और आनंद के 9 दिन। आप सभी को रेडियो गुंजन परिवार की ओर से नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। इस बार फिर से मनाइए भक्ति और मस्ती का ये त्योहार सिर्फ हमारे साथ। सुनते रहिए 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला। Stay tuned.

0: सड़ा हुआ आलू, सड़ा हुआ आलू निकला।
1: तुम
0: बहुत खूबसूरत लग रही हो, नया सूट पहने हैं क्या?

नमस्कार श्रोताओं, FM बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडी गुंजन धर्मशाला तो है सभी ट्यून को रो रहा हूँ। आज सचिन कपूर हाजिर हुआ तुंदे सभी रे रेडियो सेट में। क्या हालचाल ने श्रोताओं, जिंदगी में तुंदे सभी रे ठीक बुने खरे बुने ये उम्मीद है। लाइक रे रख दे इन श्रोताओं की जिंदगी में हाल चाल के अंसो खरे बुने, लेकिन जिंदगी में हाल चाल कहने ने बदलेगा इन श्रोताओं ये किया सो पता लाना बड़ा टफ बुझ गंदा। कहने क्या है तुसु बुझ गए छ, कहने क्या है मुसीबत की है सो चली या ये पता लाना किया सो मुश्किल बुझ गंदा। सो हर परिस्थिति वास्ते की है सो इंसान जो तैयार रहना चींदा है श्रोताओं, वैसे इंसान किया सो जिंदगी में बहुत सारी चीज़ें ऐसी बुझ गंदी ना जो तुहे सोच रू भी ना बुंदिन, जो तुंदे जहन में भी ना बुंदिन, फिर भी सो चीज जगिन सो तुस होगी हम बुझ गंदी हिन। तो ये दिस इज़ द पार्ट ऑफ लाइफ, मतलब कि ये जिंदगी रह गया सो एक पार्ट है श्रोताओं कि जो तो ये सोचू रहा ना बंदा सो भी तुस होगी बुझ गंदा हा और बुझ सकता हा, ये तो है मन नहीं करी चला। इस समय है गल कर दिन पहले धर्मशाला री श्रोताओं, ता इस समय धर्मशाला रा मौसम किया सो बिल्कुल बेगा था ख़राब तो श्रोताओं, हल्की फुल्की बर्फ़ आ गया सो बुझ हो रहे हैं श्रोताओं, लेकिन तत्थों बाद मौसम दुए टाइम में कि सो खुलेगो, धूप काफ़ी तेज़ तरार धूप के सो धर्मशाला में इस समय लग रहा, लेकिन फिर भी मौसम थोड़ा करे कि सो ठंडा श्रोताओं 15-16 डिग्री वे आसपास के सो इस समय धर्मशाला रहा तापमान बन रहा है श्रोताओं। और न मेरी गल करूँ तो ह्यूमिडिटी जिस अंग्रेजी में बल दें तो 86% किया सो ह्यूमिडिटी हा श्रोताओं, नमी किया सो बन रही हा। तो ये हा इस समय रा श्रोताओं मौसम धर्मशाला रा, जो है तुस होगी बयां करो, जो है तुस होगी किया सो साझा करो हा। तो आइए जी कार्यक्रम में बहुत सारी जानकारी जो असु तुस होगी शेयर करनी और तुसु हुन्नी बहुत सारी जानकारी हिन, तो सब श्रोता ज़रूर कॉल कर सकते हैं जी 7081 8179 पर। नंबर अक मौके फिर हूँ शेयर करनो हाँ 7081 8179 पर, तो है सब श्रोता कॉल कर सकते हैं और अपना पसंदीदा गीत के श्रोताओं से हो सकते हैं, अपने क्षेत्र की जानकारी साझा कर सकते हैं। आइए श्रोताओं कार्यक्रम का आगाज कर दें। अच्छा

शोध एफ एम बैंड इक्यानवे दशमलव दो मेगाहर्ट्ज पर वे वेड़ी गुंजन धर्मशाला तो है ट्यून गुरु और इंदी अपने गप्पा कार्यक्रम बिल्कुल लाइव होने करते हैं। श्रोतों अपने वीडियो सेट में बहुत बहुत स्वागत है अगमुके फिर आई अगले जानकारी री और किए सतु सो लेकर चलते हैं श्रोतों और बहुत ही जल्द एक प्यारी दी स्टोरी की सो जरूर तुंदे वीडियो सेट में किए सो लेकर इंदे हैं। कांगड़ा जिला पुलिस भी श्रोतों मासिक कल्याण एवं अपराध समीक्षा बैठक जो है सो धर्मशाला में आयोजित हो रही थी। श्रोतों बैठक में पुलिस जवानों री कल्याण संबंधी जरूरत वे सोगे अपराध री स्थिति मामले भी जांच और डिटेक्शन मामले भी समीक्षा बछोरे। श्रोतों इस दौरान जिला भर में नशे अवैध खनन रे खिलाफ

युद्ध स्तर पर अभियान चलाए गुछुरा श्रोतों इसी लगातार जारी रखने वास्ते सख्त दिशा निर्देश के नसों जारी हुए इन श्रोतों तटीय पुराने मामले में 14 उद्घोषित अपराधी हिफाजत में किया सोल्यू रहे इन श्रोतों जबकि अब अन्य जो लंबित मामले पर भी सख्त कार्रवाई वे निर्देश के नसों पुलिस कप्तान कांगड़ा की सो जारी करी दिते इन श्रोतों तशतों एसपी कांगड़ा कुलभूषण वर्मा दसुआ की ब्यास नदी क्षेत्र लंबा गांव जयसिंहपुर और लंज क्षेत्र तो मिलने वाली अवैध खनन री शिकायत पर पुलिस री औरतों की ऐसो कार्रवाई अब चुगड़ देहा और अपराध नियंत्रण रहसोगी आगामी पर्यटक सीजन में स्थानीय मनु और पर्यटक जो बेहतर सुरक्षा तथा सुचारू यातायात व्यवस्था उपलब्ध करवाना जिला पुलिस री प्राथमिकता किया सो रहने हाँ श्रोतों तो सब हूँ कर देने इस समय FM बैंड 91.2 MHz पर रेडियो गुंजन धर्मशाला और आऊँ सचिन कपूर हा तो आइए कार्यक्रम जो आगो बढ़ेंदे इन श्रोतों और बिल्कुल अग प्यारी दी स्टोरी तुसु अगो है ज़रूर किया सो हमेशा लेकर इन दिन श्रोतों और कोशिश कर दें कि कुछ एक मोटिवेशन किया सो इन श्रोता जो जरूर मुड़ेगा छता हा स्टोरी तो है ना सो स्टोरी तुस तो कह जरूर पहुँच ले बहरहाल जी तो है कॉल कर सकते हैं 7081 8 1 7 0 9 1 पर नंबर अक मुके फिर हम शेयर कर लो हाँ 7081 8 1 7 0 9 1 पर तो है सब श्रोता कॉल कर सकते हैं बहरहाल लेके चलते तू सब भी जो इस इं गीत तारी कनारी

शुद्ध एफ एम बैंड के अनुद शामला दुई मेगा हर्ट्स पर रेडी गुंजन धर्मशाला तो है सभी ट्यून कर रो और कार्यक्रम हिंदी अपनी गपा गया ना सो चल रही हैं शतंतन दे वीडियो सेट में ताई प्यारी दे स्टोरी रा वक्त किया सो जरूर पूछेगो हा शो तो लेकिन हाँ लेकिन लेकिन स्टोरी शो तो फेसबुक रे जरिए भी है सकते हैं मेरा फेसबुक पेज है सचिन कपूर करी करे स्टोरी है फेसबुक रे जरिए कि तड़ी भी पंदन और गुंजन वीडियो गुंजन वे पेज में भी किया तो है स्टोरी के ना सो हेरी सकते हैं शो तो है ना तड़ी भी है पाने की कोशिश कर दें और जानकारी साझा करने रही तथियाँ में किया सो इनकी भरपूर कोशिश किया शो तो सो रंदे ये जी इस गीत तो बात की सो स्टोरी तू हो गया है साझा कर दे और इस गीत तो पहले तू दसना चंद कि हत्या के मामले में दोषी रोहित जो कि सो उम्र कैद और 25,000 के सो जुर्माना जी बिल्कुल शतो पुलिस थाना क्षेत्र में दर्ज हत्या के मामले में अदालत है कि सो रोहित कुमार 25 जो दोष करार दिता है शतो उम्र कैद रे सजा के सो सुनाई है अदालत है दोषी पर कि सो 25,000 रुपये रा जुर्माना भी लगाओ शतो जुर्माना अदा ना करने की स्थिति में दोषी जो 6 महीने भी अतिरिक्त कठोर कारावास भी सजा किया सो भुगतना पैने है ये फैसला धीरू भगीरथ ठाकुर री अदालत में किया सो हुना हुआ शोतों मामला पालमपुर पुलिस थाने में संख्या 8/2024 रे तहत भारतीय दंड संहिता की धारा 302 में दर्ज किया सो बछूरा थू शोतों मामले की सुनवाई रे दौरान प्रस्तुत गवाह और दस्तावेज संशय के आधार पर अदालत है कि सो रोहित कुमार पुत्र राजकुमार निवासी गाँव एवं डाकघर भाजू डाक स्टेशन बाबरी तहसील एवं जिला शामली उत्तर प्रदेश जो हत्या रे मामले में दोषी करार किया सो दिता शोतों अदालत द्वारा सुनाई गई सजा के अनुसार रोहित जो उम्र कैद तथा 25,000 जुर्माने री सजा के सो भोया शोतों दोषी द्वारा जुर्माने भी वाशी जमा ना करवाने पर किया इसी अदालत ना करवाने पर किया सो इसी और भी सजा किया सो सेरी बड़े गाने हैं शोतों है ना और तई है कि बुरे कर्मा रा फल किया सो अक्सर बुरा ही रहता है शोतों तो चलिए ऐसे विशेष प्यारे दे गीतरा आनंद किया चेरी री आवाज माँ किया शोतों सो लंदे हिन और इतों बाद प्यारी दे स्टोरी है तुंदे वीडियो सेट माँ किया सो जरूर ब्रॉडकास्ट कर दे इन शोतों बनी रही है जुड़ी रही आज से सचिन कपूर सोगे गूंज अपने बन रही और गूंज तो ये सब भी प्यारे प्यारे श्रोता रही जनाब जरूर कॉल कर सकते हैं नंबर में तो वो कि 10-708-8709 पर तो है सब श्रोता कॉल कर सकते हैं बहरहाल आइया इस गीतर आनंद के सुन लें श्रोता।

तो श्रोताओं तो हुणो ये प्यारे दे गीत तुंदे वेडियो सेट में वेड़ी गुंजन धर्मशाला मंच आऊँ सचिन कपूर के सो बिल्कुल हाजिर है जनाब इंदी अपनी गप्पा ले गई। चलिए कार्यक्रम जो हगो बढ़न और लेके चल दे तू सभी जो कार्यक्रम मंच ऐसा प्यारी दे स्टोरी री किनारी। जी बिल्कुल श्रोताओं स्टोरी की सुबह बेहद ही प्यारी और प्यारी भी आशोतों और सोगी सोगी उड़ने आड़े भी आ। जी बिल्कुल कि अस वो कहने किया सो बढ़िया तरीके हो किया सो शब्द रहा चयन करना चाहता आशोतों स्टोरी रे माध्यम तो है तो सो हुन दे हिन कोशिश कर दे हिन। नमस्कार श्रोतों ता हक मौके फिर तुंदा सभी रा बहुत बहुत स्वागत है हार्दिक अभिनंदन हाँ। ये प्यारी दे स्टोरी है लेकर फिर हाजिर हुए तुंदे सभी रे रेडियो सेट में वेड़ी गुंजन धर्मशाला मंच तैया स्टोरी री और चल रहे हैं। अगर बात जी माँ अगर राजा बुंदा तो श्रोतों और तस राजा जो किया सो सपने जानने रा बड़ा उत्साह रहता था और सो अपने जो सपना तस यू पूरा बुंदा था ना ठेरा अर्थ जानने रा किया सो बड़ा उत्साह रहता था। तो तिनी अपने राजमहल में किया सो विशेषज्ञ रख रहे थे श्रोतों हर एक जी हाँ सपने वास्ते किया जो भी तस यू सपना पे हुआ ठेरा क्या फैक्ट आ सीरी लाइफ में ठेरे वास्ते तिनी है किया सो विशेषज्ञ रख रही थी है ना। तो सो दस दे थी कि वाजन आज तुसु ये सपना पे होता ठेरा ये मतलब आज ये सपना था ठेरा ये मतलब आ अगदिन तसी ये सपना पे हो कि सेरे सब दंद के ना सो टूट गया ना और हगुर आके दंद किया सो रे हुआ बस जो सेरे राज्य महल में थी है विशेषज्ञ तिन्यों इस सपने रा अर्थ किया सो समझना तो तिन्हें कसकी हो रही राज्य थों किया सो विशेषज्ञ मंगाओ है ना। और सेरा बड़ा आदर सत्कार हुआ बड़ा तसी वो इन्विटेशन कार्ड गुछूरा होता तस हिसाबों की सेरा आदर सत्कार हुआ तस हिसाबों की तसी वो मान सम्मान मोड़ो कसकी रे घर है कसकी व्यवाज महल में सोगो तो तस प्रकार सोगे किया सो तसी वो आदर सत्कार मान सम्मान इज्जत सो सब कुछ भविष्य तो। और तसी यूँ पूछेगो कि भाई मुंजो ये सपना प्यूरा कि मेरे सब दंद गए सो टूट गए और केवल आख दंद किया सो बच हुआ ठेरा गया अर्थ बुआ ठेरा गया अर्थ मेरे सपने रा। तो तिनिए विद्वान ने किया सो पट बली था बोलो सिंपल अर्थ था बोलो कि तेरे परिवार अंदर किया सो सब भी मरेगा और तुद तो जिंदे रहना हा। आवाज आकदम आग बबूल आकदम क्रोध राजे जो कि एक बल्लू करता मेरे परिवार अरे बारे कि एक बल्लू करता हाँ मेरे परिवार अरे बारे हाँ ये अविशेषज्ञ भुला तो अपनी जगह भुला ये विद्वान भुला तो अपनी जगह भुला इसी हबजो बंदे किया सो बनंदा हा। राजा लियो और तस विशेषज्ञ जो तस बुद्ध

जी भी जो किया सो तस समय किया, सो हुक्म दे करे बंदी बनाई दिता और ऐलान करी था कि जो मुंजो इस सपने रा अर्थ दसला तस्यों सोना चांदी भरे करे किया, सो दिल्ला बोरियां पाई करे पूरे राज महल में किया, सो आस पड़ोस में भी आकेया, सो हाहाकार मच गई कि तिया बुना एक अक्थों वक विशेषज्ञ किया, सो अक्थों वक विद्वान किया, सो आशतों अक बड़ा ही कम आयुरा विद्वान आ। और तिनिया दसो कि जनाब इस सपना होने करता हूँ बड़ा प्रसन्न हुआ हा, और इस सपने का अर्थ था सीधा सीधा कि तुसु बहुत साल की आसो अपने वाज महल में के आसो राज करना हा, तो काफ़ी लंबे समय तक किया सो अपने वाज महल में किया सो राज करना है और शासन करना है। और तुंदे परिवार में अक तो है न जिन्या इतना लंबा किया सो राज भोगना है, इतना लंबे समय तक किया सो राजा रहना है, पूरे परिवार में अक सिर्फ तो है ही ए हुने करे राजा किया सो प्रसन्न हुआ, बहुत खुश हुआ, अत्यधिक खुश हुआ और तत्थों बाद किया तस्यो सो सोने चांदी रा बोरा भरे करे के सो दीता। अबे नौजवान जो दब्बू थो, जो विद्वान थो, ये भी विद्वान थो है ना, ये चलो तस कनारी थो और तड़ी जिला माके सो विद्वान थो तो तिनिये पूछो कि तई ऐसा कहते सी था कि भाई तो जो ये सब कुछ मुड़ेगा और मुंजो जेल मुड़े गया, तो तिनिये बल्लू हल्के ने बच्चे की सब खेल आ रहा, सब खेल किया सो शब्दा रहा, बल्लू मैं भी सोआ जो तो है बल्लू तो, लेकिन शब्दा शब्दा रा फर्क आ, बलने रा फर्क आ, सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स रा फर्क आ। बल्लू तो मैं भी है या कि लंबे समय तक किया सो राजे राज करना हा, लंबे समय तक किया सो शासन करना हा, और तू है आक लोते राजा हिन जस जस किया सो अपने परिवार में इतना लंबा शासन करना हा राज्य मंच, लेकिन तो है तो सीधा सटीक बलिता कि तेरे परिवार में आ गया सो सब भी मरेगा ना और तुद जिंदा रहना, ता सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स किया श्रोतों सो बहुत मायने रख दिया, बलने रहा तरीका किया सो बहुत मायने रखता है श्रोतों, बलना तो है शायद त्राई थो दो या त्राई साल री उम्र में किया सो बलना है सीखी गंदा है, लेकिन कहने बलना कसेरे सामने बलना कितना गरीब बलना हाँ ये सीखता सीखता किया सो तय उम्र गुजरे गंदे हा श्रोतों। सो अपनी लाइफ में किया सो सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स किया सो जरूर रखना कि कहने बलना कसेरे सामने बलना और कितना करे बलना हा, इज्जत बने भी रहने हा और मान सम्मान भी बने रहना हा श्रोतों। मुलदन फिर अगली स्टोरी मंच, नमस्ते, आऊँ तुंदा अपना आरजे सचिन कपूर हा।

0: শ্রোতা এফএম ব্যান্ড 91.2 মেগাহার্টজ পর রেডিও গুঞ্জন ধর্মশালা তো হ্যায় সবি টিউন কো রোর কুছ এক টেকনিকল ইস্যু তো ঠেরি বজাও শ্রোতো হ্যায় তো সো কি কানেক্ট কে সো না বুঝি পাও কর দেতি হ্যায় জি হ্যাঁ টেকনিকল ইস্যু কে সো খতম হুয়া তে কে সো ইন্দে শ্রোতা কেন সো আসু হোগে বিলকুল জুড়ে চুক রহিন অর জুড়ে গিয়া হিন हिंदे पहले श्रोतन चली आवे जितने भी मिनटा बची सब श्रोता वास्ते सु के सो कुर्बान करनी हिन और पूछना श्रोता था कि अचकनी जो है स्टोरी साझा करे हा सो स्टोरी रा क्या अर्थ रे हुआ क्या सो फीडबैक किया सो रे होगा ता चलिया इंदे श्रोतागण असू के कनेक्टेड हिन और पूछी लेंदे इन श्रोतों की नमस्ते जी
1: नमस्ते जी
0: ठीक ठाक राजी बाजी
1: हाँ जी ठीक ठाक
0: अच्छा जी और करे लग रहे
1: बस लग रहे दा बढ़ना
0: अच्छा
1: हाँ जी
0: अच्छा घा बढ़ने रहा काम के सो चली भी रहा है ना जी
1: हाँ जी दाना होना तो
0: अच्छा कौन बल्लों देन और कड़ी था बल्लों देन
1: आओ बल्लों देन मैक लोड गन था
0: अच्छा एक मिनट श्रोतों वेड़ी गुंजन धर्मशाला और आऊँ सचिन कपूर तुंद अपना आर जे वीडियो जो कि हाई आइंद है श्रोतागण कनेक्टेड कहने सो बुझ गया ना नमस्ते जी
1: नमस्ते जी
0: ठीक ठाक राजी बाजी सभी पहले अपना नाम दस ही दिया
1: मेरा नाम मोनिका देवी
0: मोनिका जी क्या कर दें तो है
1: आओ तो कुछ भी ना बस खेती बाड़ी का काम कर
0: अच्छा खेती बाड़ी का काम कर दें हाउस वाइफ ने तो है
1: हाँ जी
0: अच्छा तो बहुत मोटी गल हाउस वाइफ भूना भी ना
1: जी
0: अच्छा मोनिका जी क्या फरमाइश लेकर आए क्या होना चाहते हैं क्या बात है बड़ा प्यारा गीत है अम्मा कहने बापू मेरे कम्मा वे लोभी है ना जी तो मोनिका जी एक स्टोरी ऐसे हुनाने रे प्रयास किए सो करो किदे लगो लगे तू सो सो स्टोरी
1: बहुत बढ़िया रोज
0: हुंदे हां जी
1: आओ तो रोज हुंदे
0: अच्छा रोज ही हुंदे ना
1: हां जी
0: चलिए जी किदे लगदा मोनिका जी कार्यक्रम तू सोए प्रयास करते रहते अपनी ओर तो लगातार
1: बहुत बढ़िया
0: है इंदा इंदा यूथ के सो जुड़ाव रखा है ना पेरेंट्स होगी सियाने होगी बुजुर्ग होगी क्योंकि आजकल जमाना इंस्टाग्राम फेसबुक रा व्हाट्सएप रा ट्विटर रा था इंदे इंदे बुजुर्ग हो गए कि सो मेल मिलाप घट बच गंदा यूथ रहा ना जी फोना है ज्यादातर लगुरे बंदे न
1: हाँ जी
0: जी ठीक है मोनिका जी इजाजत दिया जरूर तुंदी फरमाइश पूरी कर ले
1: थैंक
0: यू सो मच एफएम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडी गुंजन धर्मशाला तो है सभी ट्यून कर रहा और आओ ना चीज सचिन कपूर तुंदे वीडियो सेट में आइए जी अगले इंदे श्रोता सो के कनेक्टेड हैं नमस्ते जी नमस्कार जी नमस्कार ठीक ठाक ना
2: ठीक अंडी तो वाला तो ठीक है ना सतन गोर
0: जी है ठीक ने जी है भी ठीक ने बाजी बाजी हैं कौन बलून देन और कड़ी था बलून
2: देन घरवार सब राजी
0: घरवार राजी बाजी हां
2: मैं श्रीराम बोल बलो का कचहरी था धंग था
0: अच्छा धर्मशाला कचहरी था बलून देन ठीक ठाक ने लच्छी राम जी तो है
2: ठीक अंडी तो वाला तो ठीक है
0: ना अच्छा चलिए जी लच्छी राम जी कदे लगी तू सो स्टोरी
2: बढ़िया स्टोरी लगी जी राजी आ गई बढ़िया लगी बाकी और भी जानकारी वगैरह ठीक लगी
0: अच्छा
2: हां जी हां जी
0: चलिए ठीक है लच्छी राम जी है कोशिश कर दे वंदन की जानकारी के ना सो जरूर पूछना इन दे श्रोता तक और अक प्यारी दे स्टोरी रख सर है प्रयास कर देन की कुछ ना कुछ किया सो सिखाई करेगा अच्छा सो है ना ठीक है लच्छी राम जी धन्यवाद फरमाइश शरा और जरूर पूरा कर ले जी कौन दिन है होने वाला जी
2: राजे सर में है कलाकार कोई क्या नाम दे रहे
0: हां जी अच्छा चलिए ठीक है जी, जरूर होना ले है ना जी। लची राम जी धन्यवाद जुड़ने वास्ते। चलिए श्रोतो कार्यक्रम जो आगू बढ़ देन और अगले श्रोता जो की कनेक्ट कर देन। नमस्ते जी, नमस्कार जी, नमस्कार,
3: क्या हाल चाल ने?
0: बहुत बढ़िया जी, तो दसा क्या हाल चाल ने? अच्छा जी, किधर लगी तुसु आज की स्टोरी?
3: स्टोरी तो यार ये तो फर्क होता है इंसान का, वो का स्क्रिप्ट के बल पर क्लिक के बल।
0: अच्छा
3: हां जी, समझ अपने अपने की मतलब से क्या की
0: जी
3: लेकिन अपना अपना जमा स्क्रिप्ट के बल।
0: हाँ बिल्कुल, शब्द रहा चयन तो ठीक बोलना चाहिए है ना
3: जी। जी
0: शब्द ही तो मेन मोटिव बुंदे इंसान रा बनने वे तरीका ही था ठीक बोलना चाहिए। सो ठीक हुआ तो सब कुछ ठीक है, बड़े रिश्ते क्या ना, सो बनने की वजह तो दूर बुंदे ना और टूटे गन देन जी।
3: बनने की वजह नजदीकी
0: भी बुंदी। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है जी, इजाजत दिया समय रहा बाबा, थोड़ा कहीं टेक्निकल इशू तो तेरी वजह में कनेक्ट ना हो सके तू होगी। ठीक है जी, नमस्ते। चलिए श्रोताओं कार्यक्रम मंच थोड़ा करिए और आगू बढ़ दें, कुछ टेक्निकल इशू मैं बोलूँ ना, कोई भी चीज़ की सुखने बिकी है सो इस सकते हैं, कोई भी टेक्निकल चीज़ बुझेगी या कुछ भी ठीक ठाक ना
4: जी? बढ़िया।
0: अच्छा
4: मैं गाना सुनना था।
0: हाँ जी वंदना जी, कौन देना? ठीक है वंदना जी, समय रहा थोड़ा करे अभाव अगर लगो समय तो जरूर होने ले। ठीक है जी, धन्यवाद,
4: थैंक यू
0: जी। ते अम्मा कने बापू मेरे ओंदा ता जांदा रांझू डंगियां बोंदा, मैकलोडगंज थों ए फरमाइशा, और इस फरमाइशा जो कि सो है पूरी जरूर करते हैं। बनी रहे तो सब आरजे सचिन कपूर सो की बाकी फरमाइशा भी इनता तैयारी कोशिश है जरूर कर ले, समय रहा थोड़ा करे अभाव है। बहुत सारे श्रोता कॉल करू कर देन, जाहिर दे ही गल कि चूर वजह थो कि सो लगातार कॉल करू कर दे बुने, लेकिन कुछ टेक्निकल इशू की वजह थो तो है सो के कनेक्ट के ना सो ना पूछे पाए, तो कोई ना जी हर दिन आख दिन ना बंदा ना ताई ता ब्याग बंदे शो तो ताई ता सो दिन मुके गंदा, सो तारीख मुके गंदे या सो साल मुके गंदा। अगर है पुरानी गल्ला जो लेकर ही किया शो तो सो बेखिर है चेंजेस लाइफ रा असूल कि चेंज करना पैंदा हा। अज अगर तू होगी बुरा वक्त था तो वक्त भी किया सो चेंज बुझगाना शो तो अच्छा वक्त किया सोचा लेना हाँ बरहाल आइया हूं दिन इस कीता जो

श्रोतो एफ एम ब्यान्ड 91.2 मेगा हर्ट्ज पर वेडी गुन्जन धर्मशाला तो है सभी ट्यून को रोर कार्यक्रम सचिन कपूर सोगे हुनो कर दे थी जो कि अब इजाज़त दिया। थैंक यू सो मच श्रोतो कि तो है इतना इतने ज़्यादा कॉल्स कैंसो करो कर दें, लेकिन फरमाइश एकदम सभी री पूरी करना कि असो असंभव है मुझे वास्ते श्रोतो। और फिलहाल तो सुथाऊँ ले लेनो इजाज़त समय पूछेगा और समय री इज्जत करना समेरा मान करना कि सो बहुत ज़रूरी बंदा शोतों का जो कि समय बड़ा बलवान है शोतों। समय कदी भी किया सो पलटे सकदा बदले सकदा है शोतों। सो समय री रिस्पेक्ट ज़रूर करा। फिलहाल गंदे गंदे एक फरमाइश अमन भरमोरी रहे गीत है शोतों केलंग नाटी गीतारा टाइटल है और टिकरी टंग थोंकिया सो सुनील उफ ढेलूरी फरमाइश माँ ये गीत है शोतों। और अमित भाई ही नींद है बड़े अच्छे बड़े प्यारे भाई ने तिया डेडिकेट करो अपनी औरतों एक गीत तिया जो ढेलू भाई साहब जो ता चलिए श्रोतो सचिन कपूर ले लेनो इजाज़त। हंसते रहे मुस्कुराते रहे और रेडी गुंजन मारजे सचिन कपूर जो कि असोए हुंदे रहे और अपना आशीर्वाद अपना प्यार इस नाचीज पर इं रखा श्रोतो। फेसबुक रे जरिए भी मिलते रहो करा सचिन कपूर फेसबुक आईडी है मेरी श्रोतो। कुछ क्लिप्स तती अंदर के असो है पाओ करते हैं श्रोतो। फिलहाल माँ बाप री रिस्पेक्ट करा बुजुर्ग री रिस्पेक्ट करा श्रोतो और अधिक तो अधिक समय के असो अपने माँ बाप जो ज़रूर दिया। नमस्ते धर्मशाला।

नमस्कार दोस्तों, रेडियो गुंजन धर्मशाला से अब आप सभी सुनेंगे आज का ये न्यूज बुलेटिन। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों की हेडलाइंस पे। पीएम संकल्प पोर्टल के हेल्पलाइन खातों को हिम एक्सेस एसएसओ से जोड़ना अनिवार्य, एचएएस सहित अन्य पदों के लिए अब 15 तक करें ऑनलाइन आवेदन, जीएसटी में बड़े बदलाव की तैयारी। हर साल 1 अप्रैल से लागू होंगी नई दरें। 17 दिन में रिफंड का प्रस्ताव हिम केयर में अब मिलेगा। 10 लाख का स्वास्थ्य कवच धर्मशाला और रामपुर में बनेंगे वन्य जीव अनुसंधान फील्ड सेंटर। एम्स बिलासपुर में अगले साल से मिलेंगी बोन मैरो व लिवर ट्रांसप्लांट की सुविधाएं। हिमाचल प्रदेश के डिग्री व संस्कृत कॉलेजों, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग सोलन और सरकारी शिक्षा महाविद्यालय धर्मशाला के अधिकारियों के लिए सीएम संकल्प 1100 हेल्पलाइन खातों को तत्काल हिम एक्सेस सिंगल साइन ऑन एसएसओ पोर्टल पर माइग्रेट करना अनिवार्य करने के बारे में है। उच्चतर शिक्षा निदेशालय ने सभी संस्थान प्रमुखों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने अधिकारियों के हेल्पलाइन खातों को तुरंत ट्रांसफर करवाएं और उन्हें पूरी तरह एक्टिव रखें ताकि पोर्टल पर आने वाली जन शिकायतों का समय पर निपटारा किया जा सके। डिजिटल प्रौद्योगिकी एवं शासन विभाग के अनुसार पहले आदेश देने के बावजूद अभी भी 79 कॉलेजों ने नियमों का पालन नहीं किया है, जिसके कारण ये सख्त निर्देश जारी किया गया है। किसी भी तकनीकी समस्या के लिए अधिकारी हेल्प डेस्क या नोडल अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2026 के तहत एचएएस के अलावा विभिन्न विभागों में पदों को भरने के लिए ऑनलाइन आवेदन की तिथि अब 15 अक्टूबर तक बढ़ा दी है। भर्ती प्रक्रिया में 13 और पद शामिल किए जाने के बाद हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग ने ऑनलाइन पोर्टल फिर खोल दिया है। इस भर्ती प्रक्रिया के तहत अब असिस्टेंट कमिश्नर स्टेट टैक्स एंड एक्साइज के 13 पद शामिल किए गए हैं। इस संबंध में मंगलवार को आयोग ने सूचना जारी की। इससे पहले बीते अगस्त माह में हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2026 के तहत कार्मिक विभाग में एचएएस के 4 पद, ग्रामीण विकास विभाग में ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के 10 पद, वित्त विभाग कोषागार में जिला ट्रेजरी ऑफिसर का 1 पद, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग में जिला नियंत्रक का 1 पद और राजस्व विभाग में तहसीलदार के 6 पदों के लिए आवेदन मांगे थे। असिस्टेंट कमिश्नर स्टेट टैक्स एंड एक्साइज के 13 पद शामिल होने से अब कुल 35 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया अमल में लाई जाएगी। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग ने स्वास्थ्य शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल जीआई सर्जरी सुपर स्पेशलिटी का 1 पद भरने के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी व्यवस्था को अधिक सरल और कारोबार के अनुकूल बनाने के लिए सरकार ने प्रक्रिया में कई अहम बदलावों की दिशा में कदम बढ़ाया है। प्रस्तावित व्यवस्था के तहत जीएसटी दरों में बदलाव हर साल 1 अप्रैल से लागू किए जाएंगे। इससे कारोबारियों और कंपनियों को पूरे वित्त वर्ष के लिए टैक्स दरों को लेकर बेहतर स्पष्टता मिल सकेगी। इसके साथ ही जीएसटी रिफंड की प्रक्रिया को तेज करने की भी तैयारी है। पात्र मामलों में अधिकतम 17 दिनों के भीतर रिफंड जारी करने की व्यवस्था प्रस्तावित है। सरकार का मानना है कि इससे कारोबारियों की वर्किंग कैपिटल से जुड़ी समस्या कम होगी और टैक्स व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ेगी। सरकार जल्द ही इनवॉइस मैचिंग सॉफ्टवेयर लॉन्च करने की तैयारी में है। इसके जरिए खरीद और बिक्री से जुड़े इनवॉइस के बीच होने वाले अंतर को पहले ही पहचानने में मदद मिलेगी। इससे इनवॉइस मिसमैच के कारण जारी होने वाले शो कॉज नोटिस की संख्या कम होने की उम्मीद है। सरकार के मुताबिक फिलहाल 61% जीएसटी रजिस्ट्रेशन 34 मिनट से कम समय में पूरे हो रहे हैं। नई प्रक्रिया के जरिए रजिस्ट्रेशन को और आसान और तेज बनाने पर जोर दिया जा रहा है। डायरेक्ट टैक्स सिस्टम की तर्ज पर जीएसटी प्रशासन को भी फेसलेस बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है। शुरुआती चरण में यह व्यवस्था केवल फी जीएसटी से जुड़े मामलों में लागू किए जाने की योजना है। इसका उद्देश्य अधिकारियों और करदाताओं के बीच प्रत्यक्ष संपर्क कम करके प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाना है। जीएसटी काउंसिल की 57वीं बैठक की तारीख में बदलाव किया गया है। अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण अब यह बैठक गुरुवार 8 अक्टूबर को नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम के समिट रूम में सुबह 11 बजे से आयोजित होगी। प्रस्तावित बदलावों में खरीदारों के हितों का भी ध्यान रखा गया है। यदि किसी मामले में विक्रेता जीएसटी का भुगतान नहीं करता है तो केवल इस वजह से खरीदार का रिफंड अटकने से बचाने की व्यवस्था की जाएगी। इससे नियमों का पालन करने वाले कारोबारियों को राहत मिलने की उम्मीद है।
हिमाचल सरकार की प्रमुख स्वास्थ्य सुरक्षा योजना हिमकेयर अब नए बीमा मॉडल और बढ़े हुए स्वास्थ्य कवर के साथ सामने आने जा रही है। सरकार ने योजना के तहत प्रति परिवार सालाना स्वास्थ्य सुरक्षा कवच को 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपए करने का प्रस्ताव तैयार किया है। नए मॉडल में 5 लाख रुपए का बेसिक कवर और 5 लाख रुपए का टॉपअप कवर होगा। इससे प्रदेश के करीब 10 लाख परिवारों को स्वास्थ्य सुरक्षा के दायरे में लाने का लक्ष्य रखा गया है। नई व्यवस्था में केवल स्वास्थ्य कवर ही नहीं बढ़ेगा बल्कि हिमकेयर के संचालन और निगरानी का तरीका भी बदलेगा। फर्जी अस्पतालों, फर्जी बिलिंग, डुप्लीकेट क्लेम और सरकारी धन के दुरुपयोग पर रोक लगाने के लिए बीमा कंपनी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI और मशीन लर्निंग आधारित डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम अनिवार्य किया गया है।

0: कोयम्बटूर स्थित सलीम अली सेंटर फॉर ऑर्निथोलॉजी एंड नेचुरल हिस्ट्री फैकॉन की टीमें इस काम के लिए धर्मशाला और शिमला जिला में रामपुर के सराहा में फील्ड सेंटर स्थापित करेंगी। हालांकि पहले चंबा के कुकटी में सेंटर बनाने की योजना थी, लेकिन फिलहाल इसे धर्मशाला में ही स्थापित करने की अब योजना है। संबंधित क्षेत्रों में भालू की मौजूदगी और मानव भालू संघर्ष की घटनाएं सामने आती रही हैं। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के एक प्रोजेक्ट के तहत हिमाचल और उत्तराखंड में मानव वन्यजीव संघर्ष को लेकर रिसर्च की जानी है। इसके लिए फैकॉन के विशेषज्ञों की टीम दोनों राज्यों का दौरा कर चुकी है। अध्ययन के दौरान टीमों की ओर से उन क्षेत्रों का मौके पर जाकर आकलन किया जाएगा जहां इंसानों और वन्य जीवों के बीच लगातार संघर्ष हो रहा है। इसमें भालू और तेंदुए के हमले, फसलों को होने वाला नुकसान और स्थानीय लोगों की आजीविका पर पड़ने वाले असर की जानकारी जुटाई जाएगी। इसके लिए घटनाओं का जियो टैग डाटा भी तैयार किया जाएगा। रामपुर के सराहा में भी फील्ड सेंटर स्थापित कर भालू से संबंधित घटनाओं का रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा। कांगड़ा, हमीरपुर और बिलासपुर जैसे जिलों में मानव तेंदुआ संघर्ष की स्थिति का आकलन किया जाएगा। मानव और वन्य जीवों के बीच बढ़ते टकराव के पीछे कृषि भूमि का विस्तार, शहरीकरण और सड़कों का निर्माण भी प्रमुख कारण बताए गए हैं। इन गतिविधियों से वन्य जीवों के प्राकृतिक आवास में कमी आने की बात अध्ययन में सामने आई है। ऐसे में वन्यजीव भोजन और सुरक्षित स्थान की तलाश में मानव बस्तियों के नज़दीक पहुँच रहे हैं। मानव वन्यजीव संघर्ष के इस नए अध्ययन में शुरुआती चरण में 10 वन मंडलों को शामिल किया गया है। इन वन मंडलों में उन क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के लोगों को अब गंभीर और जटिल बीमारियों के इलाज के लिए देश के बड़े महानगरों का रुख नहीं करना पड़ेगा। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स बिलासपुर में स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में नई सुविधाएं शुरू हो रही हैं। संस्थान में आगामी वर्ष से बोन मैरो ट्रांसप्लांट, लिवर ट्रांसप्लांट तथा कैंसर के अत्याधुनिक उपचार के लिए थेरानोस्टिक पद्धति की शुरुआत की जाएगी। इसके साथ ही प्रदेश के ग्रामीण व दुर्गम इलाकों में मातृ एवं शिशु मृत्यु दर पर अंकुश लगाने के लिए सभी सुविधाओं के युक्त मातृ शिशु केंद्र की स्थापना की जा रही है। एम्स बिलासपुर में शुरू होने जा रही थेरानोस्टिक पद्धति कैंसर जैसी जानलेवा बीमारियों के खिलाफ जंग में एक मील का पत्थर साबित होगी। यह अस्पताल का एक ऐसा अत्याधुनिक और विशिष्ट विभाग होगा जहां एक ही छत के नीचे कैंसर का सटीक निदान और लक्षित उपचार एक साथ किया जा सकेगा। इस तकनीक की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह शरीर की स्वस्थ कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाए बिना केवल कैंसर ग्रस्त कोशिकाओं को चिन्हित कर उन्हें नष्ट करने में सक्षम होती है। इससे मरीजों को कम समय में अधिक प्रभावी और सुरक्षित इलाज मिल सकेगा। एम्स प्रबंधन द्वारा स्थापित किए जा रहे मातृ शिशु केंद्र में एक एडवांस लेवल टेलीमेडिसिन केयर सेंटर भी तैयार किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य हिमाचल के सुदूर पहाड़ी और ग्रामीण क्षेत्रों में गर्भवती महिलाओं और नवजात की मृत्यु दर 91.2
1: मेगाहर्ट्ज़ पर आप सभी ट्यून इन हैं आपके अपने रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। आपकी रेडियो दोस्त सुषमा हाजिर हो चुकी है कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने लेकर। तो श्रोताओं, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस प्यारे से गीत के साथ।

श्रोताओं, कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने में सुना आपने ये गीत, और इस गीत के बाद हम आपको लिए चलेंगे कार्यक्रम के अगले गीत की ओर।

श्रोताओं, इस समय आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने, आपकी अपनी रेडियो दोस्त सुषमा के साथ। तो श्रोताओं, अपने इस सफर को फिर से आगे बढ़ाते हैं और लेते हैं कार्यक्रम का अगला प्यारा सा नगमा।

आप सभी जुड़े हुए हैं 91.2 MHz पर आपके अपने रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने आपकी अपनी रेडियो दोस्त सुषमा के साथ। तो श्रोताओं चलें फिर आगे बढ़ें एक और तराने के साथ।

आज के इस कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने में मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त सुषमा। तो श्रोताओं, गीतों के इस सफर को यूं ही जारी रखते हैं और सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

श्रोताओं, कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने में सुना आपने ये गीत, और इस गीत के बाद हम आपको लिए चलेंगे कार्यक्रम के अगले गीत की ओर।

श्रोताओं, इस समय आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने, आपकी अपनी रेडियो दो सुषमा के साथ। तो श्रोताओं, अपने इस सफर को फिर से आगे बढ़ाते हैं और लेते हैं कार्यक्रम का अगला प्यारा सा नगमा।

0: सर मेरा फोन चोरी हो गया, आपका फोन दे दीजिए सर प्लीज, एक कॉल करना सर प्लीज सर।
1: अरे भाई मैं कुछ काम कर रहा हूँ,
0: एक कॉल करूँ सर पापा को बस सर प्लीज सर, फोन चोरी हो गया सर मेरा, मेरे को पापा को अर्जेंट कॉल करना है सर।
1: अच्छा ठीक है तुम कह रहे हो तो, लेकिन सिर्फ एक कॉल। हाँ
0: हाँ सर, थैंक यू सर। हेलो, हाँ पापा ये फोन चोरी हो गया मेरा, तो मैं एक जन के फोन से फोन किया हूँ। हाँ हाँ 1238 रुपये बस है मेरे पास अभी। हाँ ठीक है ना, ठीक है ये लीजिए सर आपका फोन, थैंक यू फोन करने देने के लिए, थैंक्स अ लॉट।
1: कोई बात नहीं, ठीक है। इतने पैसे कैसे कट?
0: हाँ 1238 रुपये बस है मेरे पास अभी।
1: कितने पैसे?
2: ये भी एक तरह का साइबर क्राइम है, तो इस सिचुएशन से बचने के लिए आप ये कर सकते हैं कि आप अपना फोन किसी भी अनजान व्यक्ति को देने से बचें, और अगर आप दे रहे हैं तो ये ध्यान रखें कि आप सामने रहकर उसे यूज करवाएं। तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए।
3: ले जा रहे ना तुम्हें पिक्चर, चलो बैठो बैठो।
4: बढ़िया,
3: फर्स्ट डे फर्स्ट शो, ऑनलाइन बुकिंग भी नहीं किया है, पूरे टाइम लाइन में धूप में खड़े थे। और पता कितना टाइम?
5: कितना टाइम?
3: अरे पूरे 2 घंटे।
5: अरे तुम्हारे टाइम के बारे में नहीं पूछ रहे हैं बुर्बक, इनके खांसी के बारे में पूछ रहा है।
6: खांसी ये तो 2 हफ्तों से हो रही है।
5: 2 हफ्ते? पिक्चर ले जाते हैं फर्स्ट डे फर्स्ट शो और खांसी को हो गए 2 हफ्ते, ये तो बहुत केयरलेस है। चलिए हमारे साथ
3: डॉक्टर। अरे आप तो बड़े सीरियस हो गए।
5: और नहीं तो क्या, 2 हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी होगा तो टीबी हो सकता है।
3: टीबी?
5: हाँ, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए, क्योंकि टीबी जो है
6: वो किसी को भी हो सकता है।
5: हाँ, और अगर हो गया तो बिना भूले पूरा कोर्स करिए और उसके बाद बेफिक्र हो जाइए, और नहीं किया ना तो इसका इलाज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे हीरो हीरा लाल।
3: चलो
5: 2 हफ्तों से ज्यादा खांसी, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए। टीबी हारेगा, देश जीतेगा।

0: तो याद रखिएगा, दुनिया गोल है, चीजें घूम कर आती है। आज किसी को मदद की जरूरत है, उसकी आंखें ढूंढ रही है कोई तो मेरी मदद कर दे, और आप मदद कर सकते हैं, फिर भी आप सामने से ये सोचते हुए जा रहे हैं हमें क्या, किसी दिन आपको भी मदद की जरूरत पड़ेगी, तब आपकी नजरें ढूंढ रही होगी कोई मेरी मदद कर दे, और सामने से लोग यही सोचते हुए जा रहे होंगे हमें क्या।
1: सारा जहां है जिसकी शरण में, नमन है उस माँ के चरणों में। साल का वो सबसे पावन समय आ रहा है जब माँ शक्ति हमारे जीवन में ढेरों खुशियाँ भरने के लिए आ रही हैं। आ रहे हैं आस्था, शक्ति और आनंद के 9 दिन। आप सभी को रेडियो गुंजन परिवार की ओर से नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। इस बार फिर से मनाइए भक्ति और मस्ती का ये त्योहार सिर्फ हमारे साथ। सुनते रहिए 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला। Stay tuned.

0: सड़ा हुआ आलू, सड़ा हुआ आलू निकला।
1: तुम
0: बहुत खूबसूरत लग रही हो, नया सूट पहने हैं क्या?

91.2 मेगाहर्ट्ज पर श्रोताओं, आप सभी ने ट्यून किया है आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला लेकर मैं हाजिर हो गई हूँ आपकी रेडियो दोस्त सुषमा। बिल्कुल श्रोताओं, समय 6 बजे का है और आप सभी जानते हैं शाम के जैसे ही 6 बजते हैं कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला लेकर हम हाजिर हो जाते हैं आपके लिए रेडियो गुंजन धर्मशाला के स्टूडियो से। तो श्रोताओं, सभी का करती हूँ स्वागत और साथ ही सभी श्रोताओं को सुषमा की प्यार भरी राम राम, नमस्कार और गुड इवनिंग। उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक ठाक होंगे और आप लोग इंतज़ार कर रहे होंगे कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला का। तो लीजिए, आपका इंतज़ार हमने कर दिया है अब ख़त्म, यानी कि हम पहुँच चुके हैं अब इस कार्यक्रम को लेकर, और 6 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक चलेगा ये कार्यक्रम। तो 2 घंटे के लिए अब मैं, यानी कि आपकी रेडियो दोस्त सुषमा, यहाँ से बिल्कुल भी हिलने वाली नहीं है। और आपसे भी उम्मीद करूँगी कि आप लोग अपने काम कीजिए लेकिन साथ में हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि कार्यक्रम की रौनक जो है वो आपके साथ है। श्रोताओं, आप सभी हमारे साथ हैं तो ही हम हैं। तो बिल्कुल श्रोताओं, और देखिए कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला जैसे ही आता है तो आप सभी अपने काम भी करते हैं और साथ ही साथ आपका मनोरंजन हम करवाते हैं प्यारे प्यारे गीतों के साथ, और आपको इंतज़ार रहता है गीतों का भी। साथ ही श्रोताओं, आपको बता दें 88.4 मेगाहर्ट्ज पर हमीरपुर के हटवाल की आवाज़ पर भी आप हमें सुन सकते हैं और सुन भी रहे होंगे। हमीरपुर के जितने भी श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं उन्हें भी सुषमा की प्यार भरी राम राम, गुड इवनिंग। और श्रोताओं, आपसे बस यही कहना चाहेंगे कि कार्यक्रम के साथ जुड़ जाइए, जो भी जुड़े हैं उनका धन्यवाद। और साथ में हम आपको बता दें कि इस समय हम लाइव भी हुए हैं आपके फेसबुक, रेडियो गुंजन धर्मशाला के फेसबुक पेज से, आप सभी हमें देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। जो दर्शक हमें देख रहे हैं फेसबुक लाइव से और साथ में सुन रहे हैं उनका भी हम स्वागत करते हैं इस कार्यक्रम में, और इस कार्यक्रम की रौनक ज़रूर हम बनाए रखेंगे, गीतों को हम बीच बीच में आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे, और साथ ही किस विषय पर आज बात होने वाली है उस विषय पर भी आएंगे। लेकिन हम अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं अपने उन श्रोताओं का जो अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं। तो जल्दी से जल्दी ट्यून कर लीजिए 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। श्रोताओं, रोज़ाना की तरह कार्यक्रम की शुरुआत हम करते हैं विचार के साथ, और कहते हैं ना कि जिस चीज़ की या किसी भी काम की शुरुआत अच्छे विचार के साथ हो तो उसका अंत भी भला ही होता है, अच्छा ही होता है। और आज का विचार हमें ये कहता है कि आशा चाहे कितनी भी कम हो निराशा से बेहतर ही होती है। बिल्कुल, आशा हमें बनाए रखनी चाहिए श्रोताओं। और कई बार लाइफ में ऐसा होता है कि कई बार हम कुछ सोचते हैं कि काश ऐसा हो जाए, और कोई भी काम हम सोचते हैं तो वो काम हो भी जाता है और उस समय हमें खुशी होती है कि हमारा वो काम हो गया। लेकिन साथ में ही सेकंड थॉट हमारे जो दिमाग में है वो चलती है कि काश हमने इसकी जगह कुछ और मांग लिया होता तो शायद वो भी मिल जाता। तो ये तो हुई बात ये कि हम जो चाहते हैं वो मिलने के बाद भी हमें खुशी नहीं है, तसल्ली नहीं है, हम ये सोचते हैं कि उससे भी बेटर मिले। ठीक है, बेटर मिलना भी अच्छी बात है, लेकिन जो मिला है उस

आ रहे हैं कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला में किशोर कुमार की आवाज़ में ये गीत है। हम चाहेंगे कि आप इस गीत को एंजॉय भी करें और साथ में गुनगुनाएं भी, ज़रूर आपको अच्छा लगेगा। तो लीजिए, पेश है आप सभी के रेडियो सेट पर ये प्यारा सा गीत, लीजिए सुनिए इस प्यारे से गीत को।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर श्रोताओं, आप सभी ने ट्यून किया है आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला। इस समय आप सभी सुन रहे हैं आपकी अपनी रेडियो दोस्त सुषमा के साथ। कार्यक्रम की शुरुआत हमने की इस प्यारे से गीत के साथ और उम्मीद करते हैं कि आपने इस गीत को एंजॉय किया होगा और साथ ही ज़रूर गुनगुनाया भी होगा। श्रोताओं, गीतों को अपनी लाइफ में शामिल ज़रूर कीजिए और अपनी लाइफ को और हसीन और रंगीन ज़रूर बनाइए, क्योंकि गीतों के साथ मिलकर हम अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छे से बिता सकते हैं और इन्जॉय

भी कर सकते हैं। कोई भी अच्छा पल क्यों ना हो, कोई भी बुरापन पल भी अगर हो, तो कहीं ना कहीं गीत हमारा सहारा बनते हैं। गीत हमें बहुत कुछ सिखाते हैं और साथ में हमें अकेलापन महसूस नहीं होने देते। इसलिए कहते हैं कि अगर आप अकेले भी हैं तो आप अपने आप को अकेले बिल्कुल मत समझिए, क्योंकि रेडियो एक ऐसा साथी है जो हमारे साथ हमेशा रहता है। और जब बात आती है रेडियो गुंजन धर्मशाला की, तो आप सभी जानते हैं कि ये हमेशा आपके साथ रहता है, आपका मनोरंजन करवाता है और आप तक पहुँचाता है बहुत सारी जानकारियाँ भी। तो श्रोताओं, आज कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं अपने बच्चों के बारे में। क्यों? क्योंकि श्रोताओं, ये समय ऐसा होता है कि शाम का समय है और हर कोई अपने घर पर इस समय होता है, चाहे वो पेरेंट्स हों चाहे वो बच्चे ही क्यों ना हो। सुबह के समय में हम ये कह सकते हैं कि हर कोई व्यस्त रहता है, अपने काम पर जाना है, बच्चों को स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, तो वो लोग हमारे कार्यक्रम नहीं सुन पाते हैं। लेकिन शाम का ये समय है, इस समय सभी अपने घर पर मौजूद रहते हैं, अपने छोटे मोटे काम करने के साथ साथ रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ जुड़े रहते हैं, हमारी बातों को भी सुनते हैं और साथ ही मनोरंजन करते हैं गीतों के साथ। तो आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो ये है कि क्या बच्चों को सुविधाओं के साथ साथ माता पिता का साथ और आशीर्वाद भी चाहिए, क्या हम उन्हें ये सब चीज़ें देते हैं। तो आज आपसे एक सवाल भी पूछना चाहती हूँ जिसका जवाब शायद हमें अपने घर के अंदर जाकर ही देना पड़ेगा। हम अपने बच्चों को सुविधाएं दे रहे हैं, लेकिन क्या उन्हें अपना समय, साथ और आशीर्वाद भी दे रहे हैं? ये सवाल है श्रोताओं आप सभी के लिए। आज हमारे बच्चों के पास बहुत कुछ है, अच्छा स्कूल है, अच्छे कपड़े हैं, खिलौने हैं, मोबाइल है, इंटरनेट है, पसंद का खाना है और ज़रूरत की हर वो चीज़ है जो उन्हें चाहिए। लेकिन इन सब के बीच एक चीज़ कहीं कम तो नहीं हो रही, ये हमें सोचना पड़ेगा। बिल्कुल श्रोताओं, आज के समय की अगर हम बात करें तो चाहे हम पेरेंट्स कितना भी कमा रहे हों, ज़्यादा कमा रहे हों, कम कमा रहे हों, अपनी अपनी कमाई के अनुसार हम अपने बच्चों को हर सुविधा दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उस सुविधा को जुटाने में हम इतने व्यस्त हैं कि उन्हें हम अपना प्रेम और अपना साथ नहीं दे पा रहे। ये चीज़, ये बात आप सभी नोट कर रहे हैं या नहीं? अगर नहीं कर रहे हैं श्रोताओं, तो इस कार्यक्रम को सुनकर थोड़ा सा इस पर सोच विचार कीजिएगा कि हम अपनी तरफ से अपनी पूरी माता पिता होने की भूमिका जो है वो निभा रहे हैं। हमें लगता है हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे देंगे, अच्छे कपड़े ला देंगे, हर सुविधा दे देंगे तो हम एक अच्छे पेरेंट्स कहलाएंगे। हाँ, अच्छे पेरेंट्स तो ज़रूर कहलाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं बच्चों में कोई कमी अगर रह जाती है तो वो रह जाती है हमारे साथ की। समय हम उनके लिए ही अपना समय जो है अपने काम पर लगाते हैं, कुछ भी ऐसा करते हैं जिससे हम अच्छे पैसे कमा सकें और उनको हर सुविधा वो दे सके। और हर पेरेंट्स ये सोचता है कि हमने जो बचपन में कमियां देखी हैं, हमने जो बचपन में जो कमियां रह गई हमारे बचपन में, वो कमियां हमारे बच्चों को ना देखनी पड़े, ना उन्हें वो समय देखना पड़े, उसके लिए हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन श्रोताओं, एक बात और भी हमें सोचनी चाहिए, जब हमें वो सुविधाएं नहीं मिलती थी तो कम से कम हमें अपने माता पिता का साथ, उनका आशीर्वाद और उनका प्रेम मिलता था। तब हम अपने दादा दादी के साथ, नाना नानी के साथ बैठकर, माता पिता के साथ बैठकर हर बात को डिस्कस किया करते थे और अपनी हर बात को उनके साथ साझा किया करते थे, और कोई परेशानी होती थी तो उसका हल भी हम उनसे लिया करते थे और हमें मिलता भी था। लेकिन आज के समय में अगर हम अपने पेरेंट्स, हम एज अ पेरेंट सोचें, हमारे बच्चे अगर हमसे एक से दूसरा सवाल पूछ लेंगे तो हम ये कहेंगे जाकर अपना काम करो, मुझे अभी समय नहीं है, मुझे अपना काम करने दो। तब बच्चे की मन में क्या आता होगा, क्या वो बच्चा सोचता होगा, इस पर भी क्या हमने कभी विचार किया है? और आज के समय में इस पर विचार करना बहुत ज़रूरी है। तो श्रोताओं, इस विषय पर हम आगे भी आपके साथ बहुत सारी बातें आज करने वाले हैं और उम्मीद करेंगे कि आप भी कार्यक्रम के साथ जुड़े होंगे, और जुड़ना भी ज़रूरी है, ऐसी बातों में अपने विचार भी आप रख सकते हैं, श्रोताओं हमारे साथ जुड़ सकते हैं अगर आप चाहें तो। और श्रोताओं, आप सभी का स्वागत है इस कार्यक्रम में। और अब आगे बढ़ते हैं हम एक प्यारा सा गीत अपने प्यारे प्यारे बच्चों के लिए। तो जितने भी बच्चे श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं,
उन तक हम पहुंचा रहे हैं ये प्यारा सा गीत। आप भी हमारे साथ जुड़िए और आपका मनोरंजन भी करवाएंगे, साथ ही आज आपसे ही जुड़ी बात हम करेंगे। तो बच्चों से हम यही कहेंगे कि भाई आज सुषमा आंटी कह लीजिए या सुषमा दीदी कह लीजिए, आज आपके बारे में बात करने वाली है आपके पेरेंट्स से। तो लीजिए प्यारा सा गीत सुनिए और इस गीत को बच्चे ज़रूर पसंद करेंगे, बच्चों के साथ साथ हमारे बड़े श्रोता भी पसंद करेंगे। ज़रूर इस गीत को गुनगुनाइए और थोड़ा सा झूम लीजिए।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर श्रोताओं, आप सभी ट्यून इन हैं आपके अपने रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला इस समय आप सभी सुन रहे हैं आपकी अपनी रेडियो दोस्त सुषमा के साथ। तो श्रोताओं, ज़रूर आपने इंजॉय किया होगा इस गीत को, और ख़ास करके हम पूछेंगे अपने नन्हे मुन्ने छोटे छोटे श्रोताओं से कि आपको ये

गीत कैसा लगा और आपने इस गीत को गुनगुनाया या नहीं। अगर नहीं गुनगुनाया है तो ज़रूर गुनगुनाइएगा और इस गीत को ज़रूर सुनिएगा, बहुत प्यारा गीत है। श्रोताओं, ये जो गीत अभी आपने सुना, उस गीत को आवाज़ों से सजाया था शान ने, महालक्ष्मी अय्यर ने और स्नेह ने, और फिल्म का नाम था तारा रम पम। बिल्कुल, और ये जो सुर हैं श्रोताओं, ये कहीं ना कहीं हमारे पैर जो हैं अपने आप थिरकने के लिए मजबूर कर देते हैं। सुरों के साथ जब हम बैठते हैं या सुरों को जब हम सुनते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे हाथ पैर सुरों के साथ अपने आप झूमने लग पड़ते हैं। इसीलिए कहते हैं कि गीतों के साथ बने रहिए कीजिए, क्योंकि गीत जो हैं वो कहीं ना कहीं हमारे दिलों के, दिमाग के, मन के तार जो है वो भी छेड़ देते हैं। और नन्हे मुन्ने श्रोताओं से यही कहेंगे कि अभी आपके लिए और ऐसे गीत हैं जो आपको पसंद आने वाले हैं, इसलिए आप लोग फटाफट भागकर कहीं और मत जाइएगा, इन गीतों का इंतज़ार कीजिएगा और इन्जॉय कीजिएगा। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, और आप सभी जैसे कि जानते हैं कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला में हम बातें भी करते हैं और जानकारियाँ भी आप तक पहुँचाते हैं। तो अब समय है जानकारी की ओर बढ़ने का, तो चलिए लेते हैं जानकारी। शाहपुर के विधायक एवं उप मुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया ने आज शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के लांजनी में लोगों की समस्याएं सुनी और संबंधित विभागों के अधिकारियों को इनके समयबद्ध समाधान के निर्देश भी दिए। उन्होंने ग्रामीण विकास विभाग को पंचायत घर की भूमि विभाग के नाम करने संबंधी सभी औपचारिकताएं एक माह के भीतर पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने लोक निर्माण विभाग को क्षतिग्रस्त फुटब्रिज को शीघ्र ठीक करने के लिए भी आदेश दिए। साथ ही श्रोता, उन्होंने कहा कि आमजन की समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान सुनिश्चित किया जाए ताकि लोगों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। साथ ही श्रोताओं, आपको बता दें श्री पठानिया ने कहा कि लांजनी क्षेत्र के लोगों की आवागमन संबंधी समस्या को देखते हुए शीघ्र ही सुबह और शाम बस सेवा शुरू की जाएगी। उन्होंने पेयजल समस्या के समाधान के लिए जल शक्ति विभाग को आवश्यक निर्देश देते हुए लोगों को निर्बाध पेयजल उपलब्ध कराने को भी कहा है। ग्राम पंचायत प्रधान वनीता देवी ने लांजनी पहुंचने पर विधायक का स्वागत किया और क्षेत्र की सड़क, रास्तों तथा बस सेवा से संबंधित विभिन्न मांगें उनके समक्ष रखी। तो श्रोताओं, ये थी जानकारी जो आप तक पहुंचाई रेडियो गुंजन धर्मशाला ने, और ऐसी ही जानकारियां आप तक और भी पहुंचाई जाएंगी, साथ ही आपका मनोरंजन करवाया जाएगा प्यारे प्यारे गीतों के साथ। और जिस विषय पर हम बात कर रहे हैं उस विषय पर भी आपके साथ और भी बातें करेंगे कि क्या हम अपने बच्चों को समय दे रहे हैं या सिर्फ सुविधाएँ। बिल्कुल श्रोताओं, और इन बातों के साथ जुड़े रहिए, और जुड़ने के लिए आपको ट्यून इन रहना पड़ेगा 91.2 MHz पर रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। अभी के लिए फिलहाल कार्यक्रम में लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, इस ब्रेक के बाद फिर से जुड़ेंगे कार्यक्रम में। तो आप सभी यूं ही जुड़े रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर श्रोताओं आप सभी ने ट्यून किया है आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला। इस समय आप सभी सुन रहे हैं आपकी अपनी रेडियो दोस्त सुषमा के साथ। जैसा कि हमारे नियमित श्रोता जानते हैं कि कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला का समय रहता है शाम को 6 बजे से लेकर 8 बजे तक। तो श्रोताओं, जितने भी श्रोता हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनमें से हो सकता है कि बहुत सारे श्रोता हमारे साथ अभी अभी जुड़े होंगे, नए नए जुड़े होंगे, तो उनका हम कार्यक्रम में करते हैं स्वागत और उन्हें भी बता देंगे कि कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला इस समय आप सभी सुन रहे हैं और आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। तो ब्रेक के बाद अब फिर से हम इस कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं श्रोताओं, और जैसे कि आपसे हमने कहा था कि आपका मनोरंजन करवाने के लिए प्यारे प्यारे गीतों को हम लेकर आए हैं और नन्हे मुन्ने हमारे जो श्रोता हैं उनके लिए भी कुछ गीत लेकर आए हैं और अब हम सुनवाएंगे सभी श्रोताओं को एक प्यारा सा गीत। तो चलिए लेते हैं इस गीत को जिसे हम लेकर आए हैं राजकुमार फिल्म से। आवाज़ दी है इस गीत को लता मंगेशकर ने।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर श्रोताओं हूँ, आप सभी ने ट्यून किया है आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला में। अभी आपने सुना ये प्यारा सा गीत, और ऐसे गीत जब शाम को हम सुन लेते हैं तो हमें कहीं ना कहीं अच्छा लगता है, और कहीं ना कहीं हम अपने काम जब करते हैं और साथ में गुनगुनाते हैं तो कहीं ना कहीं पीछे से आवाज़ भी आती होगी कि भाई यहाँ एक रेडियो तो चल ही रहा है, दूसरा भी शुरू हो गया। लेकिन श्रोताओं, लोगों की बातों पर हमें बिल्कुल भी गौर नहीं करना है, और जो हमारे मन को अच्छा लगता है वो हमें कर लेना चाहिए, क्योंकि पीछे से बोलने वाले बहुत सारे लोग रहते हैं, लेकिन अगर हम उनकी बातें सुनते रहे तो हम अपने जीवन में छोटे छोटे जो पल हैं उन्हें एंजॉय नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो आपको अच्छा लगता है उसे कर लेना चाहिए। बिल्कुल, अपने लिए जीना भी ज़िंदगी है, भी नहीं, अपने लिए जीना ही ज़िंदगी है श्रोताओं। और हम कई बार अक्सर ऐसा करते हैं कि हम दूसरों के लिए सोचते हैं, अपने लिए सोचने का हमारे पास समय ही नहीं होता। तो कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला इस समय आप सभी सुन रहे हैं, और प्यारे प्यारे गीत भी हम कार्यक्रम में आपको सुनवा रहे हैं। तो श्रोताओं, चलते हैं आगे बढ़ते हैं, और हम आज बात कर रहे हैं अपने बच्चों के बारे में कि हम अपने बच्चों को समय दे रहे हैं या सिर्फ सुविधाएं। और इसका आंसर अब आपके पास होगा, आप लोगों ने सोच लिया होगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। आपकी नज़र में आप उन्हें क्या दे रहे हैं? अगर आप उन्हें समय दे रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप उन्हें सुविधाएं दे रहे हैं तो भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन सुविधाओं के साथ साथ उन्हें समय देना बहुत बड़ी बात है और बहुत ही अच्छी बात है। बिल्कुल, सुविधाएं हर पेरेंट्स अपने बच्चों को देते हैं और देने के बारे में सोचते भी हैं, लेकिन समय, समय ही तो है जो आज सबके लिए एक प्रश्न चिन्ह बना हुआ है, क्वेश्चन मार्क बना हुआ है। समय कहाँ है? समय है ही नहीं। किसी से भी पूछ लीजिए कि चलो आज ये कर लेते हैं, आज ये यहाँ जाते हैं या बैठकर बात कर लेते हैं, तो उनका जवाब ये होता है कि अभी हमारे पास समय नहीं है। तो फिर समय किसके पास है, समय कहाँ है? श्रोताओं, यही सोचने वाली बात है। समय चाहे हमारे पास हो भी, लेकिन हम उसे बिता देते हैं मोबाइल फ़ोन पर, बिता देते हैं सोच विचार पर, बिता देते हैं पैसा कमाने में, लेकिन जहाँ हमें समय देना है वहाँ हम समय नहीं दे पाते हैं। और ज़रूर इस बात पर विचार कीजिएगा, और इस पर लौट कर आएंगे, बातें और भी आपके साथ करनी है, लेकिन फ़िलहाल के लिए यहीं रुकते हैं और सुनाते हैं आपको एक और प्यारा सा गीत, और आपके साथ हम भी सुनते हैं इस प्यारे से गीत को। जानवर फिल्म से ये गीत लिया गया है श्रोताओं, और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ है इस गीत में।

श्रोताओं, कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला में अभी आपने सुना ये प्यारा सा गीत। और आप सभी को बता दें कि इस समय आप सभी ने ट्यून किया है आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला 91.2 मेगा हर्ट्स पर। कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला इस समय आप सभी सुन रहे हैं और आज का ये कार्यक्रम आप तक पहुंचा रही है आपकी रेडियो दोस्त सुषमा। श्रोताओं, कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और हम आज बात कर रहे हैं बच्चों के बारे में कि बच्चों के बारे में हम कितना सोचते हैं, कितना उनके लिए हम सुविधाओं के लिए हम कितनी कड़ी मेहनत करते हैं। लेकिन मेहनत के साथ साथ श्रोताओं, हमें ये भी देखना है कि हम बच्चों को समय कितना दे रहे हैं। और जब समय की बात आती है तो हम यही कहते हैं कि नहीं, हम अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं और उनके लिए हमने वो सभी चीज़ें जो है वो कमा कर दी हैं जो उनके लिए बहुत ज़रूरी हैं। बहुत अच्छी बात है, लेकिन श्रोताओं, हम अगर अपने पुराने समय की ओर जाएं तो उस समय हमारे पास इतनी सुविधाएं नहीं होती थी और आजकल के समय में बहुत सारी सुविधाएं हैं। और सुविधाओं में हम बात करेंगे, आजकल हमारे घर इतने बड़े हैं कि एक कमरे से दूसरे कमरे तक और दूसरे से तीसरे कमरे तक हमें जाना पड़ता है। हर किसी का अपना एक कमरा है और हर कोई उस कमरे में अपने आप को कैद करके रख लेता है। और आजकल के बच्चों की हम बात करेंगे, युवाओं की बात करेंगे, आजकल उनके अपने रूम्स हैं और हम सिर्फ बच्चों को बाहर तभी देखते हैं जब उन्हें खाना खाना होता है या घर में किसी से बात करनी होती है, अदरवाइज़ उनके डोर बंद रहते हैं और वो अपनी ही दुनिया में रहते हैं, अपने मोबाइल के साथ रहते हैं, अपने दोस्तों के साथ रहते हैं, सोशल मीडिया में बिज़ी रहते हैं। और हमारे समय में ऐसा नहीं होता था। हमारे समय में घर छोटे ज़रूर हुआ करते थे, लेकिन एक ही कमरे में जब हम सभी इकट्ठे बैठते थे तो हम आपस में अपने पूरे दिन की जो भी घटनाएं घटी होती हैं या दिन हमारा अच्छा बुरा जैसा भी गया होता है वो एक दूसरे के साथ डिस्कस करते थे। लेकिन आज वो समय और वो बातें नहीं रही हैं। श्रोताओं, ये दूसरों की बात नहीं है, हम अपने घर की खुद की बात भी यही देखते हैं और यही हो रहा है। लेकिन इस चीज़ को हम कैसे कम कर सकते हैं, उसके लिए हमें ही आगे बढ़ना पड़ेगा। अपने बच्चों के कमरे में जाइए, उनके साथ बैठिए या उन्हें अपने पास बुलाइए, अपने साथ बिठाइए। खाना अगर आप खाते हैं तो अपनी अपनी थाली यहाँ वहाँ ले जाने से अच्छा है कि एक साथ बैठ कर इकट्ठे भोजन करें ताकि हमें वो समय मिल पाए जिसमें हम एक दूसरे के साथ बात कर पाए। कोई श्रोता है जो हमें फ़ोन कर रहे हैं, उनका फ़ोन हम ज़रूर लेंगे, लेकिन फ़िलहाल अभी के लिए हम सुनेंगे एक प्यारा सा गीत और इस गीत के बाद आपकी कॉल ज़रूर ली जाएगी। तो लीजिए श्रोताओं, कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला में सुनिए इस प्यारे से गीत को।

0: 91.2 मेगाहर्ट्ज पर श्रोताओं, आप सभी ने ट्यून किया है आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला में। अभी आपने सुना ये प्यारा सा गीत जिसे हमने लिया था बोल राधा बोल फिल्म से। आवाज़ें थी पूर्णिमा और कुमार शानू की। तो श्रोताओं, कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला इस समय आप सभी सुन रहे हैं आपकी अपनी रेडियो दोस्त सुषमा के साथ। कार्यक्रम में इस गीत से पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ने वाले थे लेकिन जुड़ नहीं पाए, उनसे हम यही कहेंगे कि आप अभी जुड़ना चाहते हैं तो हमारे स्टूडियो के नंबर पर कॉल कर सकते हैं और आज हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं उस विषय पर अपने विचार हमारे समक्ष रख सकते हैं। तो कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बात करते हैं उनसे। हेलो हेलो, हेलो, मुझे लग रहा है कि कॉल जो है वो कनेक्ट नहीं हो पा रही है किसी वजह से। हेलो हेलो
1: मैम, आ रही हो आज?
0: हाँ जी हाँ जी, बोलिए बोलिए।
1: गुड इवनिंग मैम।
0: गुड इवनिंग जी। गुड इवनिंग,
1: कैसे मैम?
0: जी बढ़िया बढ़िया। आप इंदु जी बोल रही हैं ना जी?
1: जी मैम बिल्कुल सही।
0: देखिए जैसे जैसे आप लोग हमें हमारी आवाज़ से पहचान लेते हैं वैसे ही हम भी अपने श्रोताओं को अब आवाज़ से पहचानना शुरू हो गए हैं। तो इंदु जी गुड इवनिंग, नमस्कार, आपका स्वागत है कार्यक्रम में, आपने कॉल किया, बोलिए।
1: थैंक यू मैम
0: जी, बताइए आप क्या कहना चाहते हैं।
1: मैम ज़्यादा तो नहीं सुन पाई आज आपका प्रोग्राम, वैसे थोड़ा सा सुना हमने, बच्चों के बारे में सुना मैंने बोलते हुए।
0: हाँ जी,
1: तो जैसे बच्चों के बारे में आप बोल रहे हो तो आजकल तो बच्चों से हम जैसे जो जो पेरेंट्स मतलब होते हैं कि जो जॉब वगैरह करते हैं उनके उनसे तो चलो टाइम नहीं दे पाते हैं, लेकिन जो घर में होते हैं आजकल वो भी नहीं दे पा रहे हैं बच्चों को टाइम।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही बोला इंदु जी आपने, और इसीलिए आज इस विषय को हमने ठीक समझा कि हमें इस विषय पर बात करनी चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसे विषय होते हैं जो कई बार हम लोग सोच नहीं पाते या उन पर हम बात नहीं कर पाते हैं।
1: जी, और इसका मेन कारण देखो ना यही आजकल फोन में बिजी हैं सारे, है ना?
0: जी जी बिल्कुल,
1: आजकल और दूसरे लोगों के टाइम ही नहीं है कि एक दूसरे से बात करने का, और ज्यादातर फोन में बिजी, बच्चों के पास अलग फोन, पेरेंट्स के पास अलग फोन, है ना? पहले हम दादा दादी की नाना नानी से मतलब कहानियां सुनते थे, है ना
0: जी,
1: कितना मजा आता था, हमारा टाइम पास होता था। आजकल के बच्चे जैसे मेरा बेटा है तो वो तो चलो बेचारा घर में रहता है तो वो भी बोलता है मम्मा मेरे को स्टोरी सुनाओ ये, तो जैसे रेडियो पे सुनते तो अच्छा लगता है, कभी रेडियो पे सुना दे, कभी उसको मैं ऐसे फोन में देख के सुना देती हूँ।
0: बिल्कुल
1: तो,
0: जी।
1: तो जैसे कुछ पेरेंट्स होते हैं जो बिल्कुल टाइम है, और आजकल की क्या करते हैं कि जैसे मेरे पास कुछ दिन पहले की बात है, मेरे पास ना मेरे रिश्तेदार ही आए थे
0: जी।
1: मेरी अच्छा सिस्टर ही तो वो बोलती आपका हमारा लड़का बोलती हर बात में बीच में बोलता है और हर बात को सुनती है, पूर्व सुनता रहता है तेरी बात पूरी
0: जी,
1: इसको ना अलग कमरे में बिठाया करो
0: जी।
1: मुझे उसकी बात ये बड़ी मुझे मैंने हैरत में पड़ गई, मैंने बोला क्या बोल रही है, मैंने बोला क्यों बोलती, देखो मेरा लड़का है ऐसा तो बोलते वो अपना फोन लेके और अपना खाना भी अलग रूम में खाता है, जब उसको भूख लग रही उसने खा लेना, जब मतलब जो इसका मन करे वो करता है, और अपने कमरे में हमारे में बिल्कुल बीच में नहीं बोलता, हम जैसे मर्जी डिस्कस करें या कुछ भी करें वो कोई सवाल जवाब नहीं करता है
0: जी।
1: तो उसको लगा कि मतलब वो बड़ा अच्छा बोले, लेकिन मुझे उसकी चीज वो अच्छी नहीं लगी वो बात, मैंने बोला नहीं ऐसा नहीं है, अगर आज हम बच्चों को टाइम ही देंगे तो कल को वो हमारे साथ टाइम स्पेंड करेंगे क्या, उनको आदत नहीं रहेगी।
0: जी जी बिल्कुल बिल्कुल सही इंदु जी, बिल्कुल सही बोल रहे हो, आपकी ऐसा होना चाहिए, और आपकी बात माफ़ कीजिएगा मैं काटूंगी, क्योंकि देखिए कई पेरेंट्स जो हैं वो ये सोचते हैं कि हमारे बच्चे घर पर खाना नहीं खाते, उन्हें हम जब टिफ़िन स्कूल भेजते हैं तो बच्चा स्कूल में अपने और दोस्तों के साथ इकट्ठा बैठ के वही खाना वही सब्जी जो है वो फिनिश करके आता है, क्योंकि वो एक दूसरे को देख कर खाना सीखता है या साथ में बैठकर वो खाना खा लेता है, लेकिन घर में ऐसा आजकल नहीं होता है, थाली में बच्चा अपना खाना लेकर चला जाएगा अपने कमरे में बैठकर खाएगा, और कई बार भूख भी नहीं होगी या वो खाएगा ही नहीं, तो इसके पीछे कारण ये भी है कि हम लोग जो है वो अकेला रहना पसंद कर रहे हैं, है ना जी? जी
1: वो दूसरी बात ये है ना कि इससे क्या, इससे कितना फर्क पड़ा। देखो अगर बच्चे से हम मतलब फ्रेंडली रहेंगे, उनके साथ बात करेंगे तो ही बच्चे हमारे साथ को अपनी बात शेयर करेंगे, अदरवाइज वो तो अपनी बात, दिल की बात भी नहीं हमसे शेयर करेंगे ना।
0: बिल्कुल,
1: और
0: बिल्कुल।
1: अपनी बात रखने के लिए हमें भी जैसे किसी ना किसी की जरूरत पड़ती है तो वैसे बच्चों को भी जरूरत पड़ती है।
0: जी।
1: तो बच्चे क्या करते हैं कि अब देखो ना, कोई दूसरा बच्चा किस माहौल में पल रहा है, वो उसके माहौल अलग है, हमारे घर का माहौल अलग होगा, हर किसी का अपना अपना अलग माहौल है, तो वो बच्चा जो है वो ऑटोमेटिकली दूसरे घर के माहौल के जैसा मतलब उसमें मिल जाएगा, क्योंकि वो एक दूसरे के अटैच ज्यादा रहेंगे, घर में तो अटैच रहेंगे नहीं।
0: जी जी।
1: तो मैं
0: इंदु जी आपसे मैं ये पूछना चाहूँगी कि एज अ पेरेंट्स हमें अभी इस समय में क्या करना चाहिए, बच्चों को किस तरह से हम उन्हें समय दे सकते हैं?
1: हमें तो मैम ये कि बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए ना।
0: जी।
1: और दूसरा कि अगर हम भी बच्चों के सामने अगर फोन को अवॉइड करें ना।
0: बिल्कुल।
1: तो, हाँ जी, क्योंकि बच्चे जो हमें देख कर ही सब कुछ सीखते हैं।
0: जी।
1: अगर हम फोन में ज्यादा ध्यान देंगे तो बच्चे हमें देखेंगे, और वो कुछ हम बच्चों को बोल भी नहीं सकते कि आप फोन मत देखो, क्योंकि वो वापिस से हमें जवाब आ जाएगा कि आप भी तो देखते रहते हो।
0: जी जी, बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो बोलते हैं बच्चों को सुधारने से पहले खुद को सुधारना बड़ा जरूरी है।
0: जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। इंदु जी, आपने बिल्कुल सही बात कही है और सही बात पकड़ी भी है कि आजकल यही कारण है कि हम समय नहीं दे पाते हैं और बच्चे हमसे ही कहीं ना कहीं सीखते हैं, रिलेट करते हैं। बहुत अच्छा लगा इंदु जी आपने कॉल किया और इस बात को आपने अपने विचार जो है इसी तरह से हमारे कार्यक्रम में रखे हैं, आगे भी रखते रहिएगा। कॉल करने के लिए इंदु जी बहुत बहुत धन्यवाद।
1: आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम जोड़ने के लिए।
0: जी जी। तो श्रोताओं, कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला में इस समय एक श्रोता हमारे साथ जुड़े थे और उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है कि कहीं ना कहीं समय हमें अपने बच्चों को देना पड़ेगा और कुछ बातें हमें भी अवॉइड करनी पड़ेंगी। जिस तरह से हम फ़ोन पे बिज़ी रहते हैं, हमें भी अपना फ़ोन थोड़े समय के लिए दूर रखना पड़ेगा, उनके साथ बैठना पड़ेगा, तभी बच्चे हमारे साथ इंटरेक्ट कर पाएंगे। तो चलिए, ये बातें बहुत हो गई हैं श्रोताओं, और अब बच्चों के लिए ही एक प्यारा सा गीत जो है हम प्ले कर रहे हैं। लीजिए, बच्चे तो सुने ही सुने लेकिन आप भी इस गीत के साथ ज़रूर जुड़ें। तारे ज़मीन पर, इस फिल्म का गीत श्रोताओं शान और आमिर खान की आवाज़ों में।
2: चिकी चकचो गिली गिली मल सुलु सुलु मल मकनक हुकु बुकुरे टुकु बुकुरे चकलक बिक्को चिक्को सिली सिली सिली गो भगड़ दुम चकड़ दुम चिकी चकचो।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला में अब समय है समाचारों का, तो लीजिए सुनते हैं समाचार।
1: मोबाइल कांग्रेस से पहले वार्ता की। ये संगठन मोबाइल संचालकों तथा इससे जुड़े उद्योगों के संगठनों का प्रतिनिधित्व करता है। प्रधानमंत्री ने इस बात पर बल दिया कि प्रौद्योगिकी को समावेशी और सतत विकास का साधन बनना चाहिए। श्री मोदी ने विशेष रूप से विकासशील देशों के लिए प्रौद्योगिकी और डिजिटल सेवाओं को सस्ता और सुलभ बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जनता का विश्वास और करोड़ों पार्टी कार्यकर्ताओं का समर्पण उनके लिए सबसे बड़ी ताकत है। नई दिल्ली में विकसित भारत संकल्प सभा में श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने आज सवेरे श्री विनायक मंदिर में देश और 140 करोड़ नागरिकों की समृद्धि के लिए प्रार्थना की। प्रधानमंत्री ने कहा कि 25 वर्ष में जनता से मिला विश्वास और अनुभव उनकी सबसे बड़ी पूंजी है।
2: 7 अक्टूबर 2001 को जब मैंने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी, तब सोचा नहीं था कि कभी ये पड़ाव भी आएगा। आज मुझे हेड ऑफ द गवर्नमेंट के तौर पर निरंतर सेवा करते हुए 25 वर्ष पूरे हो गए। ये जनता जनार्दन के निरंतर आशीर्वाद का परिणाम है।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि वैश्विक संकट के बावजूद भारत दुनिया की 5 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में विकसित भारत संकल्प सभा में श्री सिंह ने कहा कि सरकार का लक्ष्य भारत को विकसित देश बनाना है। उन्होंने कहा कि पश्चिम एशिया संकट पैदा न होने पर अर्थव्यवस्था के आकार के हिसाब से भारत दुनिया के शीर्ष 3 देश में शामिल हो जाता। श्री सिंह ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था 7.4% की दर से बढ़ रही है। रिजर्व बैंक ने लगभग 4 वर्ष बाद रेपो दर को 25 आधार अंक बढ़ाकर 5.5% कर दिया है। मुंबई में आज द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए गवर्नर संजय मल्होत्रा ने ये जानकारी दी। इससे पहले फरवरी 2023 में रेपो दर को 6.25% से बढ़ाकर 6.5% किया गया था। वर्ष 2023-24 में रेपो दर में कोई बदलाव नहीं किया गया, हालांकि 2025 से इसमें कटौती शुरू की गई थी। रिजर्व बैंक ने मौजूदा वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि अनुमान 7.1% व्यक्त किया है। वस्तु और सेवा कर जीएसटी परिषद की 57वीं बैठक कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन की अध्यक्षता में इस बैठक में जीएसटी विवादों के समाधान और इनपुट टैक्स क्रेडिट के प्रभाव को बेहतर बनाने के लिए नीतिगत सुधारों पर चर्चा होगी। इसका उद्देश्य अनुपालन में लगने वाले समय और लागत को कम करना है। वित्त मंत्रालय के अनुसार जीएसटी व्यवस्था में अगले चरण के सुधारों के लिए 5 सूत्री योजना का प्रस्ताव रखेगी। दिल्ली पुलिस ने कल के विरोध मार्च के दौरान नई दिल्ली में आकाशवाणी भवन में बिना अनुमति प्रवेश करने के आरोप में कांग्रेस नेताओं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। मामले की जांच शुरू कर दी गई है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने पंजाब के मुख्यमंत्री के विशेष कार्य अधिकारी राजबीर घुम्मन और उनके सहयोगियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। ये मामला अधिकारियों के तबादलों और तैनातियों में कथित हेराफेरी और रिश्वतखोरी से जुड़ा है। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि हिंदी को बढ़ावा देने का आधार भाषा के इस्तेमाल को थोपने के बजाय इसमें अधिक अवसर और भागीदारी की भावना को बढ़ावा देना है। हिंदी सलाहकार समिति की तीसरी बैठक में उन्होंने कहा कि जब हिंदी रोजगार और पेशेवर अवसर सृजित करेगा तो इसके इस्तेमाल स्वाभाविक रूप से बढ़ेगा। इस अवसर पर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की कौशल पत्रिका का भी लोकार्पण किया गया। रूस ने कल रात यूक्रेन के कई क्षेत्रों पर मिसाइलों और ड्रोन से हमले किए। इन हमलों में 4 बच्चों सहित 19 लोगों की मौत हो गई और करीब 60 लोग घायल हुए हैं। यूक्रेन के अनुसार उत्तरी चेर्निहिव क्षेत्र का प्रिलुकी सबसे अधिक प्रभावित हुआ। वर्ष 2026 का रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार फ्रांस के हेनरी कागन और जापान के केन्सो सुआई को दिया गया है। स्वीडिश रॉयल एकेडमी ऑफ साइंसेज ने ये सम्मान उन्हें असममित कार्बनिक संश्लेषण नॉन लीनियर प्रभावों और ऑटो कैटालिसिस की खोज के लिए दिया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर श्रोताओं, आप सभी ने ट्यून किया है आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला में। समाचारों के बाद एक बार फिर से आपका करती हूँ स्वागत। आज का ये कार्यक्रम श्रोताओं आप सभी सुन रहे हैं आपकी अपनी रेडियो दोस्त सुषमा के साथ। और समाचारों के बाद एक बार फिर से सुषमा की ओर से सभी को प्यार भरी राम राम, नमस्कार और गुड इवनिंग। तो श्रोताओं, कार्यक्रम में अब आगे बढ़ते हैं और बातचीत करेंगे, लेकिन पहले सुनते हैं एक गीत। लेकिन गीत से पहले श्रोताओं आपसे कहना चाहेंगे कि आज के समय में बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिन्हें अगर हफ्ते के दिनों के नाम हिंदी में बोलने पड़ जाएँ तो वो मुश्किल लगते हैं। संडे, मंडे, ट्यूसडे तो रटा रटाया उन्हें याद होता है। कई बार हमारे साथ भी ऐसा ही होता है श्रोताओं। और अगर आप में से बहुत सारे बच्चे सुन रहे हैं और संडे, मंडे, ट्यूसडे उन्हें पता है लेकिन सोमवार, मंगलवार नहीं पता है, तो ये गीत उनके लिए है। इस गीत के साथ साथ आप हफ्ते के दिनों के नाम भी याद कर सकते हैं। तो लीजिए फिर कार्यक्रम में जिस गीत की बात हो रही है उसे आप तक पहुंचाते हैं। और इस गीत को हम लेकर आए हैं अपनापन फिल्म से, किशोर कुमार की आवाज़ में।

91.2 MHz पर श्रोताओं आप सभी जुड़े हुए हैं आपके अपने रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। और इस गीत के साथ साथ श्रोताओं आपको देखिए हफ्ते के दिनों के नाम भी हमने याद करवा दिए और साथ ही समय भी बताया और साथ ही कुछ महीनों के नाम भी इसमें आए। तो श्रोताओं ये गीत सिर्फ गीत नहीं, बहुत कुछ हमें सिखाते हैं, बहुत कुछ हमें बताते हैं, लेकिन बस गीतों के साथ हमें जुड़ना पड़ता है और इन्हें ध्यान से सुनना पड़ता है। उम्मीद करते हैं आपको गीत पसंद आ रहे होंगे। श्रोताओं कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और जैसे कि हम बात कर रहे हैं बच्चों की, तो आजकल एक और चीज़ बहुत ज़रूरी है, अपने बच्चों के साथ खुलकर बात करना। बच्चे जब भी आपके घर आते हैं, चाहे कॉलेज से आएँ चाहे स्कूल से आएँ, उनसे बात कीजिए। आपका बच्चा अगर बहुत चुप रहता है और आपको लगता है कि कहीं कुछ है, तो उससे बैठकर प्यार से बात कीजिए और कोई उनकी परेशानी चल रही है ये जो भी है वो उनसे ज़रूर बात करके बात को निकालने का प्रयास कीजिए। क्योंकि देखा गया है बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो जिनके साथ कुछ ऐसा हुआ भी होता है तो उस बात को वो छुपाते हैं, कहीं ना कहीं डर की वजह से या फिर किसी और कारण से भी। तो आजकल के समय में चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है, उनसे खुलकर बात कीजिए, बैठिए और अगर उनकी कोई परेशानी है तो उनका हल भी निकालिए। बच्चों को अगर हम डांट देंगे डरा देंगे तो एक बार तो आपके साथ बात करेंगे लेकिन दूसरी बार के लिए वो चुप हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि कहीं ना कहीं हमें ही डांट सुनने को मिलेगी, इससे अच्छा है चुप रहें। इसलिए डांटना बिल्कुल भी नहीं है, उनकी हर बात में उनके साथ खड़े रहना है। अच्छी बात है तो भी और बुरी बात है तो भी, लेकिन हाँ कहीं अगर उनकी गलती है तो उन्हें हम प्यार से समझाएँगे तो वो उस बात को समझ भी जाएंगे। तो श्रोताओं अब आगे बढ़ते हैं और कार्यक्रम में लेते हैं एक और प्यारा सा गीत जो कहीं ना कहीं हमें जीने की बात समझाता है। तो चलिए ये गीत हमें क्या बताता है सुनते हैं, गुमनाम फिल्म के इस गीत में लता मंगेशकर की आवाज़ में।

श्रोताओं, कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला में अभी जो गीत आपने सुना उसे हमने लिया था अपनापन फिल्म से। किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ में आपने सुना ये गीत। लेकिन श्रोताओं, जिस गीत के बारे में मैं बात कर रही थी वो गीत आपको नहीं सुनवा पाए, क्योंकि गीतों के बोल जो हैं वो तो सेम थे लेकिन गीत वो नहीं था जो सुनवाना था। खैर, कोई बात नहीं, आपको वो गीत ज़रूर सुनवा दिया जाएगा। वो गीत श्रोताओं इस तरह था, इस दुनिया में जीना हो तो सुन लो मेरी बात, गम छोड़ के मनाओ रंगरली। तो ये गीत आपको ज़रूर किसी और कार्यक्रम में सुनवाया जाएगा और आज नहीं सुना पाए, इसके लिए माफ़ी चाहूँगी। श्रोताओं, कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और हम बात कर रहे थे अपने बच्चों के बारे में कि बच्चों के लिए आजकल हम क्या कर रहे हैं। तो श्रोताओं, अगर आपके बच्चे के बिहेवियर में थोड़ा सा भी चेंज आता है तो आप उस पर ज़रूर ध्यान दीजिए। बात बात पर अगर गुस्सा करता है और पहले इतना बातूनी था जो अब चुप रहता है, पढ़ाई में मन नहीं लगता, हर समय मोबाइल मांगता है, तो ये जो बदलाव है इनके पीछे सवाल को समझने की कोशिश हमें करनी चाहिए और बच्चे से खुलकर बात करनी चाहिए। बच्चा कहीं तनाव में है या कोई कारण है तो उसे जानने की कोशिश हमें ज़रूर करनी चाहिए, लेकिन उसके लिए हमें उनकी तरफ ध्यान देना पड़ेगा। उनके बिहेवियर में, उनके व्यवहार में अगर बदलाव आ रहा है, क्यों आ रहा है, ये हमें सोचना चाहिए। साथ ही श्रोताओं, हम ये भी कहेंगे कि कहा जाता है कि बच्चों को देखना और बच्चों से बात करने का काम सिर्फ़ और सिर्फ माताओं का ही है, क्योंकि जो पिता हैं उन्हें इतना समय नहीं होता। लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है। माँ बाप दोनों बहुत ज़रूरी हैं बच्चों के लिए, तो हमें दोनों को ही साथ उनका देना है और उनके लिए समय निकालना है। इस बात पर ज़रूर गौर फरमाइएगा कि पिता एक घर चलाने के लिए मेहनत ज़रूर करता है, लेकिन उस पिता को अपने बच्चों के साथ समय बिताना भी कितना ज़रूरी है ये वो नहीं समझते, लेकिन बच्चे इस बात को बहुत अच्छे से समझते हैं। जब एक पिता अपने बच्चों के साथ खड़ा होता है, बैठता है, तो बच्चों को और ज़्यादा तसल्ली होती है और ज़्यादा हौसला उनमें आता है। तो श्रोताओं, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आपको लिए चलते हैं कार्यक्रम के अगले गीत की ओर। तो लीजिए, सुनिए इस गीत को जिसे हम लेकर आए हैं एन इवनिंग इन पेरिस फिल्म से, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में गाया हुआ ये गीत आप सभी के रेडियो सेट पर।

श्रोताओं, कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला में अभी आपने सुना ये प्यारा सा गीत, और इस गीत के बाद अब कार्यक्रम में समय है एक छोटे से अंतराल का। इस छोटे से अंतराल के बाद कार्यक्रम में हम सब फिर से जुड़ेंगे, और आप सभी यूं ही बने रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ, सुनते रहिए कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला।

श्रोताओं, कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला में आप सभी का स्वागत है इस छोटे से अंतराल के बाद। और कार्यक्रम को अब हम आगे बढ़ाएंगे और आपको कार्यक्रम में आगे लिए चलेंगे एक प्यारे से गीत के साथ। फिल्म कुछ कुछ होता है, फिल्म का ये गीत उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ों में।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर श्रोताओं, आप सभी जुड़े हुए हैं आपके अपने रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। और इस गीत के बाद अब समय हो गया है आपको कहानी सुनाने का। प्रेरणादायक कहानियाँ हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी होती हैं श्रोताओं, कहीं ना कहीं हमें उनसे कोई ना कोई सीख मिलती है। आज की कहानी भी ऐसी ही है और ज़रूर आपको पसंद आएगी। श्रोताओं, एक घर में दादी के पास एक बहुत पुरानी घड़ी थी। वह घड़ी बहुत सुंदर थी, लेकिन आज के समय की तरह उसमें ना अलार्म था ना मोबाइल से जुड़ने की सुविधा। एक दिन पोते ने दादी से कहा, दादी आपकी ये घड़ी तो बहुत पुरानी है, इसे बदल क्यों नहीं देती? दादी ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, बेटा घड़ी पुरानी है लेकिन इसने मेरे जीवन के बहुत से खूबसूरत पल देखे हैं। पोता हंसकर बोलता है, लेकिन दादी आजकल तो स्मार्ट वॉच का ज़माना है। दादी ने कहा, बिल्कुल सही कहते हो, तुम्हारी पीढ़ी के पास नई तकनीक है और हमारी पीढ़ी के पास पुराने अनुभव। अगर दोनों एक दूसरे से सीख लें तो ज़िंदगी और आसान हो सकती है। अगले दिन श्रोताओं, पोते ने दादी को मोबाइल चलाना सिखाया, वीडियो कॉल करना सिखाया। दादी ने बदले में उसे अपने बचपन के किस्से सुनाए, रिश्तों की अहमियत समझाई और बताया कि मुश्किल समय में धैर्य कैसे रखा जाता है। कुछ दिनों के बाद पोते ने दादी की पुरानी घड़ी को साफ करके एक सुंदर से डिब्बे में रख दिया। दादी ने पूछा, अब इसे क्यों संभाल कर रख रहे हो? पोता बोलता है, क्योंकि दादी नई चीज़ें मुझे समय बताती हैं लेकिन आपकी पुरानी घड़ी मुझे समय की कीमत समझाती है। और श्रोताओं, इस कहानी से हमें सीख यही मिलती है कि पीढ़ियों का अंतर समस्या नहीं है, समस्या तब होती है जब हम एक दूसरे को समझने की कोशिश छोड़ देते हैं। नई पीढ़ी तकनीक सिखा सकती है और पुरानी पीढ़ी अनुभव, बस ज़रूरत है एक दूसरे की बात सुनने की। उम्मीद करूंगी आपको ये कहानी पसंद आएगी श्रोताओं, और ऐसी कहानियां हम कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला में लेकर आते रहते हैं। और अब समय हो गया है आपको गीत सुनवाने का, तो लीजिए इस प्यारे से गीत को एंजॉय कीजिए आपके अपने रेडियो सेट्स पर।

0: 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर श्रोताओं, आप सभी ने ट्यून किया है आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। अभी आपने गीत सुना श्रोताओं, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे फिल्म से, लता मंगेशकर और उदित नारायण की आवाज़ों में। और श्रोताओं, कार्यक्रम में आज हमने अपने बच्चों के बारे में बात की, युवा पीढ़ी की बात की कि एज अ पेरेंट्स हमें उन्हें सुविधाओं के साथ साथ अपना समय भी देना है, अपना आशीर्वाद और प्रेम भी देना है। साथ ही श्रोताओं, मोबाइल और स्क्रीन के बढ़ते इस्तेमाल के बीच आंखों की देखभाल भी बहुत ज़रूरी है। बच्चों की स्क्रीन आदतें, आंखों को आराम देना और नियमित जांच करवाना भी ज़रूरी है। साथ ही हम ये भी कहना चाहेंगे कि आजकल के बच्चे जो हैं वो अपना पोषण जो है वो सही से नहीं लेते हैं, और वैसे भी आप सभी आजकल सुन भी रहे हैं पोषण माह चल रहा है, और ऐसे में बच्चे जब खाना नहीं खाते हैं तो उनकी डिमांड रहती है कि बाहर से हमें कुछ ना कुछ लेके दिया जाए और उसे हम बड़े ही मज़े से वो लोग खाते हैं, चाहे वो पैकेट बंद खाना हो या बाहर से कुछ भी आप लेकर देते हैं। तो हमारा एक काम आजकल ये भी है कि बच्चों को अपने घर के अनाज के साथ, घर के भोजन के साथ जोड़ना भी बहुत ज़रूरी है। बाहर बनी हुई चीज़ों को हम अपने घर पर अपने हिसाब से बनाकर उन्हें खिला सकते हैं, जो कि बच्चों को खाने में भी अच्छा लगे और उनके स्वास्थ्य पर उसका कोई बुरा प्रभाव भी नहीं पड़ेगा। और साथ ही देखा जाता है श्रोताओं, आजकल के बच्चे जो हैं वो सब्जियों से थोड़ा सा परहेज़ रखते हैं, और जब बच्चा सब्जियां नहीं खाता है तो हम लोग उनके बच्चों के टिफ़िन में भी कोशिश करते हैं कि बच्चा खाना खा ले, उसके लिए सॉस या जैम ज़्यादातर डालते हैं, जो कि बच्चों की सेहत के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं रहता है। ऐसे में हम यही कहेंगे, चाहे बच्चे को थोड़ा थोड़ा करके ही आदत डालें, लेकिन सब्जियों की आदत ज़रूर डालें। और जब बच्चा स्कूल में अपने अन्य सहपाठियों के साथ बैठकर खाना खाता है तो वो चीज़ें भी खाता है जो आपको घर पर उन्हें खिलाने में मुश्किलात आती हैं। तो कोशिश आप भी कीजिए, और बाकी स्कूल वाले भी इस चीज़ के बारे में सोचते हैं और कोशिश करते हैं, लेकिन अगर हम उन्हें उन्हीं चीज़ों पर डिपेंड रखेंगे जो उन्हें पसंद है तो हम उन्हें वहीं तक रख पाएंगे। उनके सेहत के बारे में भी सोचना हमारे लिए बहुत बड़ा काम है। तो सेहत के साथ साथ उनके जो मनोस्थिति है उसके बारे में भी जानिए और उनसे बात कीजिए, और कोई परेशानी है तो उसका हल भी उन्हें निकाल कर दीजिए। कार्यक्रम में अब समय हो चुका है प्रादेशिक समाचारों का, तो हम अब आगे बढ़ेंगे और आपको लिए चलेंगे शिमला प्रादेशिक समाचारों की ओर।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अटल टनल रोहतांग का किया दौरा, सुरंग के तकनीकी पहलुओं की ली जानकारी, हिडिंबा माता मंदिर में की पूजा अर्चना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सार्वजनिक जीवन और शासन में सेवा के 25 वर्ष किए पूरे, जनता से मिले विश्वास को बताया बड़ी पूंजी। राज्य सरकार पथ परिवहन निगम को उपलब्ध करवाएगी 1500 नई ई बसें। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला में 108 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं के किए उद्घाटन व शिलान्यास। और भाजपा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक सेवा के 25 वर्ष पूरे होने पर विभिन्न कार्यक्रम किए आयोजित। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हिमाचल प्रदेश के 3 दिवसीय प्रवास के दूसरे दिन आज अटल टनल रोहतांग का दौरा किया। इस दौरान राज्यपाल कविंद्र गुप्ता भी मौजूद रहे। अटल टनल के नॉर्थ पोर्टल पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का स्थानीय लोगों ने पारंपरिक ढंग से स्वागत किया। तकनीकी शिक्षा मंत्री व राष्ट्रपति के प्रवास के दौरान मिनिस्टर इन वेटिंग राजेश धर्माणी ने राष्ट्रपति को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति मुर्मू ने अटल टनल की इंजीनियरिंग व निर्माण से जुड़े विभिन्न पहलुओं में गहरी रुचि ली और इसके तकनीकी पहलुओं की जानकारी हासिल की। राष्ट्रपति ने कहा कि अटल टनल ग्लोबल स्टैंडर्ड का एक इंजीनियरिंग चमत्कार है, जिसे सीमा सड़क संगठन ने बहुत मेहनत से बनाया है। उन्होंने कहा कि आइकॉनिक इंफ्रास्ट्रक्चर भारत की टेक्नोलॉजी की काबिलियत, पक्के इरादे और सबसे मुश्किल इलाकों में भी बिना रुकावट कनेक्टिविटी बनाए रखने की वचनबद्धता का सबूत है। बाद में राष्ट्रपति और राज्यपाल ने मनाली के ढोंगरी स्थित प्रसिद्ध हिडिंबा मंदिर में पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। उन्होंने देशवासियों के सुख समृद्धि, शांति व खुशहाली की कामना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दूरदर्शी नीतियों और कड़ी मेहनत के बल पर भारत वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने का अपना सपना जरूर पूरा करेगा। नई दिल्ली में आज विकसित भारत संकल्प सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जब उन्होंने 7 अक्टूबर 2001 को गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी तब उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन यह मुकाम आएगा। उन्होंने कहा कि आज सरकार के प्रमुख के रूप में लगातार 25 वर्ष की सेवा पूरी हो रही है।
2: 7 अक्टूबर 2001 को जब मैंने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी तब सोचा नहीं था कि कभी ये पड़ाव भी आएगा। आज मुझे हेड ऑफ द गवर्नमेंट के तौर पर निरंतर सेवा करते हुए 25 वर्ष पूरे हो गए। ये जनता जनार्दन के निरंतर आशीर्वाद का परिणाम है।
1: प्रधानमंत्री ने अपनी पूरी राजनीतिक यात्रा को देशवासियों के अटूट विश्वास और समर्थन का परिणाम बताया। उन्होंने कहा कि 25 वर्षों में जनता से मिला विश्वास और इस दौरान हासिल अनुभव उनकी बड़ी पूंजी है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि सरकार आने वाले समय में एचआरटीसी को 1500 नई ई बसें उपलब्ध करवाएगी। आज शिमला में राज्य पथ परिवहन निगम की कार्यप्रणाली की समीक्षा करते हुए उन्होंने निर्देश दिए कि नई बसों की न्यूनतम रेंज 350 किलोमीटर होनी चाहिए और वे हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी व कठिन भौगोलिक क्षेत्रों के अनुकूल हों। मुख्यमंत्री ने कहा कि एचआरटीसी को पहले ही 297 ई बसें उपलब्ध करवाई जा चुकी हैं और निगम को और अधिक आत्मनिर्भर बनाने के लिए इनकी संख्या में और वृद्धि की जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार हाइड्रोजन से संचालित बसें शुरू करने पर भी विचार कर रही है। उन्होंने बताया कि आने वाले समय में 100 ग्रीन हाइड्रोजन बसें और 100 सुपर डीलक्स बसें भी खरीदी जाएंगी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने चालान 2 पे पहल का शुभारंभ भी किया। इस बीच मुख्यमंत्री ने परिवहन विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता भी की। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि ई बसों के संचालन से एचआरटीसी को प्रति किलोमीटर 18.19 रुपए की बचत हो रही है। इस बीच मुख्यमंत्री ने आज शिमला में 108 करोड़ 16 लाख रुपए की लागत की 3 विकास परियोजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास किए। इनमें ऐतिहासिक रिज में किए गए सुधार व स्थिरीकरण कार्यों और पुराने बस अड्डे के पास श्री गुरुद्वारा साहिब के समीप नवनिर्मित पार्किंग व शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का लोकार्पण शामिल है। मुख्यमंत्री ने बालूगंज के समीप पशु पड़ाव में शिमला नगर निगम के कर्मचारियों के लिए बनने वाले आवासीय परिसर की आधारशिला भी रखी। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इसके बनने से शहर की सेवा में जुटे निगम कर्मचारियों को बेहतर आवास की सुविधा मिलेगी। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज़ को फॉलो कर सकते हैं। शेष समाचार इस अंतराल के बाद।
3: डॉक्टर साहब, मीनू बिटिया को अक्सर चक्कर आते रहते हैं, थकान भी बहुत लगती है, इसके हाथ पैर हमेशा ठंडे ही रहते हैं, देखो ना कैसी पीली पड़ गई है।
4: इसे एनीमिया है, इसके शरीर में आयरन की बहुत कमी है। इसे पूरा करने के लिए चुकंदर, टमाटर, गाजर और हरी पत्तेदार सब्जियों को लोहे की कढ़ाई में बनाकर खिलाओ और अभी कुछ दिनों के लिए आयरन की टैबलेट भी खिला सकती हो।
3: जी डॉक्टर साहब,
4: सिर्फ इसे नहीं सभी को एनीमिया से बचने के लिए ख्याल रखना चाहिए।
5: नेशनल हेल्थ मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
6: सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई।
7: लड़ी हक की लड़ाई, हिमाचल ने जीत पाई।
6: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के सशक्त नेतृत्व में प्रदेश हित को सर्वोपरि रखते हुए हिमाचल लगातार अपने हक और अधिकारों की आवाज बुलंद कर रहा है।
7: इसी दृढ़ संकल्प और निरंतर प्रयास का परिणाम है किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना में हिमाचल के हितों की ऐतिहासिक रक्षा।
6: समझौते के अनुसार हिमाचल प्रदेश को परियोजना पर बिना किसी खर्च के हर वर्ष 1000 मिलियन यूनिट बिजली मिलेगी,
7: जिससे प्रदेश को हर साल लगभग 1200 से 1500 करोड़ रुपए की आय होने का अनुमान है। यानी हिमाचल का हक भी सुरक्षित, प्रदेश का आर्थिक हित भी मजबूत।
6: मुख्यमंत्री ने हर मंच पर बुलंद की है हिमाचल के हक और अधिकारों की आवाज़।
7: प्रदेश के संसाधनों पर प्रदेशवासियों का हक सुनिश्चित करने की दिशा में एक और मजबूत कदम, आत्मनिर्भर हिमाचल के संकल्प के साथ वर्ष 2032 तक समृद्ध हिमाचल के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है प्रदेश।
6: लड़ी हक की लड़ाई,
7: हिमाचल ने जीत पाई। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में आपका फिर स्वागत है। बाकी समाचारों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक सेवा के ऐतिहासिक 25 वर्ष पूरे होने पर प्रदेश भाजपा द्वारा विभिन्न स्थानों पर आज विकसित भारत संकल्प सभा और सेवा ज्योति यात्रा का आयोजन किया गया। कुल्लू में आयोजित सेवा ज्योति यात्रा में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत आत्मनिर्भर और पूर्ण विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में अग्रसर है। जयराम ठाकुर ने कहा कि सेवा ज्योति यात्रा देश के प्रधानमंत्री के लगातार 25 वर्षों के सेवाकाल का प्रतीक है और उनका संकल्प देशवासियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है।
8: प्रधानमंत्री जी ने विशेष तौर से जो बात की, ये महत्व का विषय नहीं है कि मैंने 25 साल का कार्यकाल पूरा किया। महत्वपूर्ण ये है कि देश ने अपनी विकास यात्रा में बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव हासिल किया है, यानी कि देश हर क्षेत्र में आगे बढ़ा है, ये ज्यादा महत्व का विषय उनके लिए। प्रधानमंत्री जी ने साफ और स्पष्ट किया कि बिना लक्ष्य निर्धारित किए हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। 2047 तक भारत विकसित भारत के रूप में पूरी दुनिया में जाना जाए, उसके लिए हमको मजबूत कदम के साथ अपनी यात्रा आगे की शुरू करनी चाहिए।
1: नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि नरेंद्र मोदी के सशक्त और मजबूत नेतृत्व के कारण ही आज देश में वह कार्य भी संभव हो रहे हैं जिनकी कभी कल्पना की जाती थी। उन्होंने मोदी सरकार द्वारा धारा 370, अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण व प्रतिष्ठा और देश से आतंकवाद व नक्सलवाद का सफाया करने जैसे निर्णयों का जिक्र भी किया। इस अवसर पर सांसद कंगना रनौत व अन्य पार्टी कार्यकर्ता और नेता भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी व कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी सहित अन्य सांसदों को हिरासत में लिया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। वे आज शिमला स्थित लोकभवन के बाहर इन नेताओं को हिरासत में लिए जाने के विरोध में धरना प्रदर्शन का नेतृत्व करने के दौरान बोल रहे थे। इस दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए आवाज उठाई है जिसे कोई नहीं दबा सकता। मुख्यमंत्री सहित अन्य कांग्रेस नेताओं ने नारेबाजी करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकतंत्र की हत्या के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ता कल पूरे प्रदेश में धरना प्रदर्शन करेंगे।
9: आज हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने लोक भवन के बाहर प्रदर्शन किया है। कल हमने पूरे प्रदेश में धरने का कार्यक्रम बनाया है कि लोकतंत्र की हत्या की जा रही है और जिस प्रकार मुख्य विपक्षी दल के पार्टी के नेता राहुल गांधी जी को गिरफ्तार करके आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है, तो उस संदर्भ में पूरे प्रदेश में कल धरना प्रदर्शन होगा।
1: प्रदेश भाजपा प्रभारी श्रीकांत शर्मा ने चुनाव आयोग और SIR को लेकर कांग्रेस के विरोध पर तीखा हमला बोला है। शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी को सबसे पहले अपने दोहरे मापदंड का जवाब देना चाहिए। श्रीकांत शर्मा ने कहा कि कांग्रेस का सिद्धांत बड़ा स्पष्ट दिखाई देता है कि चुनाव जीते तो जनादेश, चुनाव हारे तो चुनाव आयोग जिम्मेदार। उन्होंने सवाल किया कि अगर किसी चुनाव में हार के आधार पर मुख्य चुनाव आयुक्त से इस्तीफा मांगा जा सकता है तो हिमाचल में EVM व बैलेट दोनों पर हार के बाद क्या मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से भी कांग्रेस इस्तीफा मांगेगी? अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अटल टनल रोहतांग का किया दौरा, सुरंग के तकनीकी पहलुओं की ली जानकारी, हिडिम्बा माता मंदिर में की पूजा अर्चना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सार्वजनिक जीवन और शासन में सेवा के 25 वर्ष किए पूरे, जनता से मिले विश्वास को बताया बड़ी पूंजी। राज्य सरकार पथ परिवहन निगम को उपलब्ध करवाएगी 1500 नई ई बसें। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला में 108 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं के किए उद्घाटन व शिलान्यास। और भाजपा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक सेवा के 25 वर्ष पूरे होने पर विभिन्न कार्यक्रम किए आयोजित। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:50 पर। नमस्कार।
0: 91.2 MHz पर श्रोताओं आप सभी ने ट्यून किया है आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि समाचारों के एकदम बाद हमारे कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला का समय भी समाप्ति की ओर बढ़ जाता है और वो समय आ गया है जब आपसे हमें लेनी पड़ेगी इजाज़त। तो चलते चलते आपको सुनवाएंगे 3 Idiots फिल्म का ये प्यारा सा गीत, और इस गीत के साथ अब अपनी रेडियो दोस्त सुषमा को दीजिए कार्यक्रम संपन्न करने की इजाज़त। आपसे फिर किसी दिन किसी और कार्यक्रम में होगी मुलाकात। तब तक के लिए गुड नाइट, जय हिंद।

नमस्कार दोस्तों, रेडियो गुंजन धर्मशाला से अब आप सभी सुनेंगे आज का ये न्यूज बुलेटिन। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों की हेडलाइंस पे। पीएम संकल्प पोर्टल के हेल्पलाइन खातों को हिम एक्सेस एसएसओ से जोड़ना अनिवार्य, एचएएस सहित अन्य पदों के लिए अब 15 तक करें ऑनलाइन आवेदन, जीएसटी में बड़े बदलाव की तैयारी। हर साल 1 अप्रैल से लागू होंगी नई दरें। 17 दिन में रिफंड का प्रस्ताव हिम केयर में अब मिलेगा। 10 लाख का स्वास्थ्य कवच धर्मशाला और रामपुर में बनेंगे वन्य जीव अनुसंधान फील्ड सेंटर। एम्स बिलासपुर में अगले साल से मिलेंगी बोन मैरो व लिवर ट्रांसप्लांट की सुविधाएं। हिमाचल प्रदेश के डिग्री व संस्कृत कॉलेजों, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग सोलन और सरकारी शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय धर्मशाला के अधिकारियों के लिए पीएम संकल्प 1100 हेल्पलाइन खातों को तत्काल हिम एक्सेस सिंगल साइन ऑन एसएसओ पोर्टल पर माइग्रेट करना अनिवार्य करने के बारे में है। उच्चतर शिक्षा निदेशालय ने सभी संस्थान प्रमुखों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने अधिकारियों के हेल्पलाइन खातों को तुरंत ट्रांसफर करवाएं और उन्हें पूरी तरह एक्टिव रखें ताकि पोर्टल पर आने वाली जन शिकायतों का समय पर निपटारा किया जा सके। डिजिटल प्रौद्योगिकी एवं शासन विभाग के अनुसार पहले आदेश देने के बावजूद अभी भी 79 कॉलेजों ने नियमों का पालन नहीं किया है, जिसके कारण ये सख्त निर्देश जारी किया गया है। किसी भी तकनीकी समस्या के लिए अधिकारी हेल्प डेस्क या नोडल अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2026 के तहत एचएएस के अलावा विभिन्न विभागों में पदों को भरने के लिए ऑनलाइन आवेदन की तिथि अब 15 अक्टूबर तक बढ़ा दी है। भर्ती प्रक्रिया में 13 और पद शामिल किए जाने के बाद हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग ने ऑनलाइन पोर्टल फिर खोल दिया है। इस भर्ती प्रक्रिया के तहत अब असिस्टेंट कमिश्नर स्टेट टैक्स एंड एक्साइज के 13 पद शामिल किए गए हैं। इस संबंध में मंगलवार को आयोग ने सूचना जारी की। इससे पहले बीते अगस्त माह में हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2026 के तहत कार्मिक विभाग में एचएएस के 4 पद, ग्रामीण विकास विभाग में ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के 10 पद, वित्त विभाग कोषागार में जिला ट्रेजरी ऑफिसर का 1 पद, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग में जिला नियंत्रक का 1 पद और राजस्व विभाग में तहसीलदार के 6 पदों के लिए आवेदन मांगे थे। असिस्टेंट कमिश्नर स्टेट टैक्स एंड एक्साइज के 13 पद शामिल होने

अब कुल 35 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया अमल में लाई जाएगी। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग ने स्वास्थ्य शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल GI सर्जरी सुपर स्पेशलिटी का एक पद भरने के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। वस्तु एवं सेवा कर GST व्यवस्था को अधिक सरल और कारोबार के अनुकूल बनाने के लिए सरकार ने प्रक्रिया में कई अहम बदलावों की दिशा में कदम बढ़ाया है। प्रस्तावित व्यवस्था के तहत GST दरों में बदलाव हर साल 1 अप्रैल से लागू किए जाएंगे। इससे कारोबारियों और कंपनियों को पूरे वित्त वर्ष के लिए टैक्स दरों को लेकर बेहतर स्पष्टता मिल सकेगी। इसके साथ ही GST रिफंड की प्रक्रिया को तेज करने की भी तैयारी है। पात्र मामलों में अधिकतम 17 दिनों के भीतर रिफंड जारी करने की व्यवस्था प्रस्तावित है। सरकार का मानना है कि इससे कारोबारियों की वर्किंग कैपिटल से जुड़ी समस्या कम होगी और टैक्स व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ेगी। सरकार जल्द ही इनवॉइस मैचिंग सॉफ्टवेयर लॉन्च करने की तैयारी में है। इसके जरिए खरीद और बिक्री से जुड़े इनवॉइस के बीच होने वाले अंतर को पहले ही पहचानने में मदद मिलेगी। इससे इनवॉइस मिसमैच के कारण जारी होने वाले शो कॉज नोटिस की संख्या कम होने की उम्मीद है। सरकार के मुताबिक फिलहाल 61% GST रजिस्ट्रेशन 34 मिनट से कम समय में पूरे हो रहे हैं। नई प्रक्रिया के जरिए रजिस्ट्रेशन को और आसान और तेज बनाने पर जोर दिया जा रहा है। डायरेक्ट टैक्स सिस्टम की तर्ज पर GST प्रशासन को भी फेसलेस बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है। शुरुआती चरण में यह व्यवस्था केवल फी GST से जुड़े मामलों में लागू किए जाने की योजना है। इसका उद्देश्य अधिकारियों और करदाताओं के बीच प्रत्यक्ष संपर्क कम करके प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाना है। GST काउंसिल की 57वीं बैठक की तारीख में बदलाव किया गया है। अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण अब यह बैठक गुरुवार 8 अक्टूबर को नई दिल्ली स्थित भारत मंडप में के समिट रूम में सुबह 11 बजे से आयोजित होगी। प्रस्तावित बदलावों में खरीदारों के हितों का भी ध्यान रखा गया है। यदि किसी मामले में विक्रेता GST का भुगतान नहीं करता है तो केवल इस वजह से खरीदार का रिफंड अटकने से बचाने की व्यवस्था की जाएगी। इससे नियमों का पालन करने वाले कारोबारियों को राहत मिलने की उम्मीद है। हिमाचल सरकार की प्रमुख स्वास्थ्य सुरक्षा योजना हिमकेयर अब नए बीमा मॉडल और बढ़े हुए स्वास्थ्य कवर के साथ सामने आने जा रही है। सरकार ने योजना के तहत प्रति परिवार सालाना स्वास्थ्य सुरक्षा कवच को 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपए करने का प्रस्ताव तैयार किया है। नए मॉडल में 5 लाख रुपए का बेसिक कवर और 5 लाख रुपए का टॉपअप कवर होगा। इससे प्रदेश के करीब 10 लाख परिवारों को स्वास्थ्य सुरक्षा के दायरे में लाने का लक्ष्य रखा गया है। नई व्यवस्था में केवल स्वास्थ्य कवर ही नहीं बढ़ेगा बल्कि हिमकेयर के संचालन और निगरानी का तरीका भी बदलेगा। फर्जी अस्पतालों, फर्जी बिलिंग, डुप्लीकेट क्लेम और सरकारी धन के दुरुपयोग पर रोक लगाने के लिए बीमा कंपनी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI और मशीन लर्निंग आधारित डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम अनिवार्य किया गया है। हिमकेयर के नए मॉडल में बीमा कंपनी के साथ अनुबंध की अवधि भी बढ़ाई जा रही है। चयनित कंपनी के साथ 1 साल की जगह 1095 दिन यानी 3 वर्ष का करार प्रस्तावित है। नई बीमा कंपनी के चयन के लिए टेंडर जारी कर दिया है। कंपनियां 12 अक्टूबर शाम 5 बजे तक आवेदन कर सकती हैं। तकनीकी बिड 13 अक्टूबर सुबह 11 बजे खोली जाएगी। प्री बिडिंग बैठक में 10 कंपनियों ने रुचि दिखाई है। हिमाचल में बढ़ते मानव वन्य जीव संघर्ष को समझने और इसके समाधान के लिए अब वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन किया जाएगा। कोयम्बटूर स्थित सलीम अली सेंटर फॉर ऑर्निथोलॉजी एंड नेचुरल हिस्ट्री सैकॉन की टीमें इस काम के लिए धर्मशाला और शिमला जिला में रामपुर के सराहा में फील्ड सेंटर स्थापित करेंगी। हालांकि पहले चंबा के कुकटी में सेंटर बनाने की योजना थी लेकिन फिलहाल इसे धर्मशाला में ही स्थापित करने की अब योजना है। संबंधित क्षेत्रों में भालू की मौजूदगी और मानव भालू संघर्ष की घटनाएं सामने आती रही हैं। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के एक प्रोजेक्ट के तहत हिमाचल और उत्तराखंड में मानव वन्य जीव संघर्ष को लेकर रिसर्च की जानी है। इसके लिए सैकॉन के विशेषज्ञों की टीम दोनों राज्यों का दौरा कर चुकी है। अध्ययन के दौरान टीमों की ओर से उन क्षेत्रों का मौके पर जाकर आकलन किया जाएगा जहां इंसानों और वन्य जीवों के बीच लगातार संघर्ष हो रहा है। इसमें भालू और तेंदुए के हमले, फसलों को होने वाला नुकसान और स्थानीय लोगों की आजीविका पर पड़ने वाले असर की जानकारी जुटाई जाएगी। इसके लिए घटनाओं का जियोटैग डाटा भी तैयार किया जाएगा। रामपुर के सराहा में भी फील्ड सेंटर स्थापित कर भालू से संबंधित घटनाओं का रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा। कांगड़ा, हमीरपुर और बिलासपुर जैसे जिलों में मानव तेंदुआ संघर्ष की स्थिति का आकलन किया जाएगा। मानव

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स बिलासपुर में स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में नई सुविधाएं शुरू हो रही हैं। संस्थान में आगामी वर्ष से बोन मैरो ट्रांसप्लांट, लिवर ट्रांसप्लांट तथा कैंसर के अत्याधुनिक उपचार के लिए थेरानोस्टिक पद्धति की शुरुआत की जाएगी। इसके साथ ही प्रदेश के ग्रामीण व दुर्गम इलाकों में मातृ एवं शिशु मृत्यु दर पर अंकुश लगाने के लिए सभी सुविधाओं के युक्त मातृ शिशु केंद्र की स्थापना की जा रही है। एम्स बिलासपुर में शुरू होने जा रही थेरानोस्टिक पद्धति कैंसर जैसी जानलेवा बीमारियों के खिलाफ जन्म में एक मील का पत्थर साबित होगी। यह अस्पताल का एक ऐसा अत्याधुनिक और विशिष्ट विभाग होगा जहां एक ही छत के नीचे कैंसर का सटीक निदान और लक्षित उपचार एक साथ किया जा सकेगा। इस तकनीक की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह शरीर की स्वस्थ कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाए बिना केवल कैंसर ग्रस्त कोशिकाओं को चिन्हित कर उन्हें नष्ट करने में सक्षम होती है। इससे मरीजों को कम समय में अधिक प्रभावी और सुरक्षित इलाज मिल सकेगा। एम्स प्रबंधन द्वारा स्थापित किए जा रहे मातृ शिशु केंद्र में एक एडवांस लेवल टेली मेडिसिन केयर सेंटर भी तैयार किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य हिमाचल के सुदूर पहाड़ी और ग्रामीण क्षेत्रों में गर्भवती महिलाओं और नवजात की मृत्यु दर को न्यूनतम स्तर

नमस्कार दोस्तों, रेडियो गुंजन धर्मशाला से अब आप सभी सुनेंगे आज का ये न्यूज बुलेटिन। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों की हेडलाइंस पे। पीएम संकल्प पोर्टल के हेल्पलाइन खातों को हिम एक्सेस एसएसओ से जोड़ना अनिवार्य, एचएएस सहित अन्य पदों के लिए अब 15 तक करें ऑनलाइन आवेदन, जीएसटी में बड़े बदलाव की तैयारी। हर साल 1 अप्रैल से लागू होंगी नई दरें। 17 दिन में रिफंड का प्रस्ताव हिम केयर में अब मिलेगा। 10 लाख का स्वास्थ्य कवच धर्मशाला और रामपुर में बनेंगे वन्य जीव अनुसंधान फील्ड सेंटर। एम्स बिलासपुर में अगले साल से मिलेंगी बोन मैरो व लिवर ट्रांसप्लांट की सुविधाएं। हिमाचल प्रदेश के डिग्री व संस्कृत कॉलेजों, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग सोलन और सरकारी शिक्षा महाविद्यालय धर्मशाला के अधिकारियों के लिए पीएम संकल्प 1100 हेल्पलाइन खातों को तत्काल हिम एक्सेस सिंगल साइन ऑन एसएसओ पोर्टल पर माइग्रेट करना अनिवार्य करने के बारे में है। उच्चतर शिक्षा निदेशालय ने सभी संस्थान प्रमुखों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने अधिकारियों के हेल्पलाइन खातों को तुरंत ट्रांसफर करवाएं और उन्हें पूरी तरह एक्टिव रखें ताकि पोर्टल पर आने वाली जन शिकायतों का समय पर निपटारा किया जा सके। डिजिटल प्रौद्योगिकी एवं शासन विभाग के अनुसार पहले आदेश देने के बावजूद अभी भी 79 कॉलेजों ने नियमों का पालन नहीं किया है, जिसके कारण ये सख्त निर्देश जारी किया गया है। किसी भी तकनीकी समस्या के लिए अधिकारी हेल्प डेस्क या नोडल अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2026 के तहत एचएएस के अलावा विभिन्न विभागों में पदों को भरने के लिए ऑनलाइन आवेदन की तिथि अब 15 अक्टूबर तक बढ़ा दी है। भर्ती प्रक्रिया में 13 और पद शामिल किए जाने के बाद हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग ने ऑनलाइन पोर्टल फिर खोल दिया है। इस भर्ती प्रक्रिया के तहत अब असिस्टेंट कमिश्नर स्टेट टैक्स एंड एक्साइज के 13 पद शामिल किए गए हैं। इस संबंध में मंगलवार को आयोग ने सूचना जारी की। इससे पहले बीते अगस्त माह में हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2026 के तहत कार्मिक विभाग में एचएएस के 4 पद, ग्रामीण विकास विभाग में ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के 10 पद, वित्त विभाग कोषागार में जिला ट्रेजरी ऑफिसर का 1 पद, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग में जिला नियंत्रक का 1 पद और राजस्व विभाग में तहसीलदार के 6 पदों के लिए आवेदन मांगे थे। असिस्टेंट कमिश्नर स्टेट टैक्स एंड एक्साइज के 13 पद शामिल होने से अब कुल 35 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया अमल में लाई जाएगी। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग ने स्वास्थ्य शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल जीआई सर्जरी सुपर स्पेशलिटी का 1 पद भरने के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी व्यवस्था को अधिक सरल और कारोबार के अनुकूल बनाने के लिए सरकार ने प्रक्रिया में कई अहम बदलावों की दिशा में कदम बढ़ाया है। प्रस्तावित व्यवस्था के तहत जीएसटी दरों में बदलाव हर साल 1 अप्रैल से लागू किए जाएंगे। इससे कारोबारियों और कंपनियों को पूरे वित्त वर्ष के लिए टैक्स दरों को लेकर बेहतर स्पष्टता मिल सकेगी। इसके साथ ही जीएसटी रिफंड की प्रक्रिया को तेज करने की भी तैयारी है। पात्र मामलों में अधिकतम 17 दिनों के भीतर रिफंड जारी करने की व्यवस्था प्रस्तावित है। सरकार का मानना है कि इससे कारोबारियों की वर्किंग कैपिटल से जुड़ी समस्या कम होगी और टैक्स व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ेगी। सरकार जल्द ही इनवॉइस मैचिंग सॉफ्टवेयर लॉन्च करने की तैयारी में है। इसके जरिए खरीद और बिक्री से जुड़े इनवॉइस के बीच होने वाले अंतर को पहले ही पहचानने में मदद मिलेगी। इससे इनवॉइस मिसमैच के कारण जारी होने वाले शो कॉज नोटिस की संख्या कम होने की उम्मीद है।

0: सरकार के मुताबिक फिलहाल 61% जीएसटी रजिस्ट्रेशन 34 मिनट से कम समय में पूरे हो रहे हैं। नई प्रक्रिया के जरिए रजिस्ट्रेशन को और आसान और तेज बनाने पर जोर दिया जा रहा है। डायरेक्ट टैक्स सिस्टम की तर्ज पर जीएसटी प्रशासन को भी फेसलेस बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है। शुरुआती चरण में यह व्यवस्था केवल फी जीएसटी से जुड़े मामलों में लागू किए जाने की योजना है। इसका उद्देश्य अधिकारियों और करदाताओं के बीच प्रत्यक्ष संपर्क कम करके प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाना है। जीएसटी काउंसिल की 57वीं बैठक की तारीख में बदलाव किया गया है। अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण अब यह बैठक गुरुवार 8 अक्टूबर को नई दिल्ली स्थित भारत मंडप के समिट रूम में सुबह 11 बजे से आयोजित होगी। प्रस्तावित बदलावों में खरीदारों के हितों का भी ध्यान रखा गया है। यदि किसी मामले में विक्रेता जीएसटी का भुगतान नहीं करता है तो केवल इस वजह से खरीदार का रिफंड अटकने से बचाने की व्यवस्था की जाएगी। इससे नियमों का पालन करने वाले कारोबारियों को राहत मिलने की उम्मीद है। हिमाचल सरकार की प्रमुख स्वास्थ्य सुरक्षा योजना हिमकेयर अब नए बीमा मॉडल और बढ़े हुए स्वास्थ्य कवर के साथ सामने आने जा रही है। सरकार ने योजना के तहत प्रति परिवार सालाना स्वास्थ्य सुरक्षा कवच को 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपए करने का प्रस्ताव तैयार किया है। नए मॉडल में 5 लाख रुपए का बेसिक कवर और 5 लाख रुपए का टॉपअप कवर होगा। इससे प्रदेश के करीब 10 लाख परिवारों को स्वास्थ्य सुरक्षा के दायरे में लाने का लक्ष्य रखा गया है। नई व्यवस्था में केवल स्वास्थ्य कवर ही नहीं बढ़ेगा बल्कि हिमकेयर के संचालन और निगरानी का तरीका भी बदलेगा। फर्जी अस्पतालों, फर्जी बिलिंग, डुप्लीकेट क्लेम और सरकारी धन के दुरुपयोग पर रोक लगाने के लिए बीमा कंपनी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI और मशीन लर्निंग आधारित डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम अनिवार्य किया गया है। हिमकेयर के नए मॉडल में बीमा कंपनी के साथ अनुबंध की अवधि भी बढ़ाई जा रही है। चयनित कंपनी के साथ 1 साल की जगह 1095 दिन यानी 3 वर्ष का करार प्रस्तावित है। नई बीमा कंपनी के चयन के लिए टेंडर जारी कर दिया है। कंपनियां 12 अक्टूबर शाम 5 बजे तक आवेदन कर सकती हैं। तकनीकी बिड 13 अक्टूबर सुबह 11 बजे खोली जाएगी। प्री बिडिंग बैठक में 10 कंपनियों ने रुचि दिखाई है। हिमाचल में बढ़ते मानव वन्यजीव संघर्ष को समझने और इसके समाधान के लिए अब वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन किया जाएगा। कोयम्बटूर स्थित सलीम अली सेंटर फॉर ऑर्निथोलॉजी एंड नेचुरल हिस्ट्री सैकॉन की टीमें इस काम के लिए धर्मशाला और शिमला जिला में रामपुर के सराहा में फील्ड सेंटर स्थापित करेंगी। हालांकि पहले चंबा के कुकती में सेंटर बनाने की योजना थी लेकिन फिलहाल इसे धर्मशाला में ही स्थापित करने की अब योजना है। संबंधित क्षेत्रों में भालू की मौजूदगी और मानव भालू संघर्ष की घटनाएं सामने आती रही हैं। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के एक प्रोजेक्ट के तहत हिमाचल और उत्तराखंड में मानव वन्यजीव संघर्ष को लेकर रिसर्च की जानी है। इसके लिए सैकॉन के विशेषज्ञों की टीम दोनों राज्यों का दौरा कर चुकी है। अध्ययन के दौरान टीमों की ओर से उन क्षेत्रों का मौके पर जाकर आकलन किया जाएगा जहां इंसानों और वन्य जीवों के बीच लगातार संघर्ष हो रहा है। इसमें भालू और तेंदुए के हमले, फसलों को होने वाला नुकसान और स्थानीय लोगों की आजीविका पर पड़ने वाले असर की जानकारी जुटाई जाएगी। इसके लिए घटनाओं का जियोटैग डाटा भी तैयार किया जाएगा। रामपुर के सराहा में भी फील्ड सेंटर स्थापित कर भालू से संबंधित घटनाओं का रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा। कांगड़ा, हमीरपुर और बिलासपुर जैसे जिलों में मानव तेंदुआ संघर्ष की स्थिति का आकलन किया जाएगा। मानव और वन्यजीवों के बीच बढ़ते टकराव के पीछे कृषि भूमि का विस्तार, शहरीकरण और सड़कों का निर्माण भी प्रमुख कारण बताए गए हैं। इन गतिविधियों से वन्यजीवों के प्राकृतिक आवास में कमी आने की बात अध्ययन में सामने आई है। ऐसे में वन्यजीव भोजन और सुरक्षित स्थान की तलाश में मानव बस्तियों के नज़दीक पहुँच रहे हैं। मानव वन्यजीव संघर्ष के इस नए अध्ययन में शुरुआती चरण में 10 वन मंडलों को शामिल किया गया है। इन वन मंडलों में उन क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के लोगों को अब गंभीर और जटिल बीमारियों के इलाज के लिए देश के बड़े महानगरों का रुख नहीं करना पड़ेगा। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स बिलासपुर में स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में नई सुविधाएं शुरू हो रही हैं। संस्थान में आगामी वर्ष से बोन मैरो ट्रांसप्लांट, लिवर ट्रांसप्लांट तथा कैंसर के अत्याधुनिक उपचार के लिए थेरानोस्टिक पद्धति की शुरुआत की जाएगी। इसके साथ ही प्रदेश के ग्रामीण व दुर्गम इलाकों में मातृ एवं शिशु मृत्यु दर पर अंकुश लगाने के लिए सभी सुविधाओं के युक्त मातृ शिशु केंद्र की स्थापना की जा रही है। एम्स बिलासपुर में शुरू होने जा रही थेरानोस्टिक पद्धति कैंसर जैसी जानलेवा बीमारियों के खिलाफ जंग में एक मील का पत्थर साबित होगी। यह अस्पताल का एक ऐसा अत्याधुनिक और विशिष्ट विभाग होगा जहां एक ही छत के नीचे कैंसर का सटीक निदान और लक्षित उपचार एक साथ किया जा सकेगा। इस तकनीक की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह शरीर की स्वस्थ कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाए बिना केवल कैंसर ग्रस्त कोशिकाओं को चिन्हित कर उन्हें नष्ट करने में सक्षम होती है। इससे मरीजों को कम समय में अधिक प्रभावी और सुरक्षित इलाज मिल सकेगा। एम्स प्रबंधन द्वारा स्थापित किए जा रहे मातृ शिशु केंद्र में एक एडवांस लेवल टेली मेडिसिन केयर सेंटर भी तैयार किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य हिमाचल के सुदूर पहाड़ी और ग्रामीण क्षेत्रों में गर्भवती महिलाओं और नवजात की मृत्यु दर को
1: 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर हम बोल रहे हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला से। श्रोताओं, कार्यक्रम है गीत सुहाने नए पुराने और आज इस कार्यक्रम में आपके साथ हूँ मैं आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया।

गीत सुहाने नए पुराने, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं मेरे साथ। मैं हूँ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति और आप हमें सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर।

आप सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो रेडियो गुंजन धर्मशाला, फ्रीक्वेंसी है 91.2 FM। ये सुहानी नई पुरानी कार्यक्रम में आपके साथ हूँ मैं, आपकी रेडियो होस्ट ज्योति।

अपनी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया के साथ इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहानी नई पुरानी 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर।

गीत सुहाने नई पुरानी 91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं ये कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में आज आपकी रेडियो होस्ट हूँ मैं ज्योति पठानिया।

गीत सुहाने नए पुराने, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं मेरे साथ। मैं हूँ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति और आप हमें सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर।

आप सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो रेडियो गुंजन धर्मशाला, फ्रीक्वेंसी है 91.2 FM। ये सुहाने नए पुराने कार्यक्रम में आपके साथ हूँ मैं आपकी रेडियो होस्ट ज्योति।

आप सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो रेडियो गुंजन धर्मशाला, फ्रीक्वेंसी है 91.2 FM। ये सुहानी नई पुरानी कार्यक्रम में आपके साथ हूँ मैं, आपकी रेडियो होस्ट ज्योति।

नमस्कार दोस्तों, रेडियो गुंजन धर्मशाला से अब आप सभी सुनेंगे आज का ये न्यूज बुलेटिन। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों की हेडलाइंस पे। पीएम संकल्प पोर्टल के हेल्पलाइन खातों को हिम एक्सेस एसएसओ से जोड़ना अनिवार्य, एचएएस सहित अन्य पदों के लिए अब 15 तक करें ऑनलाइन आवेदन, जीएसटी में बड़े बदलाव की तैयारी। हर साल 1 अप्रैल से लागू होंगी नई दरें। 17 दिन में रिफंड का प्रस्ताव हिम केयर में अब मिलेगा। 10 लाख का स्वास्थ्य कवच धर्मशाला और रामपुर में बनेंगे वन्य जीव अनुसंधान फील्ड सेंटर। एम्स बिलासपुर में अगले साल से मिलेंगी बोन मैरो व लिवर ट्रांसप्लांट की सुविधाएं। हिमाचल प्रदेश के डिग्री व संस्कृत कॉलेजों, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग सोलन और सरकारी शिक्षा महाविद्यालय धर्मशाला के अधिकारियों के लिए सीएम संकल्प 1100 हेल्पलाइन खातों को तत्काल हिम एक्सेस सिंगल साइन ऑन एसएसओ पोर्टल पर माइग्रेट करना अनिवार्य करने के बारे में है। उच्चतर शिक्षा निदेशालय ने सभी संस्थान प्रमुखों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने अधिकारियों के हेल्पलाइन खातों को तुरंत ट्रांसफर करवाएं और उन्हें पूरी तरह एक्टिव रखें ताकि पोर्टल पर आने वाली जन शिकायतों का समय पर निपटारा किया जा सके। डिजिटल प्रौद्योगिकी एवं शासन विभाग के अनुसार पहले आदेश देने के बावजूद अभी भी 79 कॉलेजों ने नियमों का पालन नहीं किया है, जिसके कारण ये सख्त निर्देश जारी किया गया है। किसी भी तकनीकी समस्या के लिए अधिकारी हेल्प डेस्क या नोडल अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2026 के तहत एचएएस के अलावा विभिन्न विभागों में पदों को भरने के लिए ऑनलाइन आवेदन की तिथि अब 15 अक्टूबर तक बढ़ा दी है। भर्ती प्रक्रिया में 13 और पद शामिल किए जाने के बाद हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग ने ऑनलाइन पोर्टल फिर खोल दिया है। इस भर्ती प्रक्रिया के तहत अब असिस्टेंट कमिश्नर स्टेट टैक्स एंड एक्साइज के 13 पद शामिल किए गए हैं। इस संबंध में मंगलवार को आयोग ने सूचना जारी की। इससे पहले बीते अगस्त माह में हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2026 के तहत कार्मिक विभाग में एचएएस के 4 पद, ग्रामीण विकास विभाग में ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के 10 पद, वित्त विभाग कोषागार में जिला ट्रेजरी ऑफिसर का 1 पद, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग में जिला नियंत्रक का 1 पद और राजस्व विभाग में तहसीलदार के 6 पदों के लिए आवेदन मांगे थे। असिस्टेंट कमिश्नर स्टेट टैक्स एंड एक्साइज के 13 पद शामिल होने से अब कुल 35 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया अमल में लाई जाएगी। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग ने स्वास्थ्य शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल जीआई सर्जरी सुपर स्पेशलिटी का 1 पद भरने के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी व्यवस्था को अधिक सरल और कारोबार के अनुकूल बनाने के लिए सरकार ने प्रक्रिया में कई अहम बदलावों की दिशा में कदम बढ़ाया है। प्रस्तावित व्यवस्था के तहत जीएसटी दरों में बदलाव हर साल 1 अप्रैल से लागू किए जाएंगे। इससे कारोबारियों और कंपनियों को पूरे वित्त वर्ष के लिए टैक्स दरों को लेकर बेहतर स्पष्टता मिल सकेगी। इसके साथ ही जीएसटी रिफंड की प्रक्रिया को तेज करने की भी तैयारी है। पात्र मामलों में अधिकतम 17 दिनों के भीतर रिफंड जारी करने की व्यवस्था प्रस्तावित है। सरकार का मानना है कि इससे कारोबारियों की वर्किंग कैपिटल से जुड़ी समस्या कम होगी और टैक्स व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ेगी। सरकार जल्द ही इनवॉइस मैचिंग सॉफ्टवेयर लॉन्च करने की तैयारी में है। इसके जरिए खरीद और बिक्री से जुड़े इनवॉइस के बीच होने वाले अंतर को पहले ही पहचानने में मदद मिलेगी। इससे इनवॉइस मिसमैच के कारण जारी होने वाले शो कॉज नोटिस की संख्या कम होने की उम्मीद है। सरकार के मुताबिक फिलहाल 61% जीएसटी रजिस्ट्रेशन 34 मिनट से कम समय में पूरे हो रहे हैं। नई प्रक्रिया के जरिए रजिस्ट्रेशन को और आसान और तेज बनाने पर जोर दिया जा रहा है। डायरेक्ट टैक्स सिस्टम की तर्ज पर जीएसटी प्रशासन को भी फेसलेस बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है। शुरुआती चरण में यह व्यवस्था केवल फी जीएसटी से जुड़े मामलों में लागू किए जाने की योजना है। इसका उद्देश्य अधिकारियों और करदाताओं के बीच प्रत्यक्ष संपर्क कम करके प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाना है। जीएसटी काउंसिल की 57वीं बैठक की तारीख में बदलाव किया गया है। अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण अब यह बैठक गुरुवार 8 अक्टूबर को नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम के समिट रूम में सुबह 11 बजे से आयोजित होगी। प्रस्तावित बदलावों में खरीदारों के हितों का भी ध्यान रखा गया है। यदि किसी मामले में विक्रेता जीएसटी का भुगतान नहीं करता है तो केवल इस वजह से खरीदार का रिफंड अटकने से बचाने की व्यवस्था की जाएगी। इससे नियमों का पालन करने वाले कारोबारियों को राहत मिलने की उम्मीद है।
हिमाचल सरकार की प्रमुख स्वास्थ्य सुरक्षा योजना हिमकेयर अब नए बीमा मॉडल और बढ़े हुए स्वास्थ्य कवर के साथ सामने आने जा रही है। सरकार ने योजना के तहत प्रति परिवार सालाना स्वास्थ्य सुरक्षा कवच को 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपए करने का प्रस्ताव तैयार किया है। नए मॉडल में 5 लाख रुपए का बेसिक कवर और 5 लाख रुपए का टॉपअप कवर होगा। इससे प्रदेश के करीब 10 लाख परिवारों को स्वास्थ्य सुरक्षा के दायरे में लाने का लक्ष्य रखा गया है। नई व्यवस्था में केवल स्वास्थ्य कवर ही नहीं बढ़ेगा बल्कि हिमकेयर के संचालन और निगरानी का तरीका भी बदलेगा। फर्जी अस्पतालों, फर्जी बिलिंग, डुप्लीकेट क्लेम और सरकारी धन के दुरुपयोग पर रोक लगाने के लिए बीमा कंपनी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI और मशीन लर्निंग आधारित डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम अनिवार्य किया गया है। हिमकेयर के नए मॉडल में बीमा कंपनी के साथ अनुबंध की अवधि भी बढ़ाई जा रही है। चयनित कंपनी के साथ 1 साल की जगह 1095 दिन यानी 3 वर्ष का करार प्रस्तावित है। नई बीमा कंपनी के चयन के लिए टेंडर जारी कर दिया है। कंपनियां 12 अक्टूबर शाम 5 बजे तक आवेदन कर सकती हैं। तकनीकी बिड 13 अक्टूबर सुबह 11 बजे खोली जाएगी। प्री बिडिंग बैठक में 10 कंपनियों ने रुचि दिखाई है। हिमाचल में बढ़ते मानव वन्य जीव संघर्ष को समझने और इसके समाधान के लिए अब वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन किया जाएगा। कोयम्बटूर स्थित सलीम अली सेंटर फॉर ऑर्निथोलॉजी एंड नेचुरल हिस्ट्री सैकॉन की टीमें इस काम के लिए धर्मशाला और शिमला जिला में रामपुर के सराहा में फील्ड सेंटर स्थापित करेंगी। हालांकि पहले चंबा के कुकती में सेंटर बनाने की योजना थी लेकिन फिलहाल इसे धर्मशाला में ही स्थापित करने की अब योजना है। संबंधित क्षेत्रों में भालू की मौजूदगी और मानव भालू संघर्ष की घटनाएं सामने आती रही हैं। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के एक प्रोजेक्ट के तहत हिमाचल और उत्तराखंड में मानव वन्य जीव संघर्ष को लेकर रिसर्च की जानी है। इसके लिए सैकॉन के विशेषज्ञों की टीम दोनों राज्यों का दौरा कर चुकी है। अध्ययन के दौरान टीमों की ओर से उन क्षेत्रों का मौके पर जाकर आकलन किया जाएगा जहां इंसानों और वन्य जीवों के बीच लगातार संघर्ष हो रहा है। इसमें भालू और तेंदुए के हमले, फसलों को होने वाला नुकसान और स्थानीय लोगों की आजीविका पर पड़ने वाले असर की जानकारी जुटाई जाएगी। इसके लिए घटनाओं का जियोटैग डाटा भी तैयार किया जाएगा। रामपुर के सराहा में भी फील्ड सेंटर स्थापित कर भालू से संबंधित घटनाओं का रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा। कांगड़ा, हमीरपुर और बिलासपुर जैसे जिलों में मानव तेंदुआ संघर्ष की स्थिति का आकलन किया जाएगा। मानव और वन्य जीवों के बीच बढ़ते टकराव के पीछे कृषि भूमि का विस्तार, शहरीकरण और सड़कों का निर्माण भी प्रमुख कारण बताए गए हैं। इन गतिविधियों से वन्य जीवों के प्राकृतिक आवास में कमी आने की बात अध्ययन में सामने आई है। ऐसे में वन्य जीव भोजन और सुरक्षित स्थान की तलाश में मानव बस्तियों के नज़दीक पहुँच रहे हैं। मानव वन्यजीव संघर्ष के इस नए अध्ययन में शुरुआती चरण में 10 वन मंडलों को शामिल किया गया है। इन वन मंडलों में उन क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के लोगों को अब गंभीर और जटिल बीमारियों के इलाज के लिए देश के बड़े महानगरों का रुख नहीं करना पड़ेगा। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स बिलासपुर में स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में नई सुविधाएं शुरू हो रही हैं। संस्थान में आगामी वर्ष से बोन मैरो ट्रांसप्लांट, लिवर ट्रांसप्लांट तथा कैंसर के अत्याधुनिक उपचार के लिए थेरानोस्टिक पद्धति की शुरुआत की जाएगी। इसके साथ ही प्रदेश के ग्रामीण व दुर्गम इलाकों में मातृ एवं शिशु मृत्यु दर पर अंकुश लगाने के लिए सभी सुविधाओं के युक्त मातृ शिशु केंद्र की स्थापना की जा रही है। एम्स बिलासपुर में शुरू होने जा रही थेरानोस्टिक पद्धति कैंसर जैसी जानलेवा बीमारियों के खिलाफ जंग में एक मील का पत्थर साबित होगी। यह अस्पताल का एक ऐसा अत्याधुनिक और विशिष्ट विभाग होगा जहां एक ही छत के नीचे कैंसर

पर यह आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। तो आइए श्रोताओं, सुनते हैं सुंदरकांड। आप सभी यूं ही सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।